मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की 28वीं तिथि, तदनुसार 19 अगस्त 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय 5:57 होने को हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ हो रही है।

0: टीए ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल किया है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4 स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। एनटीए के कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। एनटीए ने यह निर्णय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश के बाद लिया। इसमें परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी उपाय करने को कहा गया था। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण 44 भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार ने 8 अधिसूचनाएं जारी की। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। रद्द परीक्षाओं में औषधि निरीक्षक, सहायक प्रोफेसर, डिप्टी कलेक्टर, दंत चिकित्सक, सहायक अभियंता, सिविल जज, अपर लोक अभियोजक और वन अधिकारी समेत कई पदों की भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं। सरकारी पॉलिटेक्निक में व्याख्याता, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, सहायक वन संरक्षक और अन्य प्रशासनिक तथा तकनीकी पदों की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। अधिसूचनाओं में कहा गया है कि जेपीएससी और जेएसएससी में अनियमितताओं से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय से त्वरित अदालत गठित करने का भी अनुरोध किया जाएगा। सरकार ने पाइप से रसोई गैस पीएनजी कनेक्शन घर घर पहुंचाने की योजना को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। ये योजना 1 सितंबर से 2 चरणों में लागू की जाएगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य अधिक परिवारों तक पाइप से रसोई गैस पहुंचाना है। वर्तमान में देश में 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन हैं। निर्वाचन आयोग ने देश की चुनाव व्यवस्था पर एक फैक्ट शीट जारी की है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य विधानसभा तथा विधान परिषदों के चुनाव स्वतंत्र वैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग कराता है। आयोग ने बताया कि लगभग 1 अरब मतदाताओं को फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र जारी किए गए हैं। ये फैक्ट शीट अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनावी प्रक्रिया का जिक्र किए जाने के बाद जारी की गई। गृहमंत्री अमित शाह तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर आज शाम चेन्नई पहुंचेंगे। श्री शाह कल चेन्नई के पास कोवलम में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। भारत ने पर्यावरण से जुड़े प्रयासों को जन केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने पर बल दिया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में ये बात कही। श्री यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों की चुनौतियों का उल्लेख किया।
1: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
2: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और जापान की प्रगाढ़ साझेदारी और उनके रणनीतिक महत्व पर बल दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश और साझेदारी बढ़ाने के लिए भी आमंत्रित किया। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कल जापानी प्रतिनिधिमंडल से कहा कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को बमबारी की धमकी दी है। 2 क्षेत्रीय अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ओमान के ईरान के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही को लेकर समझौते के करीब पहुंचने से नाराज हैं। नीदरलैंड्स के एम्स्टलफेन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। अगले दौर में जगह बनाने के लिए दोनों टीमों के लिए मुकाबला काफी प्रमुख है। भारत के 2 मैचों में 3 अंक हैं और अगले दौर में पहुंचने के लिए उसे कम से कम ड्रॉ की जरूरत है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर आप हमारे कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत कार्यक्रम आराधना।

जब कोई भक्त किसी विपत्ति में फंसता है, किसी भी संकट में फंसता है, तो बस उसके मन से यही एक आर्त पुकार निकलती है।

0: हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

जब हृदय प्रेम से विवल हो जाता है, जब भक्त की व्याकुलता इतनी बढ़ जाती है कि अब बिना मिले रहा नहीं जाता, तो मन में यही बार बार आता है।

0: इसी के साथ आज की आराधना अब संपन्न होती है। आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए विचार बिंदु। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं गुरु गोविंद सिंह के विचार।
1: गुरु गोविंद सिंह भारतीय संस्कृति के महान संरक्षक थे। वो युग प्रवर्तक महापुरुष थे। उनका व्यक्तित्व असाधारण और बहुमुखी था। वो सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने भिन्न भिन्न जातियों को एक सूत्र में बांधकर उनमें मानवता की भावना कूट कूट कर भर दी। भले ही समय ने गुरु गोविंद सिंह को सिपाही बना दिया, पर प्रकृति से वो संत ही थे। उन्होंने उपदेश दिया, नाम जपना ही कल्याणकारी है। नाम जपो जिसकी सत्ता से ये जगत खड़ा है। शरीर का अभिमान त्यागो, प्रभु आज्ञा में रहो, मुक्ति के लिए

प्रभु का नाम जपना ही श्रेष्ठ है। परमात्मा का नाम है सतनाम। सतनाम का स्मरण और गुरबानी पढ़ो, प्राणी मात्र की सेवा करो, बांट के खाओ, अनाथों और दुर्बल व्यक्तियों की सहायता करो। अहंकार का त्याग करके ही लोक परलोक में सम्मान मिलता है। प्रभु भक्ति पर गुरु गोविंद सिंह ने विशेष बल दिया। व्यक्ति लाख होम करे, यज्ञ करे, दान करे, किंतु बिना भक्ति के प्रभु को पाना असंभव है। एक नाम बिना ना ही कोटि व्रत। दोनों आंखें बंद कर बगुले की भांति ध्यान लगाने से कुछ उपलब्ध ना होगा, सातों समुद्र की यात्रा से भी कुछ ना मिलेगा। सच तो ये है कि जिसने प्रेम किया उसी ने प्रभु को पा लिया। सांच कहो सुन लेव सभे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। उन्होंने कहा, बिना एक परमेश्वर के नाम के सभी कर्मों को भ्रम मात्र ही समझो। वही इस भवसागर को पार कर जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होंगे जो कृपा निधान का स्मरण करेंगे। भावना विहीन और कामनाओं के वशीभूत होकर कोई भी व्यक्ति जगदीश को नहीं पा सकेगा। काम न अधीन सदा दाम न प्रवीण, एक भावना विहीन कैसे पावे जगदीश को। काम क्रोध अहंकार लोभ मोह ये सब व्यक्ति के बड़े शत्रु हैं। ये विनाश की जड़ हैं। जो इनमें फंस जाता है उसे आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती। उन्होंने कहा, काम क्रोध अहंकार लोभ हट मोह न मन सो ल्यावे, तब ही आत्म तत्व को दर से परम पुरख कह पावे। वो ऐसा संन्यास ग्रहण करने की शिक्षा देते थे जिसमें घर ही वन बन जाए, मन से व्यक्ति उदासी हो जाए, ज्ञान गुरु द्वारा आत्मा का उपदेश हो और नाम की विभूति लगे। रे मन ऐसो कर संन्यासा, बन से सदन सबे कर समझू, मन ही माही उदासा। गुरु गोविंद सिंह ने अपनी बाणी में कहा, संसार में कोई सन्यासी है, कोई योगी है, कोई ब्रह्मचारी है, कोई यति है, कोई तुर्क है, परंतु ये सब मनुष्य हैं। अपने इन भेदों के कारण न कोई छोटा है न बड़ा है। देहुरा मसीद सोई पूजा और नमाज ओही, मानस की जात सबे एक ही पहचान पो। गुरु गोविंद सिंह ने कहा, मैं उस परमात्मा के आगे अपना सिर झुकाता हूँ जिसकी कोई माता नहीं है, पिता नहीं है, जिसका कोई कुल नहीं, जाति नहीं, जो सब जीवों में व्याप्त है और जिसको मैं सभी स्थानों पर हर एक के अंदर देख रहा हूँ।

विचार बिंदु कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गुरु गोविंद सिंह के विचार। आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: Akashvani at 90.
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब किसान भाई अपना कार्यक्रम सुने, कृषि जगत।

0: किसान भाइयों को कृषि जगत कार्यक्रम में आज हम सुनवा रहे हैं प्राकृतिक खेती द्वारा उत्पादन कैसे बढ़ाएं विषय पर अनु नेहवाल से की गई चंद्रजीत यादव की बातचीत।
1: किसान भाई, आप सब खेती बाड़ी में भाई साल के 12 महीना लगा रहा था और निश्चित तौर पे ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए आप सब तरह तरह के रासायनिक उर्वरक के इस्तेमाल करत है अपनी खेती में और तरह तरह के भाई उन्नतशील प्रजातियों के बीज के इस्तेमाल करत है। लेकिन देखा ही जा तो भाई इधर कि भाई उत्पादन तो खेती से काफ़ी कुछ बढ़ी है, लेकिन जो गुणवत्ता बाटे उत्पाद के उनमें कुछ ना कुछ कमी दिखाई देत बाटे। तो आजकल भाई ये सोचा जात बा वैज्ञानिक भैया इनके तरफ से भी भाई एक कहा जात बा कि भाई अगर प्राकृतिक तरह से खेती की जाए तो निश्चित तौर पे उसी उत्पादन तो होबे करे, साथ साथ जौन उत्पाद हो ओकर गुणवत्ता भी बनी रहे। उनके जानकारी देख लिए आज हमारे साथे देखा विशेषज्ञ के तौर पर अनु नौहाल बहनी बटी जौन की यही कुल के जानकार रहीं। बनी आप कार्यक्रम में आपके स्वागत बटे और जाने चाहब कि प्राकृतिक खेती सामान्य खेती से कौन तरह से अलग बाटे।
2: जी नमस्कार किसान भाइयों, प्राकृतिक खेती जो है रासायनिक खेती जैविक खेती से काफी अंतर पाती है। प्राकृतिक खेती में हम किसी भी तरह का रासायनिक या भारी तरह की खाद का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके अंदर जो भी खाद होती है वह गोमूत्र और गोबर के द्वारा बनाई जाती है, जिसके अंदर हम ये ध्यान रखते हैं कि किसी भी तरह का रासायनिक कीटनाशक या उर्वरक का इस्तेमाल ना किया जाए।
1: बनी एक चीज बताऊं, जैसे सामान्य खेती में लोग खेत की तैयारी करते हैं, उन्नतशील प्रजातियों के बीज बुआई करते हैं, तो ये कुल प्रक्रिया में भी अंतर कुछ रखे पड़े या सामान्य खेत तैयार करे के और बीज के बुआई के तरीका पहले जैसे रहे लेकिन और चीजन पे विशेष ध्यान रखे पड़े।
2: जी नहीं, प्राकृतिक खेती में हम खेत का तैयार करने का तरीका जो है वो कम से कम जुताई के साथ करते हैं। कम से कम जुताई करें या बिल्कुल ही जुताई ना करें। कारणवश कि जुताई करने से जो मृदा के मौजूद जीवाणु हैं या केचुए हैं उनका संख्या कम होता जाता है और मृदा की जो नमी है वो पर्याप्त नहीं रहती है, तो इसके लिए प्राकृतिक खेती में जुताई का उपयोग कम किया गया है।
1: बनी एक चीज बताऊं, जैसे भाई अगर जुताई न कही जाए खेत के तो भाई खरपतवार होए की संभावना ज्यादा होए, तो ऐसा स्थिति में का कुछ करे के पड़े थे?
2: इसके लिए अच्छादान एक समस्या का हल है, जिसके अंदर हम जो खेत है उसको अपने खरपतवार जो हुआ है उससे या जो फसल के अवशेष है उससे हम ढक कर रखते हैं, ताकि भूमि के अंदर एक तो खरपतवार की पैदावार नहीं होती, पूरा नियंत्रण करता है। दूसरा कि आप जो है नमी को बरकरार रख सकते हैं, सिंचाई की आवश्यकता कम होगी या अंतराल बढ़ जाता है सिंचाई का, उसके मदद से भी आप जो है खरपतवार और सिंचाई का नियंत्रण कर पाएंगे।
1: बनी एक चीज बताओ कि खेत के ढक के रखे की जरूरत होते, ये बताओ ढके के लिए कौन तरह के चीजन के इस्तेमाल करे पड़े?
2: ढकने के लिए प्राकृतिक खेती है तो प्राकृतिक सामग्री ही इस्तेमाल करें, जैसे फसलों के अवशेष हैं, जैसे कि किसान भाई जो हैं बहुत ही समस्या से गुजरते हैं कि फसलों का जो अवशेष रह जाता है या पुआल रह जाता है उसको जला देते हैं या उसको फेंक देते हैं, उसका क्या हल है, तो उसी को वो खेत में छोड़ सकते हैं उसको ढकने के लिए, या फिर जो आपके खरपतवार निकलती है या मेड़ के चारों तरफ की खरपतवार है या पेड़ की पत्तियां हैं उसको उपयोग करके जो है किसान भाई अपना खेत ढक के रख सकते हैं, जो कि एक समय के बाद एक फसल के बाद में खेत ही में मिल जाएगा और उर्वरकता बढ़ाएगा, उत्पादकता भी बढ़
1: का मतलब बनी कि खेत से ही उत्पन्न जो पौधा बाटे उनका माटी के ढके में इस्तेमाल किया जा सकता है। एक चीज होता है बहनी, जैसे कि बुआई करते समय कौन कौन बातन पर विशेष ध्यान दे?
2: बुआई करते समय खेत की कम से कम जुताई करें या जुताई ना करें, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि बीजों का उपचार करना, क्योंकि बीजों

0: अगर उपचार आप सही रूप से नहीं करते हैं तो आने वाले समय में बीजों की कारण होने वाले जो रोग हैं, जो कीट हैं, वो उत्पन्न होते हैं और उसके बाद में फिर उसको संभालना खेती के अंदर थोड़ा कठिन हो जाता है, जिसके कारण बीजों का उपचार करें। बीज उपचार के लिए बहुत ही सरल उपाय कर सकते हैं, जिसमें कि बीजामृत बनता है। बीजामृत में गाय, देसी गाय का गोबर को एक सूत के कपड़े में बांधकर गौमूत्र में 24 घंटे के लिए रखें, फिर उस तैयार है 24 घंटे बाद में उसका छिड़काव जो है किसान भाई बीजों पे कर सकते हैं बुआई के कुछ समय पहले, आधा एक घंटा पहले करके उसको छांव में सुखा के फिर बीजों को खेत में डाल सकते हैं, जैसे डालते हैं
1: तो ऐसी बीजोपचार हो जाए।
0: हाँ, ये बीजोपचार किया जा सकता है।
1: अब नहीं बताऊँ कि जैसे ये देखा जाता है कि भाई बीज के बुआई तक किसान भाई कह दे हैं, ओकरे बाद बुआई करत समय जो रासायनिक उर्वरक या भाई देसी खाद गोबर के खाद डालत हैं तो ओकरे जगह का कुछ करे पड़े प्राकृतिक खेती के लिए।
0: जैसे कि हम बताए हैं कि देसी गाय से उत्पन्न गोबर है या गौमूत्र है, उससे अनेक प्रकार के उर्वरक बनाए जा सकते हैं, खाद बनाया जा सकता है, जिसमें कि घन जीवामृत जो है एक ठोस प्रकार का उर्वरक होता है, जिसमें आप गोबर को सुखा कर उसके अंदर किसी भी दाल का बेसन मिलाकर और गुड़ मिलाकर ये सब जो है मिलाकर आप 2 से 3 दिन में वह तैयार हो जाएगा, उसको आप बुआई के समय ये जुताई के समय खेत में डाल सकते हैं। और उसके बाद में जैसे बुआई हो जाता है तो हर सिंचाई पे जल जीवामृत होता है, एक तरल तरह का खाद है, वह भी ऐसे घन जीवामृत जैसे बनता है पर उसमें पानी का मात्रा ज़्यादा होता है, इसलिए उसको आप हर सिंचाई में डाल सकते हैं किसान भाई, और उसके साथ साथ उसी का छिड़काव भी कर सकते हैं सप्ताह में एक बार या महीने में 2 बार इसका छिड़काव करने से काफ़ी फ़ायदा होगा और उर्वरकता बढ़ती जाएगी और उपज भी बढ़ती है।
1: बनी एक चीज़ आप बताओ बाटे कि गोमूत्र और देसी गाय के जौन गोबर बाटे खाली इन्होंने दोनों के इस्तेमाल करे के बाटे तो ये जौन बताओ बाटे तरीका एक आप फिर से एक थोड़ा सा फरिया बताओं कि कौन तरह से किसान भाई गोमूत्र और गोबर के खाद के रूप में इस्तेमाल करी हो।
0: जी, जैसे कि हम बताए हैं कि आप 2 तरह की खाद बना सकते हैं, एक ठोस खाद है, घन जीवामृत है, इसके अंदर में आप जो है गोबर है 100 किलो गोबर लीजिए, 100 किलो गोबर के अंदर में 2 से 3 किलो आप बेसन, किसी भी दाल का बेसन ले सकते हैं, उसके साथ 2 किलो गुड़ मिलाइए, उसमें एक मुट्ठी भर अपने खेत की मृदा को मिलाकर उसको बढ़िया से मिला के आप किसी छांव वाली जगह में रख दीजिए उसको, फिर आप जो है खेत में 2 दिन से 3 दिन के बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट या कोई अन्य खाद डाली जाती है उस तरह से। फिर दूसरा है कि तरल खाद डालने, तरल खाद अगर डालते हैं तो जिसमें जीवामृत आता है, जिसके अंदर आप 200 लीटर पानी के अंदर 10 किलो गोबर मिलाकर उसमें 2 किलो बेसन मिलाकर 2 किलो गुड़ और एक मुट्ठी मृदा मिलाकर उसको घोल बना ले और 3 दिन के लिए उसको सुबह शाम दोनों समय बढ़िया से किसी भी डंडे से घुमा के रख सकते हैं, और उस 3 दिन के बाद में वह तरल खाद जो है वह तैयार हो जाती है, जिसका किसान भाई छिड़काव भी कर सकते हैं और सिंचाई के द्वारा भी खेत में पहुंचा सकते हैं।
1: तो ये 2 तरह के ठोस और तरल, ये जौन गोबर गाय के बाटे और ओकर जौन भाई मूत्र बाटे उसे बनावा जा सकते हैं। एक चीज़ बनी बताऊँ जैसे कि भाई किसान भाई कोनो भी तकनीक नई तकनीक तबे अपनावत हैं जब उनका लागे कि भाई हमें ऐसी फ़ायदा होए, तो इस तकनीक के इस्तेमाल से सामान्य जौन खेती करे थे उनमें और हमें का कुछ अंतर उनका समझ में आए उत्पादन में भी और गुणवत्ता में भी।
0: का एक उदाहरण हम देना चाहेंगे कि जब हम सामान्य खेती करते हैं या रासायनिक खेती करते हैं तो इसमें ऑर्गेनिक कार्बन जो होता है वो मृदा में कम होता जाता है, क्योंकि हम इतने ज़्यादा उर्वरक इस्तेमाल कर रहे हैं और अपना मृदा को छेड़ रहे हैं जिसके कारण कार्बन की कम होता है, पर वहीं ये प्राकृतिक खेती में देसी गाय का गोबर और गौमूत्र इस्तेमाल होता है जिससे कि ऑर्गेनिक कार्बन तो बढ़ता है और उसमें अनेक प्रकार के जीवाणु होते हैं, कम से कम 300 से 500 करोड़ जीवाणु पाए जाते हैं जो कि उर्वरकता बढ़ाते हैं, मृदा में मौजूद सारे जो रसायन होते हैं उपलब्ध कराते हैं।
1: का मतलब कि प्राकृतिक चीज के इस्तेमाल कर ही किसान भाई तो माटी की गुणवत्ता भी बनी रहे और अच्छी गुणवत्ता का उत्पाद भी प्राप्त हो। तो प्राकृतिक खेती अगर किसान भाई करें तो निश्चित तौर पर उनका फायदा होए। बहनी आ पाएँ और इतना बढ़िया जानकारी दी है, सब जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

प्राकृतिक खेती द्वारा उत्पादन कैसे बढ़ाएं विषय पर किसान भाई अभी सुन रहे थे अनु नेहवाल से चंद्रजीत यादव की बातचीत। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर नीलम यादव की वार्ता, बरसात के मौसम में स्वास्थ्य सुरक्षा के आयुर्वेदिक उपाय।
1: बारिश की बूंदों से गर्मी से तो राहत मिलती है, परंतु मानसून कई बीमारियों को भी साथ लेकर आता है। साथ ही बरसात में भरता पानी, घरों में पहुंचने वाला दूषित पानी और मच्छरों का तेजी से बढ़ना सेहत से जुड़ी नई परेशानियां खड़ा कर देता है, जिससे मलेरिया, डेंगू, सर्दी जुकाम, दस्त, उल्टी, टाइफाइड, पीलिया और त्वचा रोग जैसी अनेक बीमारियां फैलती हैं। चलिए जानते हैं बरसात के दिनों में क्या करें और क्या ना करें। पहली बारिश के साथ दही मट्ठे का सेवन कम से कम एक माह के लिए बंद कर दें। ये इसलिए क्योंकि बरसात गिरते ही अनेक प्रकार के कीटाणु पनपने लगते हैं, जिससे पशुओं का चारा भी दूषित हो जाता है। परिणाम स्वरूप कीटाणुओं का रस भी दूध में आ जाता है। जब हम दही जमाते हैं तो इन कीटाणुओं को और पनपने का अवसर मिल जाता है, और यदि आप दूध उत्पादों का सेवन वर्षा ऋतु में करेंगे तो त्वचा संबंधी बीमारियां और दुग्ध उत्पादों की एलर्जी हो सकती है। बरसात के दिनों में साग का सेवन ना करें, कारण यहाँ भी कीटाणुओं से दूषित होने का है। आयुर्वेद के अनुसार वर्षा ऋतु में साग खाना बीमारियों को आमंत्रण देना माना गया है। बरसात के दिनों में सड़क के किनारे मिलने वाले स्ट्रीट फूड का सेवन या होटल का खाना खाने से बचना चाहिए। सड़क के किनारे मिलने वाले चाइनीज़ फूड, भेल, पानीपुरी फूड पॉइजनिंग के प्रमुख कारण हैं। अगर आपको अस्थमा है या फिर सर्दी जुखाम खांसी जल्दी हो जाती है तो बारिश में ना भीगें। कपड़े, जूते, चप्पल गीले हो जाने पर तुरंत बदल लें। ज़्यादा समय तक गीले कपड़े पहनने से फंगल इन्फेक्शन तथा अनेक प्रकार के त्वचा रोग हो सकते हैं। डायबिटीज़ के मरीजों को बारिश में विशेष रूप से अपने पैरों का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। पैर गीले होने पर तुरंत साफ करके सुखा लेना चाहिए। बरसात के दिनों में पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है और पेट में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, अतः भोजन के बाद अजवाइन और सौंफ का भुना हुआ मिश्रण पाचन शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। बरसात में लोग अक्सर पानी कम पीने लगते हैं, जिससे बॉडी डिहाइड्रेट होने लगती है और अनियमित ब्लड प्रेशर, एनर्जी की कमी होना और सही प्रकार से शरीर में रक्त संचार नहीं हो पाता है। इसीलिए ज़रूरी है कि शरीर में पर्याप्त पानी का प्रमाण बनाए रखें और भरपूर पानी का सेवन करें। हमेशा उबालकर ठंडा किया हुआ या फिल्टर किया हुआ स्वच्छ पानी का सेवन करें। कोल्ड ड्रिंक इत्यादि पीने की जगह तुलसी की चाय पीना ज़्यादा लाभकारी होगा। हमेशा ताजे और स्वच्छ सब्जी और फल का सेवन करें। बासी भोजन, पहले से कटे फल और सलाद ना खाएं। अधिक ठंडा और खट्टा ना खाएं। अधिक नमक का सेवन भी ना करें, इससे शरीर में वाटर रिटेंशन की समस्या हो सकती है। रात्रि में सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। घर के आसपास गंदगी ना होने दें। घर के आसपास के गड्ढों को भरें, जिससे बारिश का पानी रुककर सड़ने ना पाए और मच्छर ना पनपें। बरसात के मौसम में विशेषकर गंदे पानी के प्रयोग से पेट की समस्या में जैसे एमीबियासिस और आंतरिक ज्वर यानी टाइफाइड जैसी बीमारियां हो जाया करती हैं। पानी के जमाव से डेंगू के मच्छर पनप जाते हैं और डेंगू जैसी प्राणघातक बीमारी हो जाती है। अतः विशेष करके पानी की स्वच्छता और जल भराव न होने पाए, इस पर विशेष ध्यान दें। घरों में फिनाइल से अच्छी तरह सफाई कराएं ताकि मक्खियां ना आ सकें। बच्चों को बारिश से पहले टाइफाइड, हेपेटाइटिस की वैक्सीन लगवा दें। बारिश के मौसम में रोग बिगड़ने में देर नहीं लगती, अतः बीमारी की शंका होने पर डॉक्टर से मिलें।
0: अभी आप डॉक्टर नीलम यादव की वार्ता सुन रहे थे। विषय था बरसात के मौसम में स्वास्थ्य सुरक्षा के आयुर्वेदिक उपाय।

इसी के साथ कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा समाप्त हुआ। आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विवरण। रात 9:30 बजे चर्चा का विषय है हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 7:30 पर प्रियंका मलिक का उपशास्त्रीय गायन प्रसारित होगा। सुबह 9:50 पर सुगम संगीत के कलाकार होंगे अरुण गुलवाड़ी। वॉइस ऑफ प्रयागराज कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 10:05 पर। सुबह 10:30 पर राय चंद्रपाल और साथियों के गाय लोक गीत सुनवाए जाएंगे। फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश आप सुनेंगे दिन में 12:30 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में दिन में 12:15 पर और रात 10:30 आप सुनेंगे प्रियंका मलिक का ख्याल गायन। शाम 5:15 युवाणी कार्यक्रम में युवा श्रोता विवेक सिंह की वार्ता सुनेंगे। फोटोग्राफी एक जुनून एक शौक एक करियर। शाम 6:30 ग्रामीण भाई पंचायत घर कार्यक्रम में प्रोफेसर मिथिलेश त्रिपाठी से सुनेंगे नीति वचन। और शाम 7:31 पर किस्सा गोई में आप सुनेंगे गुरुदत्त पर आधारित कार्यक्रम। अभी आप आज के कार्यक्रमों के विवरण सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार। समाचारों के लिए प्रतीक्षा करें।

शिव का वरण करने के पार्वती के निश्चय की परीक्षा लेने के उद्देश्य से सप्तर्षियों ने हर प्रकार से उन्हें शिव से विमुख करने का प्रयत्न किया, किंतु शैल कुमारी शैल की भांति ही दृढ़ थीं। कहा, मैं महर्षि नारद के वचन की अनसुनी नहीं करूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिल गए होते तो मैं आपका उपदेश सिर आंखों पर रखकर मान लेती, परंतु अब तो शिव जी के लिए मैं अपना जन्म हार चुकी हूँ, फिर उनके गुण दोष का विचार कैसा। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक ये हठ रहेगा कि या तो मैं शिव जी को वरूंगी या फिर कुंवारी रहूंगी। शिव जी के लिए पार्वती की ऐसी प्रीति देखकर ज्ञानी मुनिगण उनकी जय जयकार कर उठे। बोले, हे माते, आप माया हैं और शिव कल्याणकारी भगवान। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। ऋषिगण ने हिमवान के पास जाकर उन्हें पार्वती के पास भेजा, जो विनती करके उन्हें घर ले आए। उधर भगवान शंकर के पास जाकर ऋषियों ने पार्वती की दृढ़ प्रतिज्ञा का वर्णन सुनाया, जिससे भगवान शिव आनंद मग्न हो गए।

शिव का वरण करने के पार्वती के निश्चय की परीक्षा लेने के उद्देश्य से सप्तर्षियों ने हर प्रकार से उन्हें शिव से विमुख करने का प्रयत्न किया, किंतु शैल कुमारी शैल की भांति ही दृढ़ थीं। कहा, मैं महर्षि नारद के वचन की अनसुनी नहीं करूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिल गए होते तो मैं आपका उपदेश सिर आंखों पर रखकर मान लेती, परंतु अब तो शिव जी के लिए मैं अपना जन्म हार चुकी हूं, फिर उनके गुण दोष का विचार कैसा। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक ये हठ रहेगा कि या तो मैं शिव जी को वरूंगी या फिर कुंवारी रहूंगी।

अभी आप शिप्रा बोस और रामकृष्ण चंदेश्री के स्वर में सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ। संगीत दिया था सतीश भाटिया ने। लीजिए अब सुनिए फिल्मों से भजन। सबसे पहले हम आपको लता मंगेशकर की आवाज में ये भजन सुनवा रहे हैं। फिल्म है चंबल की कसम और रचना है खयाम की, तर्ज है साहिल लुधियानवी, माफ कीजिएगा, तर्ज है खयाम की और लिखा है साहिर ने।

और अब अंत में हम आपको रविंद्र जैन का लिखा हुआ और रविंद्र जैन का ही संगीतबद्ध किया हुआ ये भजन सुनवा रहे हैं। फिल्म है राम तेरी गंगा मैली और आवाज़ एक बार फिर लता मंगेशकर की।

अभी आप फिल्मों से भजन सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:20 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, प्रतीक्षा करें।

0: और बागपत के अखिल शिवराण को मिलेगा अर्जुन पुरस्कार। और बारिश में प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक बारिश का जारी किया अलर्ट। प्रदेश की गंगा सहित कई नदियों के जलस्तर में दर्ज की जा रही बढ़ोतरी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में पीआरडी जवानों को सपरिवार प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की घोषणा की। श्री योगी ने प्रांतीय रक्षक दल के सम्मेलन में जवानों का दैनिक ड्यूटी भत्ता 600 रुपए करने की घोषणा भी की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने लखनऊ में लगभग 23 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बहुमंजिला पीआरडी बैरक का शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने में और विपरीत परिस्थिति में पुलिस प्रशासन का सहयोग करने वाले प्रांतीय रक्षक दल के सभी स्वयंसेवकों का सेवा भाव और अनुशासन प्रदेश की प्रगति तथा सुरक्षा का मजबूत स्तंभ है।
1: अच्छी सरकारें आती हैं तो सबके अच्छे दिन भी लाती है। पहले पुलिस के अधिकारियों और जवानों के लिए भी अच्छी बैरिक की सुविधा नहीं हुआ करती थी। प्रदेश के अंदर 56 जनपद ऐसे हैं जिन जनपदों में उस जनपद की सबसे ऊंची बिल्डिंग अगर किसी की होगी तो पुलिस कार्मिकों के बैरक की होगी। होमगार्ड के स्वयंसेवकों के लिए भी अब अच्छी अवस्थापना सुविधाओं का विकास हुआ है। अब प्रांतीय रक्षक दल के लिए भी अब हाईराइज बैरक के निर्माण का कार्य लखनऊ में सम्पन्न हुआ है।
0: पीआरडी जवानों के सम्मेलन में राज्य मंत्री राजनीतिक पेंशन सैनिक कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने कहा कि पीआरडी जवान के सैनिक शांति सुरक्षा और जनसेवा के मजबूत आधार हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में यूपी जापान निवेश सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। उद्घाटन सत्र में आज सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भाग लेंगे। 5 दिवसीय इस निवेश सम्मेलन के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार का उद्देश्य जापानी कंपनियों की व्यावसायिक रुचि को बढ़ाना और ठोस निवेश प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संयुक्त परियोजनाओं तथा बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करना है। इस सम्मेलन में 200 से अधिक प्रमुख जापानी उद्योगपति मुख्य कार्यकारी अधिकारी व्यावसायिक प्रतिनिधि और नीति निर्माता भाग ले रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली में हाल ही में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिसकर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी।
2: समिति में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, पूर्व पुलिस महानिदेशक और सीबीआई के पूर्व निदेशक शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि समिति के अन्य सदस्यों के नाम पर विभिन्न पक्षों से सुझाव मिलने के बाद आदेश जारी किया जाएगा। न्यायालय ने कहा कि समिति महिला प्रदर्शनकारियों से जुड़े यौन उत्पीड़न और ऑनलाइन उत्पीड़न के आरोपों तथा सोशल मीडिया के जरिए अन्य संवेदनशील लोगों को निशाना बनाए जाने के मामलों की भी जाँच करेगी। अदालत ने कहा कि 20 जुलाई को दिल्ली में संसद मार्च के दौरान हुए हिंसा से संबंधित वीडियो फुटेज और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग समिति को सौंपी जाएगी। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंक 2 अक्टूबर से एक महीने का अभियान बैंकिंग फॉर यूथ शुरू करेंगे। कल शाम नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना होगा। उन्होंने बताया कि अभियान का लक्षित समूह 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के युवा पेशेवर होंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया है। श्री तावड़े को प्रदेश प्रभारी बनाए जाने पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने कहा कि उनकी शैली सबको साथ लेकर चलने की है और वे संगठन को मजबूत करने और पार्टी की योजनाओं को लागू करने में अहम भूमिका निभाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने

0: राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा कर दी है। बॉक्सिंग कोच छोटेलाल यादव, एथलेटिक्स कोच परवीर सिंह और शूटिंग कोच नेहानंद कुमार चौहान को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। बॉक्सिंग कोच छोटेलाल यादव उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद के रहने वाले हैं। वो पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन और भारतीय महिला बॉक्सिंग टीम के कोच रह चुके हैं। उधर महिला बैडमिंटन डबल्स जोड़ी ट्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद समेत विभिन्न खेलों के 15 अन्य खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वालों में प्रदेश के गाजीपुर जनपद के हॉकी खिलाड़ी राजकुमार पाल, बागपत के निशानेबाज अनिल अखिल शिवराण और मेरठ की एथलीट प्रियंका गोस्वामी का नाम भी शामिल है। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी इसायाह अरुमैना यागम को अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कल पीलीभीत के जिला अस्पताल में प्रधानमंत्री दिव्याशा वयोश्री केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन किया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित ये देश का 109वां पीएम दिव्याशा वयोश्री केंद्र होगा, जिसमें दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को कृत्रिम अंग व सहायक उपकरण प्रदान किए जाएंगे। उद्घाटन समारोह में 18 दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। गृह विभाग ने श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में पहले गठित विशेष जांच दल एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट को आगे की कार्रवाई के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दी है। एसआईटी ने ये रिपोर्ट शासन को सौंपी थी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर पहले एसआईटी का गठन गत 13 जून को राज्य सरकार ने किया था। प्रदेश सरकार ने राज्य परिवहन निगम में कार्यरत आउटसोर्स कार्मिकों के मानदेय में जुलाई से 5% की वृद्धि की है। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि कंप्यूटर ऑपरेटर, लेखाकार कम टैली ऑपरेटर और प्रोग्रामर के मानदेय में ये बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने बताया कि परिवहन निगम में कार्यरत आउटसोर्स कार्मिकों के मानदेय में प्रतिवर्ष 10% वृद्धि का प्रावधान है। इसके तहत जनवरी में 5% और जुलाई में 5% की बढ़ोतरी की जाती है। प्रदेश के कई जिलों में पिछले 3 दिन से बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर वर्षा का क्रम जारी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक कहीं हल्की तो कहीं मध्यम से भारी वर्षा का पूर्वानुमान जताया है। उधर वर्षा होते रहने और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश के कई नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। अमरोहा और संभल में गंगा का जलस्तर बढ़ने पर जिला प्रशासन द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। उधर वाराणसी में गंगा नदी के लगातार बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एहतियाती कदम उठाए गए हैं। वहाँ के ACP अतुल अंजान ने बताया कि
1: गंगा के जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। 4 सेंटीमीटर पर आवर के रेट से लगातार बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं। उनकी सुरक्षा को देखते हुए प्रिकॉशनरी नावों का संचालन अग्रिम आदेशों तक बंद किया गया है। भविष्य में जैसे ही जल स्तर सामान्य होगा और जो बहाव है उसकी गति सामान्य होगी, आगे के निर्णय लिए जाएंगे।
0: मिर्जापुर में भारी वर्षा के कारण हुए जलजमाव से 7 गांव के प्रभावित होने की खबर है। वहां के जिलाधिकारी ने बताया कि बाढ़ पीड़ित परिवारों को राहत शिविर में पहुंचाने और आवश्यक राहत तथा बचाव सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रांतीय रक्षक दल जवानों के लिए 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा का किया शुभारंभ। ड्यूटी भत्ता को 600 रुपए प्रतिदिन करने की हुई घोषणा। उत्तर प्रदेश जापान निवेश सम्मेलन हुआ शुरू। 200 से ज्यादा जापानी उद्योगपतियों के साथ बनेगी निवेश की रूपरेखा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की हुई घोषणा। वाराणसी के छोटेलाल यादव को द्रोणाचार्य, गाजीपुर के राजकुमार पाल, मेरठ की प्रियंका गोस्वामी और बागपत के अखिल शिवराण को मिलेगा अर्जुन पुरस्कार। और प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बारिश का जारी किया अलर्ट। प्रदेश की गंगा सहित कई नदियों के जलस्तर में दर्ज की जा रही बढ़ोतरी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

प्रस्तुत है उपशास्त्रीय गायन। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं प्रियंका मलिक की गाई राग भैरवी में ठुमरी।

अभी आप प्रियंका मल्लिक की गाई राग भैरवी में ठुमरी सुन रहे थे। तबले पर आपके साथ संगत की श्री श्रवण कुमार भट्ट ने, हारमोनियम पर श्री शमशाद अहमद ने। लीजिए अब सुनिए प्रियंका मल्लिक का राग नट भैरव में गायन। बोल हैं तू ही करतार। तबले पर आपके साथ संगत की गिरधर गोपाल मिश्रा ने और हारमोनियम पर शमशाद अहमद ने।

अभी आप प्रियंका मलिक का गाया राग नटभैरव में ये गायन सुन रहे थे। तबले पर आपके साथ संगत की गिरधर गोपाल मिश्र ने और हारमोनियम पर श्री शमशाद अहमद ने। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 8 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात प्रतीक्षा।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने घरेलू पाइपलाइन गैस कनेक्शन को घर घर पहुंचाने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 600 पुराने विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए। झारखंड सरकार ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बीच अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की। दिल्ली जल बोर्ड रिश्वत मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और 5 अन्य गिरफ्तार। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर मिसाइल हमले का आरोप लगाते हुए व्यापारिक और वित्तीय लेन देन स्थगित किए। और नीदरलैंड्स में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से।

0: अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पाइप से रसोई गैस पीएनजी कनेक्शन घर घर पहुंचाने की प्रक्रिया तेज करने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। ये योजना पहली सितंबर से दो चरणों में लागू की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार योजना के माध्यम से मौजूदा पीएनजी कनेक्शनों को अपने रसोई घरों में पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल शुरू कर सकेंगे। वर्तमान में देश भर में करीब 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन है। मंत्रालय ने बताया कि योजना के अंतर्गत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सीजीडी कंपनियों को बिना बिल वाले कनेक्शनों को सक्रिय करने और पीएनजी नेटवर्क का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत पात्र सीजीडी कंपनियों को प्रदर्शन अवधि के दौरान जोड़े गए हर अतिरिक्त घरेलू पीएनजी कनेक्शन के लिए 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर अतिरिक्त घरेलू स्तर पर उत्पादित कम कीमत वाली गैस आवंटित की जाएगी। आनंद और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4-स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। एनटीए के कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। परीक्षा एजेंसी ने यह निर्णय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश के बाद लिया है। इसमें परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी उपाय करने को कहा गया था। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी कर दी है। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं।
2: सरकार ने उन परीक्षाओं के परिणाम भी रद्द कर दिए हैं जिनकी प्रारंभिक प्रक्रिया टीडीपीएल द्वारा कराई गई थी। अधिसूचनाओं के अनुसार कथित अनियमितताओं को लेकर एसआईटी की जांच और जारी सीआईडी जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द की गई है। सरकार ने 6 परीक्षाओं को स्थगित करने और 17 परीक्षाओं की सीआईडी जांच कराने का भी फैसला लिया है। दोनों आयोगों में आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, जबकि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता वाली समिति परीक्षा प्रणाली में सुधार के सुझाव देगी। मैं विश्व रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदित प्रकाश राय और 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को उन्नत बनाने की टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी के मामले में हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: सतर्कता निदेशालय की शिकायत पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान सामने आया कि निविदा प्रक्रिया में कथित तौर पर ऐसी तकनीकी विशिष्टताएं और शर्तें शामिल की गई थीं जो एक विशेष प्रौद्योगिकी प्रदाता के पक्ष में थीं। इससे प्रतिस्पर्धा सीमित हुई और एक चयनित निजी इकाई को अनुचित लाभ पहुँचा। जांच में यह भी सामने आया है कि निजी व्यक्ति कथित तौर पर कुछ सरकारी अधिकारियों और बिचौलियों के साथ संपर्क में थे ताकि निविदा प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सके। एसीबी के अनुसार इससे विशेष प्रौद्योगिकी प्रदाता के पक्ष में निविदा की शर्तों को प्रभावित करने के लिए निजी व्यक्तियों और सरकारी अधिकारियों के बीच कथित साठगांठ के संकेत मिलते हैं। जांच में पूरे धन के लेन देन और कथित अपराध से अर्जित आय की भी जाँच की जा रही है। अनुपम और आनंद के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और जापान की प्रगाढ़ होती साझेदारी और उनके रणनीतिक महत्व पर बल दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश और साझेदारी बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल से कहा कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, प्रगति और समृद्धि की साझा आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने कहा कि यामानाशी प्रांत के प्रतिनिधियों की मौजूदगी ये दिखाती है कि इस साझेदारी का भारत के राज्यों और क्षेत्रों तक तेजी से विस्तार हो रहा है।
4: जापान के निवेशक और वहाँ पे नवाचार से जुड़े हुए लोग उत्तर प्रदेश के दौरे पे आए हैं। यामाची और उत्तर प्रदेश के बीच ये जो साझेदारी है इससे बड़े पैमाने पे निवेश आएगा, ढेर सारे लोगों को रोजगार और व्यापार के अवसर मिलेंगे।
0: इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था के

0: लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। हालांकि एजेंसी ने यह भी कहा है कि अलनीनो और भौगोलिक राजनीतिक चुनौतियों से आर्थिक रफ्तार धीमी पड़ सकती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्त वर्ष 2026 में वृद्धि दर 7.6% रहने का अनुमान लगाया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वित्त वर्ष 2025-26 में ऋण देने के मामले में जबरदस्त बढ़ोतरी की है। इस दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के प्राथमिक क्षेत्र ऋण फ्रेमवर्क के अंतर्गत इन बैंकों का प्रदर्शन मजबूत रहा। हालांकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कुल बकाया ऋण में 2024-25 के मुकाबले 10.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो गत वित्त वर्ष में 5,78,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का था। गृहमंत्री अमित शाह तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर आज शाम चेन्नई पहुंचेंगे। श्री शाह कल चेन्नई के पास कोवलम में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में तमिलनाडु, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर मलेशिया से एक कुख्यात गिरोह के 3 आरोपियों को भारत लाने में सफलता हासिल की है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि इन आरोपियों के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से संबंध थे। हत्या, जबरन वसूली, विस्फोटक रखने तथा हाल में लुधियाना में हैंड ग्रेनेड विस्फोट की साजिश से जुड़े कई मामलों में इनकी तलाश थी। हरियाणा पुलिस ने पंजाब के एक परिवार और उसके सहयोगियों से जुड़े अंतर्राज्यीय बाल तस्कर गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना परगट सिंह को पंजाब के मुक्तसर से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरोह ने अब तक देश भर में 50 नवजात बेचे हैं। बहादुरगढ़ के पुलिस उपायुक्त मयंक मिश्रा ने आकाशवाणी को बताया कि अब तक गिरोह से जुड़े 21 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज तड़के न्यू मार्केट इलाके में एक होटल में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि होटल में आग से बचाव और अग्निशमन की व्यवस्था नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मानव जीवन की सार्थकता अन्य प्रणालियों के कल्याण और भलाई के लिए अनवरत काम करने में ही है। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपनी शारीरिक क्षमताओं, धन, बुद्धि और वाणी का इस्तेमाल परहित और कल्याणकारी कार्यों के लिए करना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर शर्मा प्रसिद्ध शिक्षाविद, कानूनविद और कुशल राजनेता थे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्वी हिस्सों, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश हो सकती है। उधर उत्तरी उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नदियों में उफान से 6 जिलों के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और लगभग 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं।
1: भद्रक में भंडारी पोखरी और तिहिड़ी ब्लॉक सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से है, जहां बाढ़ का पानी गांव में घुस गया है और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जाजपुर, केंद्रापड़ा, बालेश्वर, केओंझर और मरभज में भी बाढ़ जैसा हालत है। ब्राह्मणी और सालंदी नदियों का जलस्तर बढ़ने से संकट और गहरा हो गया है, जबकि अखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एहतियात के तौर पर कई स्कूल बंद रखे गए हैं। राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों और किसानों के लिए 1,000 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: संयुक्त अरब अमीरात ने इलाके में बढ़ते तनाव और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे को देखते हुए ईरान के साथ सभी प्रकार के व्यापारिक और वाणिज्यिक लेनदेन को स्थगित कर दिया है। अमीरात के विदेश मंत्रालय की संचार निदेशक अफरा अल हामिली ने बताया कि इस फैसले का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता और वित्तीय व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाए रखना है। अमीरात ने यह घोषणा ईरान की ओर से खाड़ी में 2 बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के दागे जाने के बाद की। हालांकि अमीरात ने यह भी कहा कि वो शांति और स्थिरता के बीच बातचीत, सहयोग और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति संकल्पित है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
2: नीदरलैंड्स में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। दोनों टीमों के लिए अगले दौर में जगह बनाने के लिए ये मुकाबला महत्वपूर्ण है। भारत ने अब तक 2 मैचों से 3 अंक हासिल किए हैं और उसे अगले दौर में पहुंचने के लिए आज का मैच कम से कम ड्रॉ खेलना होगा। भारत ने वेल्स को हराया है और इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा है। श्रीलंका में गोल क्रिकेट टेस्ट के पांचवें और आखिरी दिन आज श्रीलंका

0: की टीम अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट पर 84 रन से आगे खेलेगी। भारत ने श्रीलंका को 372 रन का लक्ष्य दिया है। श्रीलंका को जीत के लिए अभी 288 रन की जरूरत है, जबकि भारत श्रृंखला की जीत से केवल 6 विकेट दूर है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कल नई दिल्ली में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार जीत दर्ज की। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कॉलिन फिलिमोन को हराया, वहीं त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद फरहत। झारखंड में परीक्षा रद्द होने से 2000 से अधिक नौकरियां खतरे में, 6 में से 3 प्रदर्शनकारियों ने खत्म किया अनशन, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। जंतर मंतर पर पुलिस सख्ती के आरोपियों की जांच, सर्वोच्च न्यायालय की उच्च स्तरीय समिति से कराए जाने का फैसला कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने दिल्ली पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से इनकार करने का भी समाचार दिया है। 2 अक्टूबर से बैंकिंग फॉर यूथ अभियान, दैनिक जागरण के आर्थिक पन्ने की खबर है। पत्र लिखता है, युवाओं को बैंकिंग सुविधा की जानकारी देने के लिए युवा कियोस्क और युवा बैंकिंग मित्र बनाएंगे सभी बैंक। 16 साल बाद भारत और पाकिस्तान आमने सामने, पुरुष हॉकी विश्व कप में शीर्ष 2 में जगह बनाने पर नजरें, अमर उजाला की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पन्ने पर विश्वविद्यालयों में भारतीय ज्ञान पर शोध की प्रक्रिया शुरू होने पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, भारतीय ज्ञान परंपरा को मिली महत्ता, भारतीय ज्ञान की खोज हमें औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त कराने के लिए, विकसित भारत के लिए ज्ञान लोग गढ़ने वाली भी है। अंतरिक्ष में उगाई सरसों से बनाई सबसे स्वादिष्ट स्पेस डिश, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन और उनकी साथी जेसिका विट ने किया कारनामा, बीज और खेती की सामग्री पृथ्वी से पहले ही भेजी गई थी। राजस्थान पत्रिका ने आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर दुनिया के पुरस्कृत फोटोग्राफ को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। पत्र लिखता है, अंधेरे में शिकार को झपटने को तत्पर बार्न उल्लू, ये तस्वीर इंग्लैंड के नॉरफॉक की है और तस्वीर ली है विंस बर्टन ने। पत्र ने आइसलैंड में डेनियल विने गार्सिया द्वारा क्लिक की गई तस्वीर भी साझा की है, जो ज्वालामुखी से बहते गर्म लावा का विहंगम चित्र है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने घरेलू पाइपलाइन गैस कनेक्शन को घर घर पहुंचाने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 600 पुराने विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए। झारखंड सरकार ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बीच अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की। दिल्ली जल बोर्ड रिश्वत मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और 5 अन्य गिरफ्तार। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर मिसाइल हमले का आरोप लगाते हुए व्यापारिक और वित्तीय लेन देन स्थगित किए। और नीदरलैंड्स में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Government approves incentive scheme to accelerate domestic PNG connections. National Testing Agency revamps its examination team by removing 600 experts and onboarding new ones. Jharkhand government releases list of 44 recruitment exams cancelled due to irregularities amid students' protest. Anti-corruption branch of Delhi government arrests former minister and AAP leader Satendra Jain and 5 others in Jal Board bribery case. UAE suspends all trade and financial dealings with Iran after accusing it of missile threat. And India to take on Pakistan in the crucial Pool D match of the FIH Men's Hockey World Cup in Amstelveen, Netherlands today. The government has approved the incentive scheme for promotion of domestic PNG connections aimed at bringing clean, safe and affordable piped cooking gas to households across the country. The scheme will be effective from the 1st of next month. The Minister of Petroleum and Natural Gas said that the scheme is designed to fast-track the expansion of active PNG connections, ensuring that more families can start using piped natural gas.

0: घरों तक पाइप के जरिए माहौलियात के लिए साजगार, महफूज और कम खर्च खाना पकाने की गैस पहुंचाना है। मस्कुरा स्कीम का इतलाक अगले महीने की पहली तारीख से होगा। पेट्रोलियम और कुदरती गैस महकमे की वजारत ने कहा है कि पीएनजी कनेक्शन की तादाद में तेजी के साथ तौसी की खातिर ये स्कीम बनाई गई है ताकि मजीद कुनबे जल्द से जल्द अपनी रसोई में पाइप के जरिए पहुंचाई जाने वाली कुदरती गैस का इस्तेमाल शुरू कर सकें। फिलहाल मुल्क में 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन हैं। मस्कुरा स्कीम 6 महीने के अरसे में 2 मरहलों में नाफिज की जाएगी। वजारत ने कहा है कि पाइप के जरिए पहुंचाई जाने वाली कुदरती गैस एलपीजी सिलेंडर और खाना पकाने के काम आने वाली रिवायती ईंधन का एक महफूज और ज्यादा सहूलत वाला मुतबादिल है। इम्तिहानात कराने वाली एजेंसी एनटीए ने 600 माहिरीन को हटाकर और नए माहिरीन को शामिल करके इम्तिहानात से मुतालिक अपनी टीम की तश्कील नौ की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर तालीम की वजारत ने कहा है कि इम्तिहान के पर्चों की जांच को मुस्तहकम बनाने की खातिर एनटीए सवाल नामों को चेक करने का 4 सथी निजाम नाफिज करेगी। इसके अलावा ये एजेंसी अगले 2-3 हफ्तों के दौरान 20-25 अहदेदारों को भी शामिल करेगी। इसके साथ साथ इम्तिहान कराने वाली एजेंसी एनटीए के दफातर नए मकाम पर मुंतकिल किए जाएंगे जहां सीआईएसएफ की टीमों की तैनाती के साथ सिक्योरिटी को मजीद मुस्तहकम बनाया जाएगा। इम्तिहानात को खुश उसलूबी के साथ कराने के लिए सिक्योरिटी और मुतालिका बुनियादी ढांचे की तमाम जरूरी सहूलियात दस्तियाब कराने की वजीर तालीम प्रहलाद जोशी की हिदायत के तनाजुर में एनटीए ने यह फैसला किया है। झारखंड सरकार ने तलबा के एहतजाज के तनाजुर में कल रात 44 भर्ती इम्तिहानात की फहरिस्त जारी की है जो बेजाब्तगियों की वजह से मनसूख किए गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: झारखंड सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया है कि मनसूख किए गए इम्तिहानात में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी, जेएसएससी और एक एजेंसी टीडीपीएल समेत दीगर एजेंसियों के जरिए कराए गए इम्तिहान शामिल हैं। जो इम्तिहान मनसूख किए गए हैं उनमें ड्रग इंस्पेक्टर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, डिप्टी कलेक्टर्स, डेंटल डॉक्टर, असिस्टेंट इंजीनियर्स, सिविल जज और फॉरेस्ट रेंज अफसरों की भर्ती के इम्तिहान शामिल हैं। इसके अलावा महकमे जंगलात के असिस्टेंट कंजर्वेटर्स और दीगर इंतजामी नीज तकनीकी ओहदों पर भर्ती के इम्तिहान भी मनसूख किए गए हैं। सरकार ने 6 इम्तिहान मुलतवी करने और 17 इम्तिहानात की सीआईडी तहकीकात का भी हुक्म दिया है। जेपीएससी और जेएसएससी इम्तिहानात में मुबैना बेजाबतगियों से मुतालिक केसों के लिए हाईकोर्ट से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट तश्कील देने की दरख्वास्त की जाएगी। इन दोनों कमीशनों में दाखिले विजिलेंस शोबे भी बनाए जाएंगे जबकि आला आईएएस अफसर अमिताभ कौशल की सरबराही में एक कमेटी इम्तिहानात के निजाम में इस्लाहात की सिफारिश करेगी। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
0: दिल्ली सरकार के बदउनवानी मुखालिफ शोबे ने जल बोर्ड रिश्वत केस में दिल्ली के साबिक वजीर और आम आदमी पार्टी के लीडर सत्येंद्र जैन और 5 दीगर अफराद को गिरफ्तार किया है। इनमें दिल्ली जल बोर्ड के साबिक सीईओ उदित प्रकाश राय भी शामिल हैं। हमारे नामा निगार ने बताया है कि दिल्ली जल बोर्ड के पानी को साफ करने के प्लांट्स को जदीद तर्ज पर ढालने और उन्हें बेहतर बनाने से मुतालिक टेंडर के अमल में मुबैना बेजाब्तगियों और मुजरिमाना साजिश के सिलसिले में ये गिरफ्तारियां की गई हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: विजिलेंस डायरेक्टोरेट की शिकायत पर इन अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। छानबीन के दौरान ये मालूम हुआ कि टेंडर के अमल में एक मखसूस टेक्नोलॉजी फर्म को फायदा पहुंचाने के मकसद से शरायत रखी गई थी जिससे टेंडर का अमल महदूद होकर रह गया और एक मखसूस प्राइवेट कंपनी को नामुनासिब फायदा पहुंचाया गया। इसके अलावा छानबीन से ये भी इंकशाफ हुआ कि टेंडर के अमल में हेराफेरी करने के लिए कुछ अफराद मुबैना तौर पर कुछ सरकारी अहलकारों और बिचौलियों के साथ राबता कायम किए हुए थे। बदउनवानी मुखालिफ शोबे ने कहा है कि इससे कुछ अफराद और सरकारी अहलकारों के दरमियान मुबैना साजबाज का पता चलता है। रकम के लेन देन और इस जुर्म से हासिल होने वाली मुबैना रकम की पूरी जांच की जा रही है। दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: मगरबी बंगाल में कोलकाता के न्यू मार्केट इलाके में एक होटल में आग लगने से 9 अफराद की मौत हो गई जबकि 6 जख्मी हुए। पुलिस जराये के मुताबिक आग लगने का यह वाकया रात देर गए 2 बजे के आसपास पेश आया। मालूम हुआ है कि 5 मंजिला इमारत की 3री मंजिल से घना धुआं उठता हुआ देखा गया।

0: सीधे मुकाबलों में अमेरिका की लॉरेन लैम और एलिसन ली की जोड़ी को 21-15 और 21-12 से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। मर्दों दूसरी जानिब खवातीन के डबल्स में कवि प्रिया सेल्वम और सिमरन सिंघी की भारतीय जोड़ी बल्गारिया की स्टेफनी स्टोएवा और गैब्रियला स्टोएवा की जोड़ी से 21-7 और 21-14 से हारने के बाद इस चैंपियनशिप से बाहर हो गई। मर्दों के क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन आज अपनी दूसरी इनिंग्स कल के 4 विकेट पर 84 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। यह मैच श्रीलंका के गाल बैन अल-अक़वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है। कल शाम मैच खत्म होने पर सोनल दिनुशा और धनंजय दे सिल्वा क्रीज पर थे। इससे पहले भारतीय टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में 193 रन पर आउट हो गई थी। इस तरह श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का निशाना मिला था। भारत ने पहले इनिंग्स में 462 रन बनाए थे, जवाब में श्रीलंका की टीम 284 रन ही बना सकी। सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच 23 अगस्त को कोलंबो में खेला जाएगा। फुटबॉल में आज एसिड बंगाल एफसी का मुकाबला कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में 135वें डूरेंट कप के पहले सेमीफाइनल में स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली से होगा। यह मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। दोनों टीमों की नजर फाइनल में जगह बनाने पर होगी। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया कौनैन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप ने ब्रिक्स ममालिक के वज़राए माहौलियात की मीटिंग से मुतालिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार ने माहौलियात जंगलात और मौसमियाती तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव के इस बयान को सुर्खी बनाया है कि ब्रिक्स की भारत की सदारत वजीर आजम नरेंद्र मोदी के उस नजरिए से रहनुमाई हासिल करती है जिसमें तरक्की पजीर ममालिक और ग्लोबल साउथ के खदशात को एजेंडे में तरजीह दी गई है। अखबार इनकलाब ने वजारत दिफा के जरिए मुल्क सतह पर तैयार की जाने वाली 405 दिफाई मसनूआत की 6ठी फहरिस्त जारी करने से मुतालिक खबर को नुमाया तौर पर शाया किया है। जनूबी जोनल काउंसिल की 31वीं मीटिंग वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में जुमरात को तमिलनाडु में होगी, इस खबर को भी अखबारात ने अहमियत दी है।
0: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सरकार ने घरेलू पीएनजी कनेक्शन में तेजी लाने के लिए तरगीब की स्कीम को मंजूरी दे दी है। इम्तिहानात कराने वाली एजेंसी ने 600 माहिरीन को हटाकर और नए माहिरीन को शामिल करके इम्तिहानात से मुतालिक अपनी टीम की तश्कील नौ की है। झारखंड सरकार ने तलबा के एहतजाज के तनाजुर में 49 भर्ती इम्तिहानात की फहरिस्त जारी की है जो बेजाबतगियों की वजह से मनसूख किए गए हैं। दिल्ली सरकार के बदउनवानी मुखालिफ शोबे ने जल बोर्ड रिश्वत केस में साबिक वजीर और आम आदमी पार्टी के लीडर सत्येंद्र जैन और 5 दीगर अफराद को गिरफ्तार किया है। मुत्तहिद अरब इमारात ने ईरान से मिसाइल खतरे का इल्जाम लगाते हुए उसके साथ सभी तिजारती और माली लेन देन मुअत्तल कर दिए हैं। और नीदरलैंड्स के शहर एम्स्टरडैम में आज FIH मर्दों के हॉकी वर्ल्ड कप के पूल डी के अहम मैच में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। आप हमारे कार्यक्रम न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे नमस्कार प्रयागराज।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
5: मेहमान आएंगे हो सकता है, इंडिया मैच जीतेगा ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
6: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें।

अब प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। श्रोताओं, 19 अगस्त का आज का ये दिन वैसे तो हर दिन की तरह है, लेकिन आज का ये दिन विश्व के

नमस्कार प्रयागराज। श्रोताओं, 19 अगस्त का आज का ये दिन वैसे तो हर दिन की तरह है, लेकिन आज का ये दिन विश्व के इतिहास में अपना एक अलग और महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज ही के दिन घटी दो घटनाओं ने 19 अगस्त को इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। 19 अगस्त 2003 को यूएन मुख्यालय पर हुए बम हमले की घटना में 22 मानवीय सहायता कर्मी शहीद हो गए थे और ये घटना इराक के बगदाद शहर में हुई थी। ब्राजील के एक अनुभवी राजनयिक सर्जियो वेरा डिमेलो, जो कि इराक में यूएन मुख्यालय में प्रतिनिधि थे, उनके और 22 मानव सहायता कर्मियों की इस बम कांड में शहादत हो गई थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन मानवीय सेवा में समर्पित कर दिया था। इस घटना की याद में और उन गुमनाम मानव सहायता कर्मियों को श्रद्धांजलि स्वरूप ये दिन मनाया जाता है। यूएन ने 2008 में 19 अगस्त को विश्व मानवीय सहायता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। जी, आज है विश्व मानवीय सहायता दिवस। आज के दिन हम उन लाखों मानव सहायता कर्मियों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने युद्ध में, आपदा में, बाढ़ राहत में, महामारी में, भूकंप में और संकटों में मानवीय सहायता करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। और ऐसे लाखों मानव सहायता कर्मी जो गुमनाम हैं लेकिन इस पुनीत कार्य को अपनी जान जोखिम में डालकर भी करते हैं, हम उन्हें सलाम करते हैं, क्योंकि बिना सामने आए वो लाखों की जिंदगियों को बचाते हैं, मानवता की रक्षा करते हैं। आज के दिन हमें भी अपनी ओर से छोटी सी कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, किसी ज़रूरतमंद की सहायता बिना किसी स्वार्थ के, बिना कुछ जताए। यही हमारा सबसे बड़ा सम्मान होगा उन महान सेवा कर्मियों के प्रति। हर साल इसका कोई न कोई थीम होता है और इस साल भी है। इस साल का थीम है शहीद मानवतावादियों को श्रद्धांजलि अर्पित करना और स्वास्थ्य देखभाल की बेहतर सुरक्षा की मांग करना।

19 अगस्त का दिन जिस दूसरी घटना के लिए याद किया जाता है वो है 1839 में लुई डागेयर द्वारा खोजे गए डागेयरियोटाइप प्रोसेस का, जिसे फ्रांस की सरकार ने दुनिया के सामने सार्वजनिक किया था। ये दुनिया का पहला व्यावहारिक फोटोग्राफिक तरीका था, समय को रोकने का जादू। फोटोग्राफी ने हमें अभी हम जो इतनी आसानी से फोटो खींच लेते हैं, उस समय से खींचने में कई मिनटों का समय लगता था, घंटों पोज देने में दिक्कत होती थी, लेकिन आज हम अपने स्मार्टफोन से एक क्लिक पर फोटो खींच लेते हैं। हर पल को हमेशा के लिए कैद कर लेते हैं, खुशी के पल, संघर्ष के पल, गम के पल, किसी के आंसू, किसी की मुस्कान, प्रकृति का सौंदर्य, प्यार और सब कुछ। सब कुछ कितना आसान हो गया है, आज हम बहुत आसानी से अपने हर पल को कैद कर सकते हैं। उस फोटो के पीछे की कहानी भी उस एक क्लिक में कैद हो जाती है। विश्व फोटोग्राफी दिवस हमें याद दिलाता है कि जो तस्वीर हमारी आंखों ने देखे, वो पल जो हमने महसूस किए हैं, वो दूसरों तक भी पहुँचे। जब हम कहीं घूमने जाते हैं, वहाँ की खूबसूरती, वहाँ का रहन सहन, खान पान, घूमने की जगहें, सब कुछ अपने स्मार्टफोन में कैद कर लेते हैं और आज के इस सोशल मीडिया के ज़माने में तुरंत ही शेयर कर देते हैं। इस तरह से वो लाखों तक पहुँच जाता है और जो नहीं भी जा सकते, कम से कम वो उनकी उन लाइव तस्वीरों को देखकर, उनके वीडियोस देखकर महसूस कर सकते हैं जैसे कि वो भी उस पल वहीं हैं। समाज की अच्छाई, सच्चाई, सब कुछ सामने लाने में ये फोटोग्राफी बहुत कमाल करती है। इस साल का थीम है घर, तो शुरुआत अपने घर से करते हैं और एक सुंदर सी याद बनाते हुए आज का दिन सेलिब्रेट करते हैं। श्रोताओं, आज के इन दोनों दिनों में समानता ये है कि मानवीय सहायता कर्मी संकट के समय मानवता की रक्षा करते हैं और फोटोग्राफी हमें उन पलों को अमर बनाने में मदद करती है। आज के नमस्कार प्रयागराज कार्यक्रम में बस इतना ही।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। श्रोताओं, एक सूचना सुनिए। गुरुवार दिनांक 20 अगस्त 2026 को प्रसारित होने वाले सजीव हेलो पनघट कार्यक्रम में महिलाओं के कानूनी अधिकार विषय पर आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगी एडवोकेट नाजिया नफीस। आप अपने प्रश्न दोपहर 1:15 से 2 बजे तक फोन नंबर 0532-297-0462 और 0532-242-36-49 पर पूछ सकते हैं। फोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 0532-297-0462 और 0532-242-36-49। आप अपने सवाल व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं, नंबर है 8004926250। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
3: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
4: RBI कहता है।
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: UP 112 है उत्तर प्रदेश का सुरक्षा चक्र, क्योंकि ये बेफिक्र होकर खुली हवा में आजादी के साथ सांस लेने का हौसला देता है।
7: तो किसी भी आपात स्थिति में पुलिस, फायर ब्रिगेड, प्राकृतिक आपदा, एम्बुलेंस, साइबर अपराध, महिला या बाल अपराध संबंधित प्रथम प्रतिक्रिया और

0: तत्काल सहायता के लिए 112 मिलाएं।
1: यूपी 112 की ओर से प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।
0: शहर या देहात, दिन हो या रात, यूपी 112 है आपके साथ।
1: यूपी 112 नंबर 1 सेवाएं अनेक।
2: लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। ये पहला गाना हम आपको फरे फिल्म से सुनवा रहे हैं। संगीत दिया है अनु मलिक ने, बोल हैं सईद कादरी के और आवाज सुनिधि चौहान की।

और अब ये आखिरी गाना हम आपको सर फिल्म से सुनवा रहे हैं। कतिल शिफाई के बोल हैं, अनु मलिक का संगीत है और आवाज़ कुमार सानू की।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:15 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप हमारा अगला प्रसारण सुनेंगे। हमारे अगले प्रसारण की बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: जिले की हलचल।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए प्रयागराज और मैनपुरी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं प्रयागराज जिले की हलचल, आलेख और स्वर है प्रवीण मिश्रा का।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर प्रयागराज में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और स्कूली छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भव्य तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया और लोगों का उत्साहवर्धन किया। वहीं पूरे जनपद में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पुलिस लाइन में तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 14 अगस्त को शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी सम्मिलित हुए। उन्होंने शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उन्हें नमन किया। इसके बाद उप मुख्यमंत्री ने संस्कृत विभाग के द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर हम सभी संकल्प लें कि देश की एकता और अखंडता पर कभी आंच नहीं आने देंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रथम की भावना का संकल्प लेकर कार्य करने से भारत जल्द ही दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनकर विश्व गुरु बन जाएगा। उन्होंने कहा,
3: वह विभाजन की जो विभीषिका थी उसका स्मरण वर्तमान पीढ़ी को रहे, आने वाली पीढ़ियों को रहे। अपने अमर शहीदों को स्मरण रखते हुए और देश की एकता के लिए अपने को समर्पित कर।
2: प्रयागराज के फाफामऊ में प्रतियोगी परीक्षा और संस्थागत शिक्षण में छात्रों की होने वाली समस्याओं को लेकर आयोजित छात्रों की बात युवाओं के साथ कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार प्रतियोगी छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने

0: कहा कि छात्रों के सुझाव सरकार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और उन्हें पूरी गंभीरता से लेकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पेपर लीक मामलों पर प्रभावी रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने कड़ा कानून अब बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने युवाओं से किए गए वादों के अनुरूप परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। श्री मौर्य ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े छात्र अपनी समस्याओं एवं सुझाव लिखित रूप से अथवा ईमेल के माध्यम से भी उपलब्ध करा सकते हैं। सरकार प्रत्येक सुझाव का अध्ययन कर उसके समाधान का प्रयास करेगी। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत मेरा युवा भारत द्वारा युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने एवं नशा मुक्त समाज के निर्माण के उद्देश्य से प्रयागराज में उप निदेशक जागृति पांडे के निर्देशन में विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्राचार्य प्रोफेसर आनंद शंकर सिंह ने युवाओं को नशे से दूर रहने तथा अपनी ऊर्जा और प्रतिभा को सकारात्मक दिशा में लगाकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। इस अवसर पर नशा मुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर विभिन्न नशा मुक्त गतिविधियों का आयोजन करने की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में युवाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतिभागियों ने अपनी रचनात्मकता एवं प्रतिभा के माध्यम से नशा मुक्त भारत का संदेश प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। विजयी प्रतियोगिताओं को पुरस्कृत किया गया। उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड प्रयागराज द्वारा खादी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भागवतपुर ब्लॉक सदर में एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीण युवाओं, महिलाओं एवं स्वरोजगार के इच्छुक लोगों को विभाग द्वारा संचालित विभिन्न रोजगार परक योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर महापौर उमेश गणेश चंद्र केसरवानी ने खादी के महत्व के बारे में मौजूद लोगों को संबोधित किया। प्रयागराज में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम एवं किशोरियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग ने HPV जागरूकता एवं टीकाकरण अभियान के संबंध में प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि 14-15 वर्ष की आयु वर्ग की सभी बालिकाओं एवं HPV टीकाकरण समय से अवश्य कराए जाएं। उन्होंने कहा कि HPV टीकाकरण सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दिव्यांगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय प्रयागराज एवं उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन प्रयागराज के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय दिव्यांगजन रोजगार मेला का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से 46 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। रोजगार मेले में कुल 89 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया।
1: प्रयागराज जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मैनपुरी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नीरज शर्मा का।
2: मैनपुरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 682 करोड़ रुपए की लागत वाली 111 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में बेटियों और व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर संकट का माहौल था, जबकि पिछले 9 वर्षों में सरकार ने संगठित अपराध और माफिया के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के बीमारू राज्य की छवि से निकलकर राजस्व प्लस राज बनने और डबल इंजन सरकार में तेजी से विकास होने की बात कही। मुख्यमंत्री ने मैनपुरी और इटावा के विकास को देश के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया और कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने के निर्देश दिए। जिले में निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति और गुणवत्ता को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी भी सक्रिय हैं। उन्होंने 24 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से निर्माणाधीन बहुउद्देशीय हॉल, प्रेक्षागृह एवं सांस्कृतिक केंद्र तथा 38 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे संग्रहालय का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यदायी संस्था CNDS के अधिकारियों को निर्माण में गुणवत्ता और निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि यह परिसर भविष्य में जिले की सांस्कृतिक, साहित्यिक और सामाजिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनेगा। परिसर में पार्किंग, लैंडस्केपिंग, हरित क्षेत्र, विद्युत जल निकासी और स्वच्छता व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया। भोगांव में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण को लेकर प्रशासन ने शक्ति दिखाई है। जिलाधिकारी ने पैमाइश से जुड़े विवादों में नियमानुसार धारा 24 के तहत कार्रवाई करने और दोनों पक्षों की सहमति होने पर तत्काल पैमाइश कराने के निर्देश दिए हैं। पट्टेदारों को आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाने के साथ चक मार्गों, तालाबों, पश्चर और अन्य सार्वजनिक भूमि को कब्जा मुक्त कराने को कहा है। मिशन समाधान के तहत खाली कराई गई ग्राम सभा की भूमि को सार्वजनिक उपयोग के लिए सुरक्षित रखने तथा दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराने के निर्देश भी दिए गए। पेंशन, कन्या सुमंगला योजना तथा आय, जाति और निवास प्रमाण पत्रों से जुड़े लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण भी सुनिश्चित करने को कहा गया है। स्वच्छ

0: भारत मिशन ग्रामीण के अगले चरण की रूपरेखा तैयार करने में अब आम जनता की राय को भी महत्व दिया जा रहा है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय ने अगले चरण का रोड मैप तैयार करने के लिए पोर्टल पर लोगों से सुझाव मांगे हैं। पंचायती राज विभाग के निदेशक अमित कुमार ने मंडली उप निदेशकों और जिला पंचायत राज अधिकारियों को अधिक से अधिक लोगों को सुझाव देने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए हैं। जिले में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का पहला चरण पूरा हो चुका है, जबकि दूसरे चरण में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और फिकल स्लज मैनेजमेंट जैसे कार्यों पर जोर दिया जा रहा है। अब अगले चरण की योजना में जनता की जरूरतों और अनुभवों को शामिल करने के लिए सुझाव मांगे जा रहे हैं। इससे ग्रामीण स्वच्छता व्यवस्था को अधिक प्रभावी और जनोपयोगी बनाने में की दिशा में नई पहल की उम्मीद है। शिक्षा के क्षेत्र में मैनपुरी के लिए गौरव की खबर है। सुदित ग्लोबल एकेडमी के कक्षा 12 के छात्र पीयूष का भारत सरकार की प्रेरणा परियोजना के लिए चयन हुआ है। प्रत्येक जिले से एक छात्र और एक छात्रा के चयन की व्यवस्था के तहत चयनित पीयूष गुजरात के बड़नगर का भ्रमण करेंगे। वे उस विद्यालय का भी भ्रमण करेंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थी जीवन में शिक्षा प्राप्त की थी। यात्रा के दौरान उन्हें भारतीय संस्कृति, इतिहास, ज्ञान परंपरा, जीवन मूल्यों, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण से जुड़े विषयों को समझने का अवसर मिलेगा। पीयूष के चयन पर विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों और विद्यार्थियों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। जिले के प्रमुख शिक्षाविद डॉक्टर राममोहन कहते हैं,
1: प्रेरणा परियोजना भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, गौरवशाली इतिहास, भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन मूल्यों, नेतृत्व नवाचार तथा राष्ट्र निर्माण की भावना से परिचित कराना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर वड़नगर की यात्रा उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण अनुभव सिद्ध होगी।
0: युवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत शैक्षिक सत्र 2026-27 में निशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। सिविल सेवा, पीसीएस और एसएससी सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए योग्य एवं अनुभवी अतिथि व्याख्याताओं का चयन किया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी नेहा बंधु के अनुसार प्रत्येक 90 मिनट के व्याख्यान के लिए 2,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा और अधिकतम 30 व्याख्यान प्रतिमाह अनुमन्य होंगे। इच्छुक पात्र अभ्यर्थी 18 अगस्त को पूर्वान 11 बजे तक आवेदन जमा कर उसी दिन विकास भवन के अंबेडकर सभागार में आयोजित वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। लीजिए सुनिए समूह स्वरों में देशगान।

अभी आप समूह स्वरों में देश गान सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:30 होने को है। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण होगा। हमारे अगले प्रसारण की थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: उर्दू प्रोग्राम।
1: लफ्जों की गुलिस्ता में महकती है जो तासीर, बदल देती है वो इंसान की सोच और तकदीर। जी हाँ सामई, जब अल्फाज रूह की गहराइयों से निकलते हैं और पाकीजा जज्बातों में ढलते हैं, तो उनकी तासीर दिलों के बंद झरोखों को खोल देती है। अदब की दुनिया भी दरअसल इसी तासीर और रूहानी कशिश का नाम है, जहां लफ्ज महज आवाज नहीं रहते, बल्कि हमारी वजूद को मुनव्वर करने वाली एक शम्मा बन जाते हैं। इन्हीं महकते हुए लफ्जों के साए में आकाशवाणी के प्रयागराज मरकज से मैं निकहत सिद्दीकी आपकी रफीके सफर लेकर हाजिर हूँ आपका पसंदीदा उर्दू प्रोग्राम। पुरखलूस आदाब कबूल फरमाए। उम्मीद है आप सब बखैर वाफियत होंगे। सामईन, आज की इस महफिल में हमारे पास अदब के दो बिल्कुल मुनफरिद और जुदागाना रंग मौजूद हैं, जहां एक तरफ हमारे पास एक मुकम्मल और आलीशान मकाला है, वहीं दूसरी तरफ हम एक ऐसे अजीम शायर का मुकद्दस कलाम पेश करेंगे जो इंसानी जज्बात की एक बिल्कुल नई दास्ता बयां करेगा। तो आज का ये सफर बहुत सहरंगेज और लाजवाब होने वाला है। तो इब्तिदा करते हैं आज के इस मकाले से। आज हमने उर्दू बज़्म में मकाले के लिए जिस मौजू का इंतखाब किया है, उसके मुतालिक मैं कहूंगी कि सामेन, आसमान पर घिरते हुए स्याह बादल, मिट्टी की सोंधी खुशबू और पत्तों से छनकर आती ठंडी हवा की लहरें, ये सब इस बात की गवाही दे रहे हैं कि मौसमी बरसात

0: शायरी को अवामी शायरी कहा जाता है। उनके यहाँ बरसात का मंजर देखते हुए हमें हिंदुस्तान की माशर्ती जिंदगी की झलक मिलती है। बारिश के मौसम में गांव और शहरों की फिजा बदल जाती है। किसानों के लिए बारिश का ताल्लुक बराह रास्त उनकी माशी जिंदगी से है। मुनासिब बारिश हो तो खेत लहलहाते हैं, फसल की उम्मीद पैदा होती है और घर में खुशहाली के इम्कानात बढ़ते हैं। बारिश ना हो तो खुशहाली, कहत और परेशानी का खतरा पैदा हो जाता है। इस तरह नज़ीर के यहाँ बरसात सिर्फ हुस्नो जमाल का मौसम नहीं बल्कि माशी और माशर्ती जिंदगी से जुड़ा हुआ मौसम भी है। नज़ीर अकबर आबादी की अवामी बसीरत का एक और पहलू ये है कि वो हिंदुस्तान के त्योहारों और मेलों को भी शायरी का मौजू बनाते हैं। होली, दिवाली, ईद, शबे बारात, पतंगबाजी और मुख्तलिफ मेलों के साथ साथ मौसमों के बदलते रंग भी उनकी शायरी में जगह पाते हैं। वो हिंदुस्तान की मुश्तरक तहजीब के शायर हैं। उनके यहाँ मजहबी और समाजी जिंदगी एक दूसरे से जुदा नहीं बल्कि एक ही माशर्ती मंजरनामे का हिस्सा हैं। यही वजह है कि उनकी शायरी में हमें हिंदुस्तानी माशरे की वो गंगा जमनी तहजीब नज़र आती है जिसमें मुख्तलिफ मजहब तबके और बिरादरियाँ एक दूसरे के त्योहारों और खुशियों में शरीक होते हैं। मौसम बरसात भी इसी मुश्तरक जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। बरसात आती है तो अमीर गरीब दोनों उसके असरात महसूस करते हैं। आसमान सबके लिए एक है, बादल सबके लिए हैं, लेकिन नज़ीर की नज़र इस बात पर भी है कि एक ही मौसम मुख्तलिफ लोगों पर मुख्तलिफ असरात मुरतब करता है। एक तरफ बारिश किसी के लिए खुशी है तो दूसरी तरफ गरीब के लिए भीगती हुई झोपड़ी, कीचड़ भरी गली और रोजगार की दुश्वारी का सबब बन सकती है। यही हकीकत पसंदी नज़ीर की शायरी को अहम बनाती है। वो जिंदगी को खूबसूरत बनाकर पेश नहीं करते बल्कि उसके अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को सामने लाते हैं। उनके यहाँ खुशी के साथ फिक्र भी है, जश्न के साथ महरूमी भी और फितरत की खूबसूरती के साथ इंसानी जिंदगी की मुश्किलात भी। ये शेर देखें, बारा जब आग के पुख्ता मका हिलावे, कच्चा मका फिर उसकी भला क्यों कर किताब लावे। हर झोपड़े में शोर है, हर घर में हाय हाय, कहते हैं यारो दौड़ियो जल्दी से हाय हाय। नज़ीर की शायरी उनकी अवामी फ़िक्र का अहम हिस्सा है। उन्होंने मुश्किल फारसी आमेज जबान के बजाय ऐसी जबान इस्तेमाल की जो आम लोग समझ सकें। उनके यहाँ आम बोलचाल के अल्फाज कसरत से मिलते हैं। यही वजह है कि नज़ीर की नज़्म सुनने वाला खुद को उस मंजर का हिस्सा महसूस करता है। उनकी शायरी पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे शायर किसी बुलंद वाला महल में बैठ कर आवाम को नहीं देख रहा है बल्कि खुद उन्हीं के दरमियान मौजूद है। वो बाजार में चल रहा है, मेले में घूम रहा है, बच्चों को खेलते देख रहा है, किसानों की फिक्र सुन रहा है और बरसात में भीगती हुई गलियों का मुशाहिदा कर रहा है। नज़ीर की ये अवामी वाबस्तगी उनके फन की सबसे बड़ी ताकत है। उनकी शायरी में बरसात के साथ साथ अवामी जिंदगी की हरकत और तवानाई भी नजर आती है। उनके किरदार जामिद नहीं बल्कि मुतहर्रिक है। कोई हंस रहा है, कोई खेल रहा है, कोई बाजार जा रहा है, कोई रोजगार की तलाश में है और कोई मौसम की तब्दीली से लुत्फ अंदोज हो रहा है। आज जब हम नज़ीर की शायरी पढ़ते हैं तो हमें महसूस होता है कि जमाना बदल गया, लिबास बदल गए, शहर बदल गए, लेकिन इंसान के जज्बात बहुत ज्यादा नहीं बदले। आज भी पहली बारिश बच्चों को खुश करती है, आज भी किसान बारिश का इंतजार करता है, आज भी बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू दिल को भाती है और आज भी बरसात इंसान की जिंदगी में एक खास कैफियत पैदा करती है। सावन की काली रातें और बर्क के इशारे, जुगनू चमकते फिरते जो आसमां पे तारे, लिपटे गले से सोते माशूक माह पारे, गिरती है छत किसी की कोई कड़ा पुकारे। मुख्तसर ये कि नज़ीर अकबर आबादी की शायरी में मौसम बरसात फितरत के हुस्न और अवामी ज़िंदगी के बाहमी रिश्ते की खूबसूरत तस्वीर पेश करता है। उन्होंने बरसात को सिर्फ एक रोमानी मौसम के तौर पर नहीं देखा बल्कि उसे आम इंसान की जिंदगी, माश, खुशी, तहजीब और इज्तमाही एहसास से जोड़ कर पेश किया है। इसीलिए उनकी शायरी में हमें हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू, बरसात की फुहार और अवामी ज़िंदगी की धड़कन एक साथ सुनाई देती है।
1: नज़ीर अकबर आबादी की नज़मों में मौसमी बरसात और अवामी ज़िंदगी, इस मौजू पर अभी आप समाध फरमा रहे थे मकाला। मकाला निगार थी डॉक्टर सूफिया। तो सामिन, नज़ीर अकबर आबादी की इस भीगी हुई महफिल और अवामी रंगों से अब हम आगे बढ़ते हैं। अदब का सफ़र कभी थमता नहीं, यह तो एक बहते हुए पाक साफ दरिया की मानिंद है जो नए नए साहिलों को छूता हुआ आगे निकल जाता है। جہاں ایک طرف نذیر اکبر آبادی عوام کی زمینی حقیقتوں اور موسم کا ذکر کر رہے تھے، وہیں اب ہم ادب کے فلک

देश का अजमत बढ़ाओ तुम, यक जहेती हुस्न देश की।

0: जावां।
1: अभी आप जनाब जावेद अहमद के कलाम से महजूज हो रहे थे और सामिन इसी खूबसूरत कलाम के साथ अभी नशिस्त अपने इख्तिताम को पहुंचती है। इस उर्दू प्रोग्राम को आकाशवाणी के प्रयागराज मरकज पर तैयार किया गया और आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से नश्र किया गया। पेशकश थी प्रदीप कुमार मिश्र की। और अब इस प्रोग्राम से अपनी मेजबान निकहत सिद्दीकी को दें इजाजत। शाद रहें, आबाद रहें। अलविदा।
2: उर्दू प्रोग्राम खत्म हुआ।
3: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की।
4: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको अरुण गुलवाड़ी के गाए भजन सुनवा रहे हैं। लीजिए सुनिए ये रचना अरुण गुलवाड़ी के स्वर में।
3: महादेव शिव शंकर शंभो।
2: रचना ब्रह्मानंद जी की है।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे अरुण गुलवाड़ी के गाए भजन। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। ठीक 10 बजे आप सुनेंगे समाचार। समाचारों के लिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। सरकार ने पाइप से रसोई गैस पीएनजी कनेक्शन घर घर तक पहुंचाने की प्रक्रिया तेज करने की योजना को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये योजना पहली सितंबर से दो चरणों में लागू की जाएगी।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार योजना के माध्यम से मौजूदा पीएनजी कनेक्शनों को अपने रसोई घरों में पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल शुरू कर सकेंगे। वर्तमान में देश भर में करीब 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन है। योजना के अंतर्गत पात्र सीजीडी कंपनियों को प्रदर्शन अवधि के दौरान जोड़े गए हर अतिरिक्त घरेलू पीएनजी कनेक्शन के लिए 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर अतिरिक्त घरेलू स्तर पर उत्पादित कम कीमत वाली गैस आवंटित की जाएगी। आनंद और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4 स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। एनटीए कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान भी तैनात किए जाएंगे। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी कर दी है। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सरकार ने उन परीक्षाओं के परिणाम भी रद्द कर दिए हैं जिनकी प्रारंभिक प्रक्रिया टीडीपीएल द्वारा कराई गई थी। अधिसूचनाओं के अनुसार कथित अनियमितताओं को लेकर एसआईटी की जांच और जारी सीआईडी जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द की गई है। सरकार ने 6 परीक्षाओं को स्थगित करने और 17 परीक्षाओं की सीआईडी जांच कराने का भी फैसला लिया है। दोनों आयोगों में आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, जबकि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता वाली समिति परीक्षा प्रणाली में सुधार के सुझाव देगी। मैं विश्व रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदित प्रकाश राय और 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट

0: उन्नत बनाने की टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी के मामले में हुई है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वित्त वर्ष 2025-26 में ऋण प्रदान करने में तेज वृद्धि हुई है। इस दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के प्राथमिक क्षेत्र ऋण रूपरेखा के अंतर्गत इन बैंकों का प्रदर्शन मजबूत रहा। हालांकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कुल बकाया ऋण में 2024-25 के मुकाबले 10% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो पिछले वित्त वर्ष में 5,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का था। गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु की 2 दिन के दौरे पर आज शाम चेन्नई पहुंचेंगे। श्री शाह कल चेन्नई के पास कोवलम में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा के महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर को दूरदर्शी शासक बताया। संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे को देखते हुए ईरान के साथ सभी प्रकार के व्यापारिक और वाणिज्यिक लेनदेन स्थगित कर दिए हैं। अमीरात के विदेश मंत्रालय की संचार निदेशक अफरा अल हामिली ने बताया कि इस फैसले का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता और वित्तीय व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाए रखना है। नीदरलैंड के एम्स्टलफेन में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। दोनों टीमों के लिए अगले दौर में जगह बनाने के लिए ये मुकाबला महत्वपूर्ण है। भारत के 2 मैच से 3 अंक हैं और उसे अगले दौर में पहुंचने के लिए आज का मैच ड्रॉ करना आवश्यक है। भारत ने अब तक वेल्स पर जीत दर्ज की है, जबकि उसे इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा है। श्रीलंका में गोल क्रिकेट टेस्ट मैच के 5वें और अंतिम दिन आज श्रीलंका अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट पर 84 रन से आगे खेलेगा। भारत ने श्रीलंका को 372 रन का लक्ष्य दिया है। श्रीलंका को जीत के लिए 288 रन की जरूरत है, जबकि भारत श्रृंखला की जीत से केवल 6 विकेट दूर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। हमारे कार्यक्रम आप न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। लीजिए सुनिए वॉइस ऑफ प्रयागराज। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं आनंद भूषण सरन से नेहा गुप्ता और अभयकांत तिवारी की बातचीत का दूसरा भाग।

0: श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज में। पिछले अंक में हमने बातचीत की थी आनंद भूषण सरन जी से, तो आइए उनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं।
1: जी, हम लोग श्रोताओं बात कर रहे थे मालगाड़ी के बारे में, सिग्नलिंग के बारे में और आनंद जी की प्रशासनिक कौशल क्षमता के बारे में। तो चलिए, बहुत सारी बातें अभी शेष हैं, कुछ और खंगालते हैं और सागर से कुछ और मोती चुन लाते हैं। तो आनंद जी, ये सारी चीज़ जब आप कर रहे होते हैं, थकान होती हो, शाम होती है, घर जाते हैं, फिर घर पर भी, घर का तो एक अलग अध्याय होता है, बच्चे हैं, पत्नी है, माता पिता, रिश्तेदार, उन सभी को कैसे मैनेज करते रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत बड़े पोस्ट पर काम करते रहे हैं रेलवे में।
2: देखिए, दिक्कत काम से होती नहीं है। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि काम तो कितना है, अगर आपका अप्रोच स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो आपको सारे सोल्यूशन मिलेंगे डेफिनेटली, और सोल्यूशन मिलेंगे तो मेरे ख्याल से कोई तनाव नहीं रहेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा। हाँ, कभी कभी टेंशन होता है, कुछ बातें आ जाती है, कुछ हेड ऑफिस से आती हैं, कुछ होती हैं, तो उसका भी हमारी टीम इतनी अच्छी है कि वो कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लेती है और पूरा टीम वर्क रहता है और अच्छे से हम निकल जाते हैं।
1: अच्छा, पहले मोबाइल फोन तो था नहीं, आज मोबाइल फोन है, सेकंडों में हाँ ये हो गया वो हो गया, बहुत जल्दी कम्युनिकेशन हो जाता है। उस समय नहीं था तो क्या काम स्मूथ था या बहुत डिले होता था, या आज स्मूथ है?
2: कोई फर्क नहीं पड़ा,
1: कोई फर्क नहीं पड़ा।
2: देखिए, मैंने उस युग को भी देखा है
1: जी,
2: तो उस समय भी हमारा काम एकदम स्मूथ चलता था। मैं आपको बता दूं, मेरी पोस्टिंग थी टूंडला में, तो टूंडला में एक सिनेमा हॉल हुआ करता था, मेरी शादी भी उसी समय नहीं नहीं हुई थी। उसमें क्या था, मैं जब जाता था फिल्म देखने, 3 घंटे फिल्म देखने हैं
1: जी,
2: और आपको टच में रहना है, कहीं कुछ अनयूजल हुआ तो कहते, तो मैं कंट्रोल को अपना एक आदमी को बोलता था, जाता था, मेरी सीट नंबर नोट करता था सिनेमा।

0: माहौल में, और वो बोलता था कि आप जब भी कोई अनयूजुअल हो आप मेरे को बताओ। किस्मत से मैंने इतनी फिल्में देखी, एक ही बार हुआ ऐसा, उसने बीच में बताया कि अनयूजुअल हो गया है, तो वो भी मतलब मैंने वहीं से इंस्ट्रक्शन उसको दी तो सॉल्व हो गई, तो मेरी पिक्चर डिस्टर्ब नहीं हुई।
1: मतलब अपने जो पसंद की चीजें रही हैं, एक्टिविटीज सर ने पूरा
0: वो करते रहे और तैयार भी रहे कि कोई चुनौती आए। तो इसी से रिलेटेड अगला प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा कि कैरियर में वो कौन सी चुनौती थी जो आपको याद हो, या कोई घटना हो जो आपको लगा हो कि बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई जिसने आपकी लाइफ को बदला हो या आपके कार्य को और भी निखारा हो।
1: देखिए, पहली पोस्टिंग तो जैसे मैंने बताया टूंडला में था, तो एक्चुअली बड़ी विषम परिस्थितियाँ कभी कभी आ जाती थी। पहले क्या होता था, हमारे जो कम्युनिकेशन था, पहले ऑप्टिकल फाइबर नहीं हुआ करते थे, सिंपल केबल हुआ करते थे, और बरसात के दिनों में बड़ी दिक्कत होती थी। उसके ऊपर पेपर का इंसुलेशन रहता था, तो उसमें आप ये समझ लीजिए बरसात में वो पेपर इंसुलेशन फेल हो जाता था, वो शॉर्ट कट जाते थे, तो कम्युनिकेशन फेल हो जाता था।
2: जी
1: और कम्युनिकेशन फेल होने का मतलब ट्रेनें रुक जाती थी, पहले इंजन कट के जाता था, फिर वो उसको बहुत लंबा प्रोसेस
2: अच्छा, ये
1: था।
2: सब हम लोगों ने देखा है
1: हाँ,
2: छोटेपन में ना।
1: तो मुझे याद है इटावा और इकदिल,
2: जी
1: इटावा और इकदिल एक छोटा स्टेशन है, उसके बीच में एक बार केबिन
2: कट
1: बैठ
2: गई,
1: गई
2: जी
1: थी।
2: बैठ गई।
1: अच्छा, अब उसमें क्या हुआ, शाम को 7 बजे सूचना मिली, बरसात हो रही थी, लेकिन ट्रेनें तो रुकनी नहीं है, तो पहले किसी तरह टेम्परेरी दूसरे रूट से चालू किया। अब दूसरा रूट भी कब तक चले, तो वहाँ हम लोगों ने 2 दिन 2 रात कैंप किया,
2: जी
1: और वो एक दिल स्टेशन ऐसा था कि वहाँ आप सोच नहीं सकते क्या कंडीशन होगी रुकने की। लेकिन उस घटना में हम लोग पूरा रुकते थे, रात में वहीं एक छोटा सा कमरा था स्टेशन पे, उस पर रुकते थे, लेकिन तभी लौटे जब वो स्टोर हो गया। अच्छा, ये तो घटना थी। घटना के बाद इसका अप्रिसिएशन मुझे बहुत मिला डिवीजन से, पूरे DRM सीनियर DST जितने भी लोग थे बहुत अप्रिशिएट किया कि तुम साइट नहीं छोड़ी। तो वो जो अप्रिसिएशन मिला, मेरे को लगा कि ये इस तरह का काम करने में अगर आप लगन से करोगे तो ऐसा नहीं कि आपको कष्ट हो रहा है तो कष्ट ही होगा, आपको बहुत अंदर से आत्मसंतुष्टि मिलेगी।
2: जी
0: वो एक दिल की घटना सर के दिल में एक विशेष स्थान बना गई।
2: जी तो इस विशेष स्थान के लिए श्रोताओं को एक छोटा सा अनगमा भी सुनवाते
0: तो
2: चलें।
0: आपका एक मनपसंद गीत फिर से सुनते हैं।
2: कोई नया सा गाना जो आपको पसंद हो
1: इसके लिए मैं नए गाने कम ही सुनता
2: तो
1: हूँ।
2: ठीक है, ओल्ड इज गोल्ड।
1: ओल्ड इज
2: जी
1: गोल्ड एक गाना है, आने वाला पल जाने वाला है।
2: हाँ, आने वाला पल जाने वाला है, बहुत बहुत ही सुंदर सा गीत है ये। तो चलिए इस गीत को सुनते हैं हम लोग।

0: गीत को जब हम लोग सुन रहे थे उससे पहले बातें हो रही थी, एक दिल स्टेशन पर आपको बहुत सारा काम करना पड़ा, स्टेशन हॉल्ट करना पड़ा था, प्रेशर भी रहता होगा,
1: बहुत।
0: फोन आते रहे होंगे कि भाई कब तक बनेगा।
1: नहीं, उस समय फोन नहीं आता
0: अच्छा,
1: था,
0: उस समय
1: मोबाइल
0: फोन
1: नहीं था।
0: मोबाइल नहीं था। लोग कांटेक्ट जिस तरह से
1: हाँ,
0: भी
1: कांटेक्ट
0: दूत और
1: करते,
0: उस
1: फोन हम लोग का लेकिन लग जाता था हर
0: लग
1: जगह।
0: जाता
1: हाँ,
0: था,
1: वो हमारे इंतजाम रहता था।
0: तो वो जो प्रेशर है बहुत लोग हैंडल नहीं कर पाते। जैसे बच्चे भी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो वो गिव अप करते हैं।
1: नहीं, ये मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, प्रेशर तो ज़िंदगी में बहुत आएंगे, बिना प्रेशर के तो ज़िंदगी बेकार है, लेकिन प्रेशर में अपना विवेक नहीं खोना है, कंट्रोल नहीं खोना है, और कर्म तो करते ही रहना है। गीता में भी लिखा है, कर्म करते रहिए, कर्म करेंगे फल मिलेगा, फल की इच्छा मत करिए लेकिन फल मिलेगा आपको।
0: ये बात सबसे पहले आपको किसने बताई थी कि गीता पढ़नी चाहिए और कर्म में यकीन रखिए?
1: गीता तो बहुत बताए
0: जी
1: लोग, लेकिन जो मैंने अनुभव बताया, एक दो अनुभव और हैं, उसके बाद मुझे ये एहसास हुआ, जो लोग कहते थे सही कहते थे कि गीता पढ़िए और गीता ही में लिखा है कर्म फल की चिंता मत, क्योंकि अगर जहाँ आप फल जोड़ेंगे तहाँ आपको संतुष्टि मिल ही नहीं सकती।
0: एक चिंता जन्म लेने लगती है
1: बिल्कुल
0: कि
1: सही,
0: यही चाहिए
1: यही चाहिए,
0: और कर्म में कुछ भी होगा ठीक है,
1: ठीक होगा,
0: हम एडजस्ट करेंगे।
1: एडजस्ट कर।
0: कई बार अनचाहा एक प्रेशर भी आता है, लोग चार बात दिमाग में डाल देते हैं, तो उस समय स्टेबल कैसे रखते हैं अपने आप को?
1: उस समय मेरा यही कहना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।
0: अभय जी सर के पास हर प्रश्न का जवाब
1: आनंद भूषण जी,
0: है।
1: जैसे आपने बताया कि आपको एक चुनौती मिली एक दिल स्टेशन पे, फिर आपने उसको पूरा किया, उसका अप्रिसिएशन आपको मिला, लेकिन कई बार होता है कि हमें जो प्रोजेक्ट मिलता है हम जितना करना चाहते कभी कभी नहीं कर पाते हैं, उसको असफलता न कहें तो एक सीख कहें, तो जब वो सिचुएशन आती है कि आपको लगता नहीं मन का नहीं हुआ, तो उस समय खुद को कैसे संभालते हैं और खुद को कैसे इम्प्रूव करते हैं?
2: देखिए, अगर मन मुताबिक काम नहीं होता है तो बुरा तो लगता ही है, आत्मसंतुष्टि नहीं मिलेगी। तो उसका एक ही तरीका मैं तो बताना चाहूँगा, आजकल की जो नई पीढ़ी है, जो आप सोच रहे हैं उसको मन लगा के करिए, और मैं नहीं समझता कि नहीं पूरा होगा, पूरा होगा, एक दिन के बजाय 2 दिन लगेगा, 2 के बजाय 3 दिन लगेगा, लेकिन वो होगा जरूर,
1: आज नहीं तो कल
2: आज
1: होगा।
2: नहीं तो कल होगा।
0: अच्छा, कई बार लोगों को एक साथ लेकर चलना इतना आसान नहीं है। लोग कहते हैं
1: मोल
0: कि
1: जी
0: अरे
1: लेकर
0: ये
1: क्या आसान,
0: तो लीडर हैं, बड़ी कुर्सी पर जी बैठ गए और इनके पास काम ही क्या है। फिर उस स्थिति में, चूंकि आप गैंगमैन, हम लोग लोकल भाषा में उसको गैंती मैन कहते थे अपने
1: हाँ
0: कस्बे में,
1: बिल्कुल ठीक,
0: और फाटक पे जो लोग काम करते थे वो आपके प्रेशर को नहीं समझ सकते, वो तो कहेंगे अरे बड़े साहब जब आते हैं तब। उनको कैसे सबको प्रेरित करके एक साथ कि नहीं हमें इसी तरह से काम करना होगा, क्योंकि जिंदगियां हैं, ट्रेन में हो वो चाहे मालगाड़ी में, कुछ भी भंडारण हो सकता है उसमें।
1: देखिए इसमें क्या है कि आपको जो भी ये स्किल है आपकी मिक्स रहेंगी इसमें, देखिए प्यार से, डांट से, सबसे काम चलेगा, तरह तरह के लोग मिलेंगे आपको। आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमारी ट्रेन ठीक चलनी है, किसी पैसेंजर या अनसेफ घटना नहीं होती है। तो मैंने जैसे बताया गुमटी वाली घटना में कुछ लोग
0: जी
1: बहुत काबिल
0: हाँ
1: होते हैं, उसी तरह से काम करते हैं, तो उनको थोड़ा हम इग्नोर करते हैं, नॉन इम्पॉर्टेंट प्लेस पे लगा देते हैं, तो काम चलता रहता है। किसी कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन ये आपको एज पर जो भी सिचुएशन हो उसको डील करना पड़ेगा। इसीलिए आपको कहा जाता है ना कि आप लगता है कुछ नहीं कर रहे हैं, तो यही काम है आपका कि किसको कैसे डील करना है,
0: जी
1: तनख्वाह
0: जी
1: इसी बात की मिल रही है।
0: तो इसी पर एक प्यारा सा नगमा जो कि श्रोताओं को बहुत पसंद है, एक हिट फिल्म का गाना सुनते चलें।
3: तुझे

0: दोस्तों हमारे साथ अभी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के चीफ जनरल मैनेजर आनंद भूषण सरन जी हैं। गीत से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि लोगों को लेकर चलना इतना आसान नहीं है, तो उन्होंने कहा काबिलियत थोड़ी बहुत ज़रूरी है और मूल्यांकन। तो आप ये मूल्यांकन कितनी जल्दी और सटीक कर लिया करते थे कि ये जो व्यक्ति है वो प्यार की बात समझता है, इसको थोड़ा दूर भेज दिया जाए तो काम चल जाएगा।
1: ये अनुभव के साथ आता है
0: जी
1: भाई, इसका कोई पर्टिकुलर ना नियम है, वो रूल है, अनुभव के साथ आ जाता है। जब आप काम करते हो डिफरेंट
0: जी
1: सिनेरियो में, तो वो अपने आप धीरे धीरे आने लगता है। बेसिकली इसमें क्या है कि अगर आपका विजन क्लियर है, आपका माइंड क्लियर है, तो दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप जरा सा भी माइंड दूषित हुआ, डाइवर्ट हुए, तब गड़बड़ होगी।
0: ये बड़ी बात है।
2: रेलवे का काम ऐसा है कि वो सब इंटरडिपेंडेंट है, आप इंडिविजुअली कुछ नहीं कर सकते। आपको

0: टीम बनानी पड़ेगी, तो टीम बनाना ही सबसे मुश्किल काम है।
1: और ये हुनर सीखना समय के साथ और अपनी बुद्धि
0: वही अनुभव आज हम जानना
1: जी
0: चाहते हैं। तो जब आप कहीं आप नए क्षेत्र में जाते हैं, जब आपको नया कार्यभार दिया जाता है, तो सबसे पहले टीम कैसे बनाते हैं, टीम कैसे चुनते हैं? जैसा कि आपने बताया कि आप कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं जो खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड हैं, जिनको कहने की जरूरत नहीं है, कुछ लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है।
2: कुछ तो नई जगह जैसे पोस्टिंग होती है तो कुछ पुराने लोगों का फीडबैक रहता है कि ये आदमी ऐसा है, ये वो आदमी ऐसा है, और दूसरा उसकी भौगोलिक परिस्थिति क्या है,
1: जी
2: मतलब किस
1: स्थान
2: तरह
1: की
2: का,
1: पोस्टिंग की।
2: मतलब किस तरह के टेरेन है आपका, टेरेन मतलब वो
1: स्थान जो है,
2: जियोग्राफिकल,
1: हाँ जी।
2: मतलब तो उस हिसाब से क्या इम्पोर्टेंस है लाइन की, क्या इम्पोर्टेंस है जगह की, कितने पैसेंजर ट्रेन है, क्या है,
1: जी
2: कई फैक्टर्स हैं, तो उसको देखते हैं, जो मैंने कुछ बताया वो देखते हैं, फिर उसके हिसाब से, जो ऐसा नहीं कि जो पहले बता के गया ये आदमी बहुत अच्छा है उस पर विश्वास करते हैं, बुलाते हैं, फिर अपना आकलन करते हैं,
1: जी
2: और हार्डली 1 महीने 1.5 महीने में पता लग जाता
1: चीजें
2: है,
1: समझ में आ जाती
2: समझ में आ
1: हैं
2: जाती है। टाइम
1: कि
2: लगता है, 1-1.5 महीना तो लगेगा ही, और मतलब मेरे ख्याल से नई पोस्टिंग के 3-4 महीने बाद आदमी पूरा
1: रम
2: तैयार।
1: जाता है कि नहीं
2: हाँ
1: अब ऐसे
2: हाँ
1: चलना है ये।
2: ऐसे चल।
1: अभय जी देखिए, आज के भी एपिसोड का जो टाइम है वो हो चला है, तो इस एपिसोड को हम यहीं पर रोकते हैं। लेकिन दोस्तों, बातचीत का सिलसिला अभी जारी रहेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं कि आनंद भूषण जी की पढ़ाई कैसे हुई, आखिर उन्होंने पढ़ा कैसे, जब 10वीं में 12वीं में किस तरह से मेहनत की कि इतने बड़े ओहदे पर वो पहुंचे। तो सुनते रहिए वॉइस ऑफ प्रयाग, अगले एपिसोड में फिर से होगी आप सभी से मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, हम कहते हैं नमस्कार।
2: नमस्कार।

अभी आप वॉइस ऑफ प्रयागराज कार्यक्रम सुन रहे थे। आज आपने सुना आनंद भूषण सरन से नेहा गुप्ता और अभय कांत तिवारी की बातचीत का दूसरा भाग। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता, एक सूचना सुनिए। गुरुवार दिनांक 20 अगस्त 2026 को प्रसारित होने वाले सजीव हेलो पनघट कार्यक्रम में महिलाओं के कानूनी अधिकार विषय पर आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगी एडवोकेट नाजिया नफीस। आप अपने प्रश्न दोपहर 1:15 से 2 बजे के बीच फोन नंबर 0532-2970462 और 0532-2423649 पर पूछ सकते हैं। फ़ोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 0532-2970462 और 0532-2423649। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। नंबर है 8004926250। सूचना समाप्त हुई। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र सुन रहे हैं। हमारे कार्यक्रम आप न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी सुन सकते हैं। लीजिए सुनिए लोकगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं रायचंद्र पाल और साथियों के गाए लोकगीत। सबसे पहले हम आपको देवी गीत सुनवा रहे हैं रायचंद्र पाल और साथियों के स्वर में।

0: Akashvani at 90.
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के कलाकार हैं SP बाल सुब्रमण्यम। SP बाल सुब्रमण्यम ये इनका प्रचलित नाम है। इनका असली नाम था श्रीपति पंडित राध्युल बाल सुब्रमण्यम। आपका जन्म 4 जून 1946 को कोनेटमपेटी नगरी मंडल जिला चित्तूर आंध्र प्रदेश में हुआ था। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। 16 से अधिक भाषाओं में 40,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड करने का रिकॉर्ड आपके नाम है। हिंदी, तमिल, तेलुगु, कल्याण, कन्नड़, मलयालम सहित 16 भाषाओं में आपने गीत गाए। पहला गाना 1966 में तेलुगु फिल्म श्री श्री श्री मर्यादा रमन्ना से शुरुआत की थी गायन की। तेलुगु फिल्म मारो चरित्र की रीमेक फिल्म आई थी 1981 में LV प्रसाद प्रोडक्शन के बैनर तले, जो रीमेक थी। और ये फिल्म आई थी 1981 में, नाम था एक दूजे के लिए। तो सच पूछा जाए तो हिंदी फिल्मों के लिए आपने गायन की शुरुआत इसी एक दूजे के लिए फिल्म से की। और जैसा कि मैंने पहले बताया, ये तेलुगु फिल्म मारो चरित्र की रीमेक थी और ये फिल्म आई थी 1978 में। इसके निर्देशक थे के बाला चंदर। ये एक दुखांत प्रेम कथा है। ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही। 16 नामांकन में 3 ऑस्कर पुरस्कार इस फिल्म को प्राप्त हुए, जिसमें गायकी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार SP बाल सुब्रमण्यम को ही मिला था। इसी फिल्म का एक गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।

देश के सबसे लोकप्रिय आकाशवाणी केंद्र प्रयागराज से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के कलाकार हैं एसपी बाल सुब्रमण्यम। ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहा है आपका रेडियो दोस्त डॉक्टर कुंवर तौकीर अहमद खान, प्रस्तुति प्रदीप मिश्र की है। अभी आपने जो गीत सुना ये था एक दूजे के लिए। इस फिल्म को इसका नामांकन 16 में हुआ था और पुरस्कार जीतने में सफल रही है 3, जिसमें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार गायकी के लिए एसपी बाल सुब्रमण्यम को मिला था और ये उनकी पहली सफलता थी। 1989 में फिल्म आई मैंने प्यार किया राश्री प्रोडक्शन के बैनर तले, ये फिल्म भी सुपरहिट रही। अगला गाना हम इसी फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं।

इस फिल्म के लिए गीत लिखा था असद भोपाली ने और संगीत राम लक्ष्मण का था। राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले एक और फिल्म आई थी, हम आपके हैं कौन। सच पूछा जाए तो हिंदी फिल्मों में पदार्पण के बाद एसपी बालसुब्रमण्यम ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा लिया और वो सलमान खान की आवाज़ बन गए। अगली फिल्म जो आई थी 1989 में राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले, ये भी सुपर डुपर हिट रही थी। सच पूछा जाए तो ये एक फैमिली ड्रामा था, भारतीय संस्कृति में रचे बसे एक ऐसी कहानी जैसे लगता था कि वो हमारे घर की कहानी हो। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको इसी फिल्म से सुनवा रहे हैं।

5 अगस्त 1994 को रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म हम आपके हैं कौन, इसके निर्देशक सूरज बड़जात्या थे। और जैसा कि मैंने पहले बताया, ये राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले आई थी।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी प्रयागराज के प्रसारण। इस समय कार्यक्रम चल रहा है एक ही कलाकार, और आज के कलाकार हैं एसपी बाल सुब्रमण्यम। कहना ना होगा एसपी बाल सुब्रमण्यम ने दक्षिण से हिंदी बेल्ट में पदार्पण करके अपनी प्रतिभा का न सिर्फ लोहा मनवाया बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान भी बनाई, और दोनों संस्कृतियों के मेल के लिए बहुत सारा काम किया। यानी दक्षिण और उत्तर का जो मिलन आपके माध्यम से हुआ वो भारतीय संस्कृति के लिए बहुत सुखद रहा। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं साजन फिल्म से, जो 1991 में आई थी। इसके निर्माता थे सुधाकर बोकाडे और ये दिव्या फिल्म्स इंटरनेशनल के बैनर तले बनी थी। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

इस फिल्म के लिए गीत लिखा था समीर ने और संगीत निर्देशन था नदीम श्रवण का। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं रोजा फिल्म से। ये भी एक सुपरहिट फिल्म थी।

1992 में रिलीज हुई रोजा एक देशभक्तिपूर्ण रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जिसे मणिरत्नम ने लिखा और निर्देशित किया था। और मजे की बात यह है कि ये A.R. रहमान की करियर की पहली फिल्म थी, यानी दो दक्षिण भारतीय थे, है ना मजे की बात।

पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित ये महान कलाकार 25 सितंबर 2020 को 74 साल की उम्र में चेन्नई में इस संसार से रुखसती कर लिया, यानी आपका भौतिक जीवन यहीं समाप्त हो गया।

इस कार्यक्रम में आज आपने जिन फिल्मों के नगमे सुने उनके नाम हैं एक दूजे के लिए, मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, साजन और रोजा। अब इस कार्यक्रम को ख़त्म करने की अपने रेडियो दोस्त डॉक्टर कुंवर तौकीर अहमद खान को दीजिए इजाज़त। प्रस्तुति प्रदीप मिश्र की थी और ये कार्यक्रम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर प्रस्तुत है फिल्म संगीत पहला गीत दिल फिल्म से अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की मिलीजुली आवाज़ों में रचना समीर की है और संगीत निर्देशन है आनंद मिलिंद का।

इस समय देश का सबसे लोकप्रिय आकाशवाणी केंद्र आपकी सेवा में है। हमारे प्रसारण आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत सुनवाने से पहले एक सूचना सुनिए। गुरुवार दिनांक 20 अगस्त 2026 को प्रसारित होने वाले सजीव हेलो पैनकार्ड कार्यक्रम में महिलाओं के कानूनी अधिकार विषय पर आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगी एडवोकेट नाजिया नफीस। आप अपने प्रश्न दोपहर 1:15 से 2 बजे तक इन फोन नंबरों पर पूछ सकते हैं 2970462 और 2423649। प्रयागराज का एसटीडी कोड 0532। नंबर एक बार फिर सुन लें 2970462 और 2423649। प्रयागराज का एसटीडी कोड 0532। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर है 800492650 यानी 8004926250। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इसे हमने लिया है इश्क पर जोर नहीं इस फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की मिलीजुली आवाज़ों में। गीत के बोल आनंद बख्शी ने लिखे हैं और संगीत निर्देशन है SD बर्मन का।

आप सुन रहे थे अनूप जलोटा को। फिल्म का नाम था इसी का नाम जिंदगी। रचना रमेश पंत की थी और संगीत निर्देशन था बप्पी लहरी का। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अनारकली से लता मंगेशकर की आवाज़ में। शब्द के बोल राजेंद्र कृष्णन लिखे हैं और संगीत निर्देशन है रामचंद्र का।

देश के सबसे लोकप्रिय आकाशवाणी केंद्र प्रयागराज से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है खुशबू फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में। रचना गुलजार की है और संगीत निर्देशन है आर डी बर्मन का।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। एक सूचना सुनिए श्रोताओं, 20 अगस्त 2026 को प्रसारित होने वाले सजीव हेलो पैनकार्ड कार्यक्रम में महिलाओं के कानूनी अधिकार विषय पर आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगी एडवोकेट नाजिया नफीस। आप अपने प्रश्न 1:15 से 2 बजे तक पूछ सकते हैं। फ़ोन नंबर है 2970462 और दूसरा नंबर है 2423649 और प्रयागराज का एसटीडी कोड 0532। आप अपने सवाल व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं 8004926250। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम में 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। हमारी स्टूडियो घड़ी में मध्याह्न के 12 बजने वाले हैं। अब आप समाचार सुनें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। श्री वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में कहा कि देश 6-8% की विकास दर से आगे बढ़ रहा है।
2: इन्वेस्टमेंट स्टोरी, हमारी विकास यात्रा में निवेश की अहम भूमिका रही है। आज हम हर साल करीब $130 अरब का सार्वजनिक निवेश कर रहे हैं। इससे अर्थव्यवस्था में $1 के निवेश पर करीब $3.6 की आर्थिक गतिविधि होती है। इसके साथ ही इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और ये सुनिश्चित करने में भी सहायता मिली है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचे।
3: बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ रीच एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि देश के 99.6% रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण हो चुका है।
2: आज देश का 99.6% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकृत हो चुका है। पिछले एक दशक में 38,000 किलोमीटर नई रेल लाइनें जोड़ी गई हैं और 162 सेमी हाई स्पीड ट्रेनें शुरू की गई हैं।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में करीब 65,000 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया गया है, जबकि हवाई अड्डों की संख्या भी दोगुनी हो गई है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4th भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में भाग लेने के लिए आज प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हैं। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी। ये दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय मंच है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में भारतीय वन सेवा के 2025-27 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से संवाद करेंगे और उन्हें संबोधित करेंगे। दिल्ली सरकार इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। सरकार ने बताया है कि पेंशन की राशि अगले महीने की 1 तारीख से सीधे महिलाओं के खातों में जमा होना शुरू हो जाएगी। जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने खराब मौसम के मद्देनजर एहतियात के तौर पर यात्रा के लिए नए पंजीकरण पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। जिन श्रद्धालुओं ने पहले ही पंजीकरण करा लिया है, उन्हें मौसम की स्थिति और प्रशासन के निर्देशों के अनुसार यात्रा की अनुमति दी जा रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज तड़के न्यू मार्केट इलाके में एक होटल में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की सहायता

सहायता कर रहा है। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के मिक्स डबल स्पर्धा में भारत के ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने मकाओ के लियोन योक चोंग और एनजी वेंग ची को हराया। क्वार्टर फाइनल में ध्रुव और तनिषा का मुकाबला चीन की जोड़ी चेंग फांग हुई और गुआ शिनवा से होगा। भारत के साथ गोल में क्रिकेट टेस्ट मैच के पांचवें दिन श्रीलंका ने दूसरी पारी में 6 विकेट पर 175 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत अपनी दूसरी पारी में 193 रन पर ऑल आउट हो गया और श्रीलंका को 372 रन का लक्ष्य दिया गया। घरेलू शेयर बाजार में आज गिरावट का रुख है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 342 अंक गिरकर 76,893 पर और निफ्टी 104 अंक गिरकर 24,051 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: World Cup at the Wagoner Hockey Stadium last evening. In men's cricket, hosts Sri Lanka were 175-6 at lunch in their second innings against India on the fifth day of the first test in Goa. Earlier, India were bowled out for 193 in their second innings, setting a target of 372 runs for Sri Lanka. India's bowlers will look to strike early and wrap up the Sri Lankan innings. Manav Suthar has already claimed two wickets, while Mohammad Siraj and Prasidh Krishna have taken one wicket each. In the BWF Badminton World Championships, India's Dhruv Kapila and Tanisha Krastov have advanced to the pre-quarterfinals of the mixed doubles event at the Indira Gandhi Indoor Stadium in New Delhi. In football, East Bengal FC will take on Sporting Club Delhi in the first semi-final of the 135th Durand Cup at the Salt Lake Stadium in Kolkata today at 7 p.m. IST. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। खोए हुए व्यक्ति के बारे में सूचना सुनिए। थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ से प्राप्त सूचना के अनुसार अब्दुल कादिर पुत्र अब्दुल लतीफ निवासी मिर्ज़ापुर चौहारी थाना रानीगंज प्रतापगढ़ कहीं गुम हैं। इनके बारे में सूचना इस प्रकार है। आँख, नाक, कान, कद औसत, इकहरा बदन, रंग गंदम। इन्होंने लाल रंग की फुल बाजू टी शर्ट और पैर में चप्पल पहनी हुई है। इनके बारे में विशिष्ट बात यह है कि ये मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को दी जा सकती है। एक और सूचना सुनिए। थाना दिलीप पूर जनपद प्रतापगढ़ से प्राप्त सूचना के अनुसार खुशी पुत्री राम जियामन निवासी ग्राम बशीरपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ कहीं लापता हैं। इनके बारे में जानकारी इस प्रकार है। उम्र 19 साल, ऊंचाई 152.4 सेंटीमीटर, रंग गेहुआ, चेहरा गोल। इन्होंने टी शर्ट और टॉप पहनी हुई है। इनके बारे में कोई भी सूचना थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ को दी जा सकती है। खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

मीडियम वेव 212.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। श्रोताओं, अपने केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी दे दें। चर्चा का विषय है, ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होगा 9:30 पर। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में 10:30 पर आप सुनेंगे विदुषी प्रियंका मलिक से राग मारू विहाग में ख्याल गायन। किस्सा गोई, ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 7:31 पर और ये कार्यक्रम होगा गुरुदत्त पर आधारित। ये आकाशवाणी प्रयागराज की भेंट है। सबरस हम प्रसारित करेंगे 8:30 पर। पंचायत घर कार्यक्रम होगा 6:30 पर। इसमें आज आप सुनेंगे जयचंद पाल और साथियों के गाए लोकगीत। इसके अलावा मिथिलेश त्रिपाठी के नीति वचन भी हम आपको सुनवाएंगे। युवाणी कार्यक्रम 5:15 पर। विश्व फोटोग्राफी दिवस और विश्व मानवतावादी दिवस पर चर्चा के अलावा आज के प्रेरणापुंज राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, एक वार्ता हम आपको सुनवाएंगे, एक शौक, एक जुनून, एक करियर आखिर क्यों, और वार्ताकार होंगे विवेक सिंह।

उमंग 2:30 पर, महिलाओं का कार्यक्रम गैलक्ष्मी सुनिया का 1:15 पर, यादों को सहेजने का हुनर विश्व फोटोग्राफी दिवस। इस पर चर्चा के अलावा मेरा हुनर मेरा व्यवसाय क्रम में आज आप सुनेंगे हैंडमेड राखी के बारे में। श्रोताओं के फोन कॉल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम हेलो फरमाइश 12:30 पर, प्रस्तुति मधु कुमार की होगी। अब से थोड़ी देर बाद शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में प्रियंका मलिक का राग मधुबंती में ख्याल गायन हम आपको सुनवाएंगे।

फिल्म संगीत सुनिएगा शाम 5 बजे और रात 10 बजे। इसके अलावा चित्रपट संगीत में भी हम आपको फिल्म संगीत सुनाएंगे रात 8 बजे। अभी आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आइए सुनते हैं विदुषी प्रियंका मलिक का राग मधुवंती में ख्याल गायन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं अरुणेश कुमार पांडे और हारमोनियम पर शमशाद अहमद।

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अभी आप विदुषी प्रियंका मलिक से राग मधुवंती में ख्याल गायन सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत की अरुणेश कुमार पांडे ने और हारमोनियम पर थे शमशाद अहमद। रचना तीन ताल में निबद्ध थी, तुत रचना तीन ताल में निबद्ध थी। बोल थे आए लाल ये नैना। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं की फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम हेलो फरमाइश। प्रस्तुति मधु कुमार की है।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बताइए।
1: मैम मेरा नाम काजल है मैम। नमस्ते मैम।
0: नमस्कार काजल जी, कहाँ से बात कर रही हैं?
1: प्रयागराज से, गांव अब्दालपुर खास, थाना तहसील चौराव।
0: जी बताइए कौन सा गीत सुनेंगी
1: मैम? मुझे सुनना है, मुझसे दोस्ती करोगे?
0: हाँ जी बिल्कुल करेंगे आपसे दोस्ती। इसका कौन सा किसका कौन सा गाना है
1: जी मैम?
0: इसका कौन सा गाना है
1: मैम? इसका गाना है आज लड़के आए तेलुगु की।
0: अच्छा अच्छा जी, तो भाई काजल जी ने ये गीत चुना है, फिल्म का नाम है मुझसे दोस्ती करोगे, तो सुनवाएं। काजल जी आपको किसी के नाम लेने हैं?
1: जी भाइयों का नाम लेना चाहते हैं।
0: हाँ बताइए
1: मैम। बड़े भाई का नाम है शेखर, छोटे वाले का नाम है सूरज।
0: तो सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए।
1: मौसम वर्मा, नाम विंध्याचल।
0: अच्छा जी, मौसम वर्मा जी ने विंध्याचल से कॉल की है, तो विंध्याचल से बताइए मौसम जी, कौन सा गीत सुनेंगी?
1: तुम मेरे हो, इसका टाइटल सॉन्ग है।
0: अच्छा जी, जरूर सुनवाई। आमिर खान और जूही चावला ने इस फिल्म में काम किया था
1: जी मैम।
0: अच्छा, फिल्म देखी है आपने?
1: हाँ मैम, बहुत अच्छी है।
0: चलिए तो आपकी इस फरमाइश को पूरा करें मौसम जी, सुनवाएं गीत।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्कार।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए।
1: गांव दौदापुर पोस्ट उमरी प्रयागराज निवासी मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति गोवर्धन रोड मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। दीदी आपको करता हूँ सादर नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नमस्कार। बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है कर्ण अर्जुन
0: जी,
1: और इसमें बहुत ही सुंदर और प्यारा सा गीत है। जी,
0: अच्छा,
1: बिल्कुल
0: तो यही गीत सुनना है आपने। जरूर सुनवाएंगे। आपको किसी के नाम तो नहीं लेने हैं?
1: जी, मैं याद करना चाहता हूँ राजेंद्र जी को और साथ में

0: वो गुलाब चंद्र प्रजापति जी हैं, भैया सिंह भैया मेजा से राकेश कुमार जी हैं, लोकेन वर्मा है, राजू यादव हैं, राजू लवानिया, इन सभी दोस्तों के साथ में आकाशवाणी प्रयागराज सुन रहे सभी श्रोताओं को सादर समर्पित करता हूँ ये प्यारा सा खूबसूरत गीत।
1: तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का करण अर्जुन फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्कार जी।
1: रेखा यादव कुकुरहाड़िया प्रयागराज से बोल रही हूँ।
0: जी रेखा जी को कौन सा गीत सुनना है?
1: मैम अनाड़ी फिल्म का छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी
0: आई कोई परी।
1: आई है एक परी।
0: सही बात है भाई, प्यारी प्यारी बिटिया लोग जब घर में आती उनका आगमन होता है।
1: घर परी आई है।
0: अच्छा।

0: सी प्यारी सी नन्ही सी
1: आई कोई परी।
0: आई है एक परी।
1: सही बात है भाई, प्यारी प्यारी बिटिया लोग जब घर में आती है उनका आगमन
0: मैम
1: होता
0: हमारे
1: है।
0: घर एक परी आई है।
1: अच्छा, भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपके यहाँ भी एक परी का आगमन हुआ है, तो आपको बहुत बहुत बधाई, तभी आपने ये गाना चुना है।
0: हाँ मैम, और हमारी बेटी का भी बर्थडे भी है।
1: अच्छा, चलिए तब तो आपको डबल बधाई। ठीक है रेखा
0: थैंक
1: जी, तो आपने पसंद किया है अनाड़ी फिल्म का ये गाना, लीजिए सुनिए।

0: जी सुरेन जी, बताइए कौन सा गीत सुनेंगे?
1: चांदनी फिल्म का
0: गाने के बोल बताइए।
1: लगी आज सावन की ये फुलझड़ी है।
0: फुलझड़ी नहीं, फिर वो झड़ी है।
1: वो झड़ी है।
0: चलिए चलिए, हम आपको सुनवाते हैं सुरेश पाटेकर की आवाज में चांदनी फिल्म का ये गाना, और फरमाइश की है सुरेन जी ने मऊ आईमा से, तो लीजिए सुनिए।

0: आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से इस समय श्रोता सुन रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश, और मैं हूं मधु। आपके गीतों को लेकर अपना नाम बताइए।
1: सुरेंद्र यादव, वहाँ का जलालपुर, पोस्ट मऊ।

अभी श्रोता सुन रहे थे अपनी फ़ोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम हेलो फरमाइश, प्रस्तुति मधु कुमार की थी। प्रसारण देश के सबसे लोकप्रिय आकाशवाणी केंद्र प्रयागराज से किया जा रहा था। मीडियम 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1 बजने वाले हैं। अब आप समाचार सुनेंगे, उसके बाद इलाकाई खबरें नशर की जाएंगी हमारे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। आज नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में कहा कि देश 6-8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत के पास अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। पिछले 10 वर्षों में करीब 65,000 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया गया है, जबकि हवाई अड्डों की संख्या भी दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि देश में रेल नेटवर्क में व्यापक सुधार हुआ है।
2: आज देश का 99.6% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकृत हो चुका है। पिछले एक दशक में 38,000 किलोमीटर नई रेल लाइनें जोड़ी गई हैं और 162 सेमी हाई स्पीड ट्रेनें शुरू की गई हैं।
1: इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है।
3: उत्तर प्रदेश आज भारत की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होते हुए भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। बीते 9 वर्षों में हमने सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के बजट को, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। 96 लाख से अधिक MSME यूनिट्स, 35,000 से अधिक बड़े उद्योग और 22,000 से अधिक स्टार्टअप आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4th भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में भाग लेने के लिए आज प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर पहुंच गईं। प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हैं। इस दौरान विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन से मुलाकात की। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी कर दी है। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग और आउटसोर्स एजेंसी डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहारनपुर तथा दिल्ली में 10 परिसरों पर छापेमारी की। दिल्ली सरकार इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। सरकार ने बताया है कि पेंशन की राशि अगले महीने की 1 तारीख से सीधे महिलाओं के खातों में जमा होना शुरू हो जाएगी। जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने खराब मौसम के मद्देनजर एहतियाती तौर पर यात्रा के लिए नए पंजीकरण पर अस्थायी रोक लगा दी है। जिन श्रद्धालुओं ने पहले ही पंजीकरण करा लिया है, उन्हें मौसम की स्थिति और प्रशासन के निर्देशों के अनुसार यात्रा की अनुमति दी जा रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज तड़के न्यू मार्केट इलाके में एक होटल में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे को देखते हुए ईरान के साथ सभी प्रकार के व्यापारिक और वाणिज्यिक लेन देन स्थगित कर दिया है। अमीरात के विदेश मंत्रालय की संचार निदेशक अफरा अल हामेली ने बताया कि इस फैसले का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता तथा वित्तीय व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय कानून और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाए रखना है।

0: लाइफटाइम अचीवमेंट के अर्जुन अवार्ड से नवाजा जाएगा। रियासती हुकूमत ने जुलाई से स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में काम करने वाले आउटसोर्स अहलकारों के एजाजिया में 5% इजाफा किया है। रियासती ट्रांसपोर्ट के वजीर दयाशंकर सिंह ने कहा कि ये इजाफा कंप्यूटर ऑपरेटरों, अकाउंटेंट कम टेली ऑपरेटर्स और प्रोग्रामर्स के एजाजिया में किया गया है। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में काम करने वाले आउटसोर्स अहलकारों के एजाजिया में हर साल 10% इजाफे का इंतज़ाम है। इसके तहत जनवरी में 5% और जुलाई में 5% इजाफा किया गया है। रियासत के कई ज़िलों में गुज़िश्ता 3 दिनों से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज़ तक हल्की से दरमियानी बारिश की पेशगोई की है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का बुलेटिन ख़त्म हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:15 में और ये समय है महिलाओं के कार्यक्रम गृह लक्ष्मी का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम।

0: रिमझिम फुहारों से धुलकर महकती धरती, पेड़ों की डालियों पर झूलती बारिश की बूंदे, खिले खिले हरियाली भरे नज़ारे और बादलों के बीच से झांकती ये कभी तेज कभी हल्की धूप मन को मनभावन कर देती है।
1: और इसीलिए ही तो सावन को प्रेम, उमंग और सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। तो आज मन की उमंग को जगाने और बहुत ही समसामयिक विषय को लेकर गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में हम पहुँच चुके हैं। तो सखियों, दीजिए अपने कामों को थोड़ा सा विराम और कुर्सी की पेटी को कर लीजिए लॉक। क्यों भाई? क्योंकि अब समय हो चला है हमारी प्यारी प्यारी सखियों से ढेर सारी मीठी बातें करने का। जी हाँ, आप एकदम सही समझ रही हैं, हम आ चुके हैं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम में। और एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं, मैं गुंजन
0: और मैं रचना। नमस्कार भाई। मानो या ना मानो, सावन का जो महीना होता है ना गुंजन, अपने आप में अनूठा होता है। हर साल का ये सावन हम महिलाओं के लिए उमंग, हर श्रृंगार लेकर आता है। और ये जो बारिश की बूंदें देख करके तो ये पेड़ पौधे, जीव जंतु, जगत, मानव, सभी लोगों का मन भीग जाता है। और जब हम बैठते हैं झूले पर ना, तो लंबी लंबी ऊंची उड़ान लेना सोच कर ही मन खुश हो जाता है। और साथ में वो जो मीठा वाला जो फ्लेवर होता है ना, उसकी खुशबू, उसको खा लो, जो उसकी मीठी मीठी जो है, जो वो मुंह में घुलता है ना,
1: तो बहुत में घुल रहा है,
0: घुल रहा है, उसकी मिठास बहुत देर तक बनी रहती है। और घेवर ही नहीं, अनरसा, सूत फेनी, इस समय के खास मीठे व्यंजन होते हैं जिनको जरूर जरूर जरूर खाना चाहिए। और खाने के साथ और क्या करना चाहिए गुंजन?
1: और भाई, जब आपने इतना चाशनी से मुंह हमारा लबालब कर ही दिया है, तो क्यों ना इसकी मिठास को हम बढ़ाएं। और कैसे बढ़ाएं? इस प्यारे से गीत के साथ।

0: मैं नाचू आज छम
1: छम छम
0: छम छम, पर
1: छम
0: भाई नाचेंगे छम छम छम ज्यादा पानी में तो भीग जाएंगे,
1: तो
0: और
1: इसी
0: जब
1: का तो
0: भीग
1: मजा
0: जाएंगे
1: है
0: मजा तो है,
1: सजा
0: लेकिन मजा लेने में कभी कभी सजा भी
1: भी हो
0: भुगतनी
1: जाती
0: पड़ती
1: है।
0: है। और देखो कुछ आज इसी तरह का विषय है हमारा कि भाई हम मनुष्य नहीं, प्रकृति और पशु सबका मतलब एक स्वास्थ्य जो है एक दूसरे के साथ गहराई से जुड़ा रहता है।
1: जी
0: तो आज एक बहुत खास विषय है बहनों के साथ हम जो है उन
1: साझा कर
0: सम
1: रहे हैं।
0: साझा करने जा रहे हैं। आज के समय में स्वास्थ्य केवल हम मनुष्य तक ही सीमित नहीं रह गया है गुंजन, बल्कि ये भी हमें समझना चाहिए कि हम मानव, पशु, पर्यावरण का स्वास्थ्य एक दूसरे के साथ गहराई से जुड़ा होता है। इसलिए आज इस विषय पर विचार करने के लिए वन हेल्थ अवधारणा विश्व भर में ये महत्वपूर्ण होती जा रही है और ये चर्चा का विषय बनी हुई है। और देखो इसका मूल सिद्धांत ये है कि यदि मनुष्य, पशु और पर्यावरण पर्यावरण में से किसी का भी एक स्वास्थ्य प्रभावित होता है ना, तो उसका असर अन्य दोनों पर भी पड़ता है, जो कि आज हमें देखने को मिल रहा है ना। और इसलिए इन तीनों की रक्षा करना हमारा बहुआयामी प्रयास होना चाहिए, यानी बहुत तरह से हमें हर तरह से इसकी कोशिश करनी चाहिए कि ये जो है सब ठीक रहे, और आज इसकी ज़रूर आवश्यकता है। तो आइए जानते हैं कि वन हेल्थ क्या है।
1: बिल्कुल, जो आपने स्वास्थ्यगत बातें बताई हैं, वाकई इसका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। वन हेल्थ का अर्थ है कि मनुष्य, पशु

0: पशु और पर्यावरण का स्वास्थ्य एक दूसरे से गहराई से जुड़ा हो। यदि इनमें से किसी एक का स्वास्थ्य प्रभावित होगा तो भाई दूसरे पर भी असर पड़ेगा। और जैसा कि आज कोविड-19, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, रेबीज और निपाह वायरस जैसे कई रोगों ने हमें ये समझाया है कि मानव स्वास्थ्य को पशु और पर्यावरण के स्वास्थ्य से अलग करके नहीं देखा जा सकता, है ना?
1: हाँ, और साथ ही प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, ये जो हम वनों की कटाई कर रहे हैं और जैव विविधता में कमी जैसी समस्याएं भी नए नए रोग के फैलने का कारण बन रही हैं, गुंजन, है ना? और आगे बन भी सकती हैं। इसलिए इन चुनौतियों से निपटने के लिए हमको सभी क्षेत्रों में, जैसे हमारे कई तरह के क्षेत्र हैं, मिलकर कार्य करना बहुत आवश्यकता है।
0: वाकई अगर हम समूह में रहकर कोई कार्य शुरुआत करते हैं तो वो सफलता की सीढ़ी पहुंचता ही पहुंचता है। और वन हेल्थ का उद्देश्य केवल रोगों की रोकथाम करना ही नहीं है, बल्कि महामारी की समय पर पहचान, सुरक्षित खाद्य व्यवस्था, पशुओं का स्वास्थ्य, एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध को कम करना और पर्यावरण संरक्षण भी इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है।
1: बिल्कुल, आज देखो हम पर्यावरण संरक्षण नहीं कर रहे हैं तो कभी तेज, कहीं कहीं ज्यादा बारिश हो रही है, भूस्खलन हो रहे हैं, कितनी मतलब पहाड़ों पे देखो कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि हर इंसान प्लेन्स में गर्मी से बचने के लिए वहां
0: जाता है,
1: जाता है,
0: बिल्कुल।
1: और जाता है, और ज्यादा से ज्यादा वहां के लोग भी अपना रोजगार बढ़ाने के लिए पहाड़ों को काटते
0: काट
1: जा
0: के,
1: रहे हैं,
0: हाँ।
1: पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं और वो नया नया व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि हमारी प्रकृति के साथ
0: खिलवाड़ हो
1: छेड़छाड़,
0: रहा है,
1: खिलवाड़
0: वाकई
1: हो रहा
0: में।
1: है, तो क्या हो रहा है कि जो है हमारे पर्यावरण इससे जो है बहुत ही
0: प्रभावित हो रहा है।
1: प्रभावित हो रहा है, तो इसलिए हमको इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है पर्यावरण संरक्षण के लिए। और हमारे भारत जैसे विशाल देश में, जैव विविधता से भरपूर देश में, वन हेल्थ का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ देखो बहुत ज्यादा आपको वन का क्षेत्र
0: जी
1: देखने को मिलता है,
0: जी
1: जिसकी हम कटाई अंधाधुंध करते चले जा रहे हैं। यहाँ मनुष्य, पशु और वन्य जीव अनेक स्थानों पर एक दूसरे के निकट से रहते हैं, है ना? इसलिए पशुओं का टीकाकरण, रोगों की निगरानी, स्वच्छता, जन जागरूकता बहुत जरूरी है। तो ये कौन करेगा गुंजन? ये सब
0: जी
1: तो हम ही
0: जिम्मेदारी
1: लोग,
0: हमारी
1: हमारी
0: है।
1: है। हम अपने बच्चों को जागरूक करेंगे, अपने बच्चों को आजकल देखो स्कूलों में भी ऐसे ऐसे विषय पढ़ाए जा रहे हैं,
0: जो इस ओर जागरूक करते
1: उनमें
0: हैं,
1: जागरूक करते हैं, उनको बहुत सारे प्रोजेक्ट बनवाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं कि जिससे हमारा जो है प्राकृतिक जो है संरक्षण हो, पर्यावरण संरक्षण हो और वो कहीं जो है खराब ना हो,
0: ना हो।
1: है ना? और सही बात यह है कि वन हेल्थ हमें ये संदेश देता है कि स्वस्थ मनुष्य के लिए स्वस्थ पशु और स्वस्थ स्वच्छ
0: पर्यावरण
1: पर्यावरण भी बहुत आवश्यक है। इसलिए हम कह सकते हैं
0: कि वन हेल्थ केवल एक स्वास्थ्य नीति नहीं बल्कि एक समग्र जीवन दृष्टि है। इसके लिए सरकार, विशेषज्ञों और आम नागरिकों को मिल करके प्रयास करना होगा। तो आइए हम सभी ये संकल्प लें कि मानव स्वास्थ्य के साथ साथ पशुओं और पर्यावरण की सुरक्षा में भी अपना योगदान
1: देंगे,
0: देंगे।
1: क्योंकि अगर पशु भाई गीले में बैठते हैं तो उनको भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और कचरा जो उनके पास फैला रहता है इस मौसम में खासकर, उनको बीमारियां पकड़ती
0: जी
1: हैं उनके, अगर उनको पकड़ेंगी तो आस वगैरह वातावरण
0: फैलेगा
1: गंदा होगा, कूड़ा कचरा फैलेगा तो हमको भी होगा। इसलिए स्वस्थ मानव, स्वस्थ पशु और स्वच्छ पर्यावरण, यही है वन हेल्थ का सच्चा संदेश। और अब हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं गुंजन,
0: गीत।
1: और अब एक सुनते हैं प्यारा सा गीत।

0: आप गुंजन, चलो क्यों ना हम लोग जो है सेल्फी ले लें,
1: अरे वाह, नेकी और पूछ
0: हाँ,
1: पूछ। हाँ
0: क्योंकि
1: हाँ
0: आज मेरा मन कर रहा है विश्व फोटोग्राफी दिवस पे एक तस्वीर तुम्हारे संग संजो के रखने का, क्योंकि देखो
1: बिल्कुल।
0: तुम्हारे संग मेरी ड्यूटी बहुत बार कम जो है लगती है, तो वो फोटो रहेगी ना, तो कभी कभी जैसे तुमसे नहीं मिल पाई या कुछ है तो देख लूंगी, तो इसलिए चलो एक सेल्फी लेते हैं और बहनों के साथ आज हम अपनी यादों को हमेशा के लिए संजो कर रखने की कला जो है फोटोग्राफी यानी विश्व फोटो

0: ग्राफिक दिवस पर एक तस्वीर 1,000 शब्दों के बराबर होती है ना, कहा जाता है गुंजन। तो
1: बिल्कुल
0: भाई समय कभी नहीं रुकता, लेकिन ये तस्वीर किसी खास पल को हमेशा के लिए हमारे पास सुरक्षित रख जाती है, जैसा कि हम कहते हैं।
1: और किसी की मुस्कान हो, प्रकृति का सुंदर दृश्य हो, कोई ऐतिहासिक घटना हो या परिवार के साथ बिताया कोई खास पल, फोटोग्राफी इन सभी यादों को अपने भीतर सहेज लेता है। फोटोग्राफी का इतिहास भी बहुत रोचक है भाई। वर्ष 1839 में फ्रांस के लुई डोगरे ने डोगरे और टाइप नामक फोटोग्राफिक प्रक्रिया प्रस्तुत की, जिसने आधुनिक फोटोग्राफी की नींव रखी। और इसी ऐतिहासिक घटना की याद में हर वर्ष 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाते हैं। यह दिन फोटोग्राफी की कला, इतिहास और समाज में उसके योगदान को सम्मान देने का अवसर है।
0: और देखो, ये फोटोग्राफी केवल एक तकनीक नहीं बल्कि भावनाओं और रचनात्मकता को व्यक्त करने का सशक्त माध्यम है। देखो, आजकल खास करके बहुत लोगों को फोटो खींचने का बहुत शौक होता है और एक तस्वीर अपने समय की संस्कृति, परिस्थितियों, भावनाओं को भी अपने अंदर संजोए रखती है। जैसे कि हम लोग कभी कभी बैठते हैं ना, अपने पापा मम्मी का एल्बम निकाल के देखने लगते हैं या अपने बचपन की तस्वीर देखने लगते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। या हम कहीं घूमने जाते हैं ऐसी जगह जो बहुत ही प्यारी और खूबसूरत थी, और हमारे देश में तो एक से एक धरोहर हैं, तो उनको संजोने का ये साधन बहुत ही अच्छा है गुंजन ना। इसलिए
1: इतिहास की अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं आज तस्वीरों के माध्यम से हमारे सामने जीवंत हैं। स्वतंत्रता आंदोलन, प्राकृतिक आपदाएं, खेल जगत की उपलब्धियां और अनेक सामाजिक घटनाएं तस्वीरों के रूप में सुरक्षित हैं।
0: हाँ, तो सुरक्षित कैसे रहती हैं? रोज जैसे पेपर में तस्वीर निकलती है या टीवी में हम कहीं देखते हैं, कहीं भी हम देखते हैं, तो उसको कैप्चर करने की कोशिश, कोई चीज हमें अच्छी लगती है तो हम उसको सहेजने की कोशिश करते हैं कि ये, या कभी कभी देखो ये एक हम जो है बहुत लोग के अंदर एक शौक होता है कि इसका एल्बम बनाते हैं, जो है कि जगह जगह
1: कोलाज
0: बनाते हैं, एल्बम इस तरह से बनाते हैं। एक मैंने जो है चैप्टर 6 में पढ़ाया था बच्चों को, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और एक एल्बम ला करके देते हैं, वो तो खैर डाक टिकट का एल्बम होता है, बट आप ऐसे ही तस्वीरों का भी एल्बम बना सकते हैं। तो उसका एल्बम बच्चों, मतलब बच्चों बच्चों में आपस जिज्ञासा होती है क्लास में, और वो देख के चिढ़ते हैं कि मेरे पास तो ऐसा ऐसी चीज नहीं है, तो मुझे भी एक तरह से उनके अंदर प्रेरणा भी आती है। और ये बच्चों, लेकिन ये कि मैं ये कहना चाहूंगी कि भाई जलन नहीं होनी चाहिए। अगर उसके पास अच्छा, अगर आपने कोई हुनर देखा है तो उससे और अच्छा हुनर आप अपने अंदर करने का
1: पैदा
0: कर सकते हैं, उन तस्वीरों को सहेज करके आप, और इससे बहुत आपको रोजगार भी मिलेगा।
1: जी बिल्कुल,
0: एक से एक जगह घूमने की है, एक से जगह जाने की है, आप रोज उनको एक्सप्लोर करके आप लोगों को बता सकते हैं, कर सकते हैं।
1: और फिर आज डिजिटल युग में फोटोग्राफी तो वाकई में आसान भी हो गई है ना, स्मार्टफोन आ गए भाई, और जो आधुनिक कैमरे हैं उन्होंने लगभग हर व्यक्ति को अपनी यादों और अनुभवों को तस्वीरों में कैद करने का अवसर दिया है।
0: बिल्कुल सही कह रही हूँ गुंजन।
1: फोटोग्राफी का महत्व केवल यादों तक ही भाई सीमित नहीं है, पत्रकारिता, शिक्षा, विज्ञान, चिकित्सा, पर्यटन, वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता जैसे क्षेत्रों में भी इसका काफी योगदान है।
0: हाँ, जो कि हम लोग डिस्कवरी चैनल वगैरह में देखते हैं ना, कितना अच्छा लगता है, एक से एक खूबसूरत
1: पुरानी चीजें, नॉलेजफुल बातें भी इसमें पता चलती
0: हैं। जैसे बहुत से वन्य जीव हैं जो हमें नहीं देखने को मिलते हैं, बहुत से समुद्र ऐसे हैं, तो हम घर बैठे इन पिक्चर्स के माध्यम से
1: उसको जीवंत चीजें हम एकदम
0: देख पाते हैं। और गुंजन, एक अच्छी तस्वीर आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास और जीवंत दस्तावेज भी बन जाती है ना, और अगर हम उसका सही से रख रखाव करते हैं तो ये हमारी संस्कृति की पहचान और विरासत को सुरक्षित रखने में भी हमारी मदद करती है। और मुझे तो बहुत शौक है, बल्कि मेरे घर वाले ना जो है मुझे चिढ़ाने भी लगते हैं। जैसे मैंने अपनी मम्मी के समय की बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, पापा की कुछ चीज़ें रखी हुई हैं कि जो है तो सब कहते इसका म्यूजियम खोल लो तुम जो है, तो भाई ठीक है, अच्छी बात है, आप घर में छोटा सा म्यूजियम भी बना सकते हैं, कर सकते हैं। ये तो आपके शौक पे डिपेंड करता है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। इसलिए फोटोग्राफी एक केवल

0: सुंदर तस्वीर खींचने का हुनर ही नहीं है गुंजन, बल्कि जीवन के अनमोल पलों को जीने का ये जीवन है, और मानवीय संवेदनाओं को सहेजने का की कला भी है। और देखो, विश्व फोटोग्राफी दिवस हमें उन सभी फोटोग्राफर के प्रति सम्मान व्यक्त करने का भी अवसर देता है जो अपने कैमरे के माध्यम से दुनिया को एक नई दृष्टि प्रदान करते हैं। हम उनकी दृष्टि से ही देख पाते
1: देख
0: हैं,
1: पाते
0: जो
1: हैं।
0: मैं बता रही हूँ कि तरह तरह की चीज़ें जो है हम देखते हैं। तो वो भाई कैसे देखते हैं, जब वो हमें खींच खींच करके पेपर में देते हैं, या और भी कई माध्यम है, आजकल सोशल मीडिया का माध्यम है, और भी जैसे तुमने बोला इंटरनेट का माध्यम
1: जी,
0: है, हर तरह से हम लोग कहाँ कहाँ की चीज़ें कितनी अच्छी, देश
1: देख
0: विदेश हर
1: पाते हैं।
0: जगह की देख पाते हैं, खासियत देख पाते हैं, हर तरह की चीज़ें देख पाते हैं। तो भाई गुंजन
1: तो
0: जो
1: आइए,
0: है
1: इस अवसर पर हम फोटोग्राफी को केवल एक शौक नहीं, बल्कि यादों, संस्कृति और इतिहास को सुरक्षित रखने की सार्थक कला के रूप में देखें।
0: क्योंकि समय बीत जाता है, लेकिन तस्वीरें इन खूबसूरत पलों को थमसा जीवित रखती हैं और हमें अपने अतीत से जोड़कर रखती हैं। तस्वीर केवल पल कैद नहीं करती, वे बीते हुए समय को याद करने में हमेशा के लिए जीवित रहती हैं। क्यों?
1: बिल्कुल। तो
0: और
1: आइए इसी बात पे सुन लेते हैं एक
0: की
1: गीत।

0: तो गुंजन गीत कैसा लगा?
1: बहुत सुंदर, बहुत
0: बहुत सुंदर
1: मीठा है।
0: ना, मन कहे मैं झूमूं। और भाई झूमने वाला मौका ही है, क्यों? क्योंकि ये जो अगस्त का महीना है, ये देखो ये त्योहारों से भरा होता है, और कुछ ना कुछ छोटे बड़े पर्व। अभी राष्ट्रीय पर्व हमने 15 अगस्त मनाया, उसके बाद नाग पंचमी अभी आई, और अब देखो एक और भाई बहन के प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन आने वाला है। तो भाई अब मेरा हुनर मेरा व्यवसाय में हम बात करेंगे राखी की, तो रचनात्मकता से आत्मनिर्भरता की ओर, यानी हमारे भारत का जो देश है वो त्योहारों का देश है। हमने जैसा कि बताया, प्रत्येक त्योहार अपने साथ प्रेम संस्कृति और अपनत्व का संदेश लेकर आता है, और इन्हीं त्योहारों में रक्षाबंधन का भी विशेष स्थान है, और ये भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का पर्व है। तो भाई क्यों ना हम एक अपनी मेहनत करके राखी केवल एक धागा नहीं बल्कि स्नेह मेहनत और भावनाओं का सुंदर प्रतीक होती है, तो अपना घर में ही कोई छोटा सा रोजगार बना ले और अपने भाई के लिए भी राखी बनाए और लोगों को भी इससे जो है मतलब दे, और जब मेरा रोजगार ये बड़ा बन जाए तो और लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं, है
1: बिल्कुल
0: ना? तो भाई क्योंकि आज बढ़ती पर्यावरण जागरूकता और अनोखे डिजाइन की मांग के कारण लोग मशीन से बनी राखियों को जो है पसंद करते हैं, लेकिन क्या करना चाहिए, कम
1: हस्तनिर्मित।
0: लागत में शुरू करने वाला ये व्यवसाय युवाओं महिलाओं और गृहिणियों के लिए, हम खास करके जो है और विद्यार्थियों के लिए आय का अच्छा स्रोत बनता जा रहा है। तो
1: बिल्कुल भाई,
0: अगर हम
1: जब
0: छोटी
1: देखिए
0: सी बात पे ध्यान देंगे
1: हाँ
0: तो घर में भी एक से एक अपने हुनर से, देखो हमारे पास हुनर तो होता है, हम पहचान नहीं पाते
1: पहचान
0: हैं,
1: नहीं पाते।
0: तो अगर हम अपने हुनर को पहचाने और अपने घर से काम कर
1: और
0: सकते
1: फिर
0: हैं।
1: उसमें हम ही नहीं, हम मतलब और लोगों को भी लेके चल सकते हैं, है ना। और जैसे अभी बोला आपने हस्तनिर्मित, तो जो हाथों से जो राखियों बनती है उनके भी कई प्रकार पाए जाते हैं, जैसे कि रेशम धागे की राखी, है ना, मोती की राखी, जरी और गोटा पट्टी की राखी, तो इस तरह तरीके की हैं। और भी नाम है, जैसे रेजिन राखी है, फोटो राखी है ना, फोटो राखी, उसमें जैसे
0: हाँ,
1: भाई की
0: आजकल भाई बहन
1: तस्वीर,
0: के
1: है
0: तस्वीर
1: ना,
0: के
1: आपने
0: साथ
1: देखा होगा,
0: बनाई
1: भैया
0: जाती है
1: बच्चे
0: हम
1: की,
0: लोग।
1: आपको किसी को देना है गिफ्ट में, तो बच्चे की फोटो लगा दी है उसमें, तो बहन अपने भाई की ऐसे करके बांध रही है, या नाम उसमें अक्षरों, ये नाम वाली चीजें तो मैंने अभी रचना जी मैंने बहुतों में देखा है। आप एनिवर्सरी गिफ्ट में भी दे सकते हैं, बर्थडे गिफ्ट में भी, गले के लिए आप पैंडल या कोई रिंग बना के, तो वो उस तरह की भी राखियां बनती हैं। क्रोशिया की राखी, ऊन या कॉटन के धागे से बुनी हुई इको फ्रेंडली सीड राखी है ना, उसमें आप बीजों का यूज कर सकते हैं, जो और उन बीजों से जब आप राखियां बनाते हैं और फिर इसको कुछ दिन बाद आप मिट्टी में भी बो सकते हैं, है ना, उन बीजों को। टेरेकोटा की राखी है जो मिट्टी से बनी कलात्मक मानी जाती है। क्विलिंग पेपर राखी है जिसमें जो कलर्ड पेपर होते हैं उनसे पट्टियों से तैयार करके एक डिजाइन बना देते हैं। क्ले से है, वुडन राखी है, मिरर वर्क है जिसमें छोटी छोटी शीशों और कढ़ाई से सजी पारंपरिक राखी उसमें डेकोरेट हो जाती है ना। मिनिमलिस्ट राखी है जो बहुत मतलब आजकल के जो यूथ है उनको तो वो काफी पसंद करते हैं। कपल और फैमिली सेट राखी है जिसमें भाई भाभी बच्चों के लिए एक जैसा कोई थीम सेट कर लिया,
0: और
1: उससे
0: बना
1: आपने
0: लिया,
1: बना लिया,
0: बिल्कुल।
1: है ना। तो जो प्रेजेंट टाइम में बहुत सी ऐसी हैं कि ट्रेंडिंग भी हैं राखियां, जो बहुत जिनकी काफी डिमांड रहती है, इको फ्रेंडली है।

सीड राखी है, पर्सनलाइज्ड नाम और फोटो राखी, जो अभी मैंने अभी ऊपर आपको नाम लिखी। इसी तरह अगर हम ये कहें कि भाई ये व्यवसाय शुरू कैसा किया जाए, तो इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए बहुत अधिक हमें पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। शुरुआत में रेशमी धागे, मोती या स्टोन और गोंद है, कैंची है ना, सजावट के लिए सामग्री है, पैकिंग के लिए सामग्री है, तो ये कुछ बुनियादी उपकरण खरीद कर आप घर से ही थोड़ा बहुत उसमें ही आप शुरू कर सकते हैं। भाई क्या होगा कि आप पहले कम मात्रा में थोड़ा तैयार करेंगे, जब आपको प्रॉफिट होने लगेगा, आपकी डिमांड बढ़ने

करें, रंगों का संतुलित और आकर्षक चयन करना चाहिए। राखी मजबूत और आरामदायक भी होनी चाहिए, चुभने वाली नहीं होनी चाहिए। और पर्यावरण के अनुकूल सामग्री का उपयोग करें, सुंदर और सुरक्षित पैकेजिंग करें, समय पर ऑर्डर तैयार करके ग्राहकों तक पहुंचाएं और उचित और प्रतिस्पर्धा मूल्य पर ही रखें। बहुत ज़्यादा पहले जाके मार्केट को देखें कि कहाँ किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, ग्राहकों की क्या पसंद है, उस पर ध्यान दें। त्योहारों से पहले पर्याप्त स्टॉक को तैयार कर लें और अपनी पहचान बनाने के लिए कोई ब्रांड या नाम ज़रूर रखें। और बिक्री और प्रचार के तरीके ये हो सकते हैं कि आप डिजिटल माध्यम से छोटे व्यवसाय को नई पहचान दे सकती हैं, आजकल जो कि हो रहा है। और इसके लिए स्थानीय बाज़ार को जाके देखें, मेले होते हैं, बहुत स्वयं सहायता स्कूल होते हैं, समूह होते हैं, कार्यालय होते हैं, और इसके साथ ही सोशल मीडिया पर उत्पाद करने के लिए बनाकर अच्छी अच्छी तस्वीरें, जैसा कि अभी हमने बताया था आज विश्व फोटोग्राफी दिवस है, तो भाई अच्छी अच्छी तस्वीरें और छोटे छोटे वीडियो बनाकर ग्राहकों तक पहुंचाया जाए, तो इससे ग्राहक संतुष्ट होंगे, सकारात्मक रूप में आएंगे, तो आपसे आकर्षित होकर के आपसे लेंगे ही, है ना। तो ये हो गई राखी बनाने की, और अब हम सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: हाँ गुंजन, गीत तो एक से एक प्यारे सुने। और देखो, आज हमने मौसम की बात की, पर्यावरण की बात की, वन हेल्थ की बात की। तो भाई, इस समय बताया था ना कि भाई सबकी हेल्थ बहुत ज़रूरी है, और ये बारिश का जो मौसम होता है, खास करके जब गंदगी हो जाती है तो मक्खी मच्छरों और भी कई कीट पतंगे उड़ने
1: आने
0: लगते
1: लगते
0: हैं,
1: हैं।
0: आने लगते हैं। तो भाई, ऐसे के मौसम में इनसे बचाव के लिए घरेलू नुस्खे और उपयोगी टिप्स बहुत ज़रूरी है, तो चलो बता देते हैं। भाई देखो, ये बरसात का मौसम हमें जहाँ हरियाली, ठंडक, सुकून देता है, वहीं कई स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना की करना पड़ जाता है। घर के आसपास पानी जमा होने लगते हैं, मच्छरों की संख्या बढ़ने लगती है, गंदगी के कारण मक्खियाँ भी अधिक दिखाई देने लगती हैं। ये केवल परेशानी का कारण नहीं बढ़ती हैं, बल्कि इससे बड़े बड़े रोग, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड, दस्त जैसी बीमारी के फैलने का भी खतरा बढ़ जाता है। इसलिए समय
1: समय
0: रहते हमें इसका बचाव करना चाहिए, उसका उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो कुछ घरेलू नुस्खे आज हम बता रहे हैं। भाई, नीम का उपयोग करें। नीम की पत्तियाँ, अगर घर के आसपास पेड़ है तो ले आइए, उसको जला दीजिए। नीम के तेल का भी आप उपयोग कर सकते हैं, तो इससे मच्छर दूर होते हैं। घर के आसपास नीम का पौधा लगाना लाभदायक होता है। कपूर जलाएं, शाम के समय कमरे में कपूर जलाने से मच्छर कम हो जाते हैं और वातावरण भी शुद्ध होता है। और लेमन ग्रास सभी अपने घर में लगाएं। सिंट्रोनेला का तेल एक आता है कोई, उसको जो है कुछ बूंदें डिफ्यूज़र या पानी में मिलाकर उपयोग करने से मच्छर दूर होते हैं।
1: और भी वही टिप्स हैं कि जैसे आप तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। तुलसी का पौधा घर के आंगन या खिड़की के पास रखने से मच्छरों की संख्या कम करने में मदद मिल सकती है। इसके साथ ही साथ लौंग और नींबू, ये भी आपके घर में आपको आराम से मिल जाएगा। एक नींबू को बीच से काटकर उसमें लौंग लगा दें और कमरे में रखें। इसकी सुगंध से भी मच्छर दूर होते हैं। साथ ही साथ जैसे घर की खिड़कियों और दरवाजों पर जाली लगाएं, भोजन को हमेशा ढक कर रखें, कूड़ेदान के ढक्कन को भी बंद रखें और साफ करते रहें। पूरी बांह के भैया आप कपड़े पहनिए इस समय, विशेषकर सुबह और शाम के समय। बच्चों और बुजुर्गों को मच्छरों से विशेष सुरक्षा दें। आसपास के वातावरण को साफ और शुद्ध रखें। जल तो बिल्कुल भी ना भरने दें। यदि बुखार, शरीर दर्द या लगातार कमजोरी महसूस हो रही है तो खुद डॉक्टर ना बने बल्कि डॉक्टर से परामर्श लें, है ना?
0: तो गुंजन, आज हम लोग ने ये सारी बातें बताई, और अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए महिलाओं से कहते हैं, सबसे कहते हैं, नमस्कार।
1: नमस्कार।

अभी महिलाएं अपना कार्यक्रम गृह लक्ष्मी सुन रही थी। प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। दोपहर के 2 बजे चाहते हैं। अब आप समाचार सुनेंगे, पहले अंग्रेजी में फिर हिंदी में। बने रहें हमारे साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत सतत वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 130 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधा कृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता। मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। और FIH हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। आज नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में कहा कि देश 6-8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है।
1: इन्वेस्टमेंट स्टोरी, हमारी विकास यात्रा में निवेश की अहम भूमिका रही है। आज हम हर साल करीब 130 अरब डॉलर का सार्वजनिक निवेश कर रहे हैं। इससे अर्थव्यवस्था में एक डॉलर के निवेश पर करीब 3.6 डॉलर की आर्थिक गतिविधि होती है। इसके साथ ही इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और ये सुनिश्चित करने में भी सहायता मिली है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि भारत के पास अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। पिछले 10 वर्षों में करीब 65,000 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया गया है, जबकि हवाई अड्डों की संख्या भी दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि देश में रेल नेटवर्क में व्यापक सुधार हुआ है।
1: आज देश का 99.6% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकृत हो चुका है। पिछले एक दशक में 38,000 किलोमीटर नई रेल लाइनें जोड़ी गई हैं और 162 सेमी हाई स्पीड ट्रेनें शुरू की गई हैं।
0: इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है।
2: उत्तर प्रदेश आज भारत की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होते हुए भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। बीते 9 वर्षों में हमने सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के बजट को, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। 96 लाख से अधिक MSME यूनिट, 35,000 से अधिक बड़े उद्योग और 22,000 से अधिक स्टार्टअप आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत और जापान सहयोग महत्वपूर्ण दिशा में आगे बढ़े हैं।
3: जापान के साथ भारत की पार्टनरशिप केवल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप नहीं है, ये डेवलपमेंट की पार्टनरशिप है, ये डिप्लोमेसी की पार्टनरशिप है और ये डिग्निटी की पार्टनरशिप है। उत्तर प्रदेश आपको केवल इन्वेस्टर नहीं मानेगा, आपको डेवलपमेंट पार्टनर मानेगा, क्योंकि हम मानते हैं इन्वेस्टमेंट का सर्वोत्तम रूप है जो कैपिटल के साथ साथ कैपेबिलिटी भी लाती है, टेक्नोलॉजी के साथ टैलेंट लाता है और प्रॉफिट के साथ प्रॉस्पेरिटी भी लाता है और रेवेन्यू से ज्यादा रिलेशन मजबूत करता है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजोरी कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत करने, रणनीतिक विश्वास और सहयोग बढ़ाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। श्री कोइजुमी ने आज मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमान का दौरा किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4th भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में भाग लेने के लिए आज प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर पहुंच गई। बैठक कल होगी। प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
4: इस दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्ण से मुलाकात की। दोनों विदेश मंत्रियों ने सिंगापुर में भारतीय उच्चायोग के नए चांसलरी परिसर की आधारशिला भी रखी। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी। ये दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग का एक

0: महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय मंच है। इसके अंतर्गत उन्नत विनिर्माण, संपर्क, डिजिटल क्षेत्र, स्वास्थ्य और चिकित्सा, कौशल विकास तथा सतत विकास सहित 6 प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की जाती है और नए अवसर तलाशे जाते हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि बैठक में भारत सिंगापुर आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नए अवसरों पर चर्चा होगी। सकलैन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में प्रश्न पत्र लीक जैसे मामले रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए एक स्थायी तंत्र शामिल हो। NEET UG 2026 पेपर लीक से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सचिव को निर्देश दिया कि वे एक हलफनामा दाखिल करें जिसमें ये बताया जाए कि राधा कृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा नंदन नीलेकणी समिति द्वारा सुझाए गए आवश्यक संशोधनों को भी इसमें शामिल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि देश में एक मजबूत परीक्षा संस्थान हो जो विशेषज्ञता को बनाए रखने और तकनीकी परिवर्तनों के अनुकूल होने में सक्षम हो। NEET UG 2024 प्रश्न पत्र लीक विवाद के बाद पूर्व ISRO अध्यक्ष डॉ. के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में के राधाकृष्णन समिति का गठन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में लापता और बचाए गए बच्चों की पहचान तथा उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए राष्ट्रीय DNA और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बनाने की मांग की गई है। न्यायालय ने गृह मंत्रालय और आयोग को नोटिस जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहारनपुर तथा दिल्ली में 10 परिसरों पर छापेमारी की है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। सरकार ने बताया है कि पेंशन की राशि अगले महीने की पहली तारीख से सीधे महिलाओं के खातों में जमा होना शुरू हो जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि योजना शुरू होने के मात्र 18 दिनों में ही लगभग 800,000 महिलाओं ने दिल्ली लक्ष्मी योजना पोर्टल पर पंजीकरण कराया, जबकि इसके बाद 500,000 से अधिक आवेदन जमा किए गए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने आज विधानसभा में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि विधानसभा के सभी सदस्यों को नया वाहन, चालक और सहायक दिया जाएगा। इसके अलावा ईंधन खर्च के लिए हर महीने 75,000 रुपये दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने उत्तरी चेन्नई में 300 करोड़ रुपये की लागत से 400 बिस्तरों वाला नया अस्पताल बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत इलाज के लिए बीमा राशि 5,00,000 रुपये से बढ़ाकर 25,00,000 रुपये करने की भी घोषणा की। पंजाब पुलिस ने नवनियुक्त रक्षा कर्मियों के सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल शुरू किया है। ये पोर्टल रक्षा मंत्रालय से जुड़ा है जो नए भर्ती हुए कर्मियों के दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों का सत्यापन करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तरी छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, विदर्भ, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरलम और माहे में भी इसी तरह का मौसम रह सकता है। भुवनेश्वर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तरी ओडिशा के कई हिस्सों में अब भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
2: उड़ीसा में बाढ़ का संकट अभी भी भारी मुश्किलें पैदा कर रहा है।

0: है, खासकर भद्रक जिले में जहां बैतरणी और सालंदी नदियों के उफान के कारण बड़े इलाके जलमग्न है। वासुदेवपुर, तिहिड़ी, धामनगर, भंडारी पोखरी और चांदबली ब्लॉक के गांव अभी भी बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर आज 297 स्कूल और 395 आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखे हैं। उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स ओडराफ के जवानों ने केंद्रापड़ा जिले के कुलसाही गाँव में एक सरकारी आवासीय स्कूल में 4 दिन से फंसे 230 छात्रों को बचाया है। IMD ने शुक्रवार से रविवार तक उड़ीसा में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में कल देर रात हुई तेज वर्षा से धारचूला तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुलागाड़ में बेली ब्रिज ध्वस्त हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: धारचूला क्षेत्र में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण कुलागाड़ में बेली ब्रिज ध्वस्त होने से आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के साथ ही चीन सीमा को जोड़ने वाला सड़क संपर्क भी बाधित हो गया है। मार्ग बंद होने से दारमा, चौदास और व्यास घाटी का संपर्क जिला मुख्यालय और धारचूला क्षेत्र से कट गया है। प्रशासन ने पुल को जल्द बहाल करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। BRO के अनुसार आज शाम तक डायवर्जन रूट का कार्य पूरा होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और भूस्खलन के कारण 100 से अधिक ग्रामीण सड़कें बाधित हैं। मौसम विभाग ने देहरादून और बागेश्वर में आज भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी करी है। वहीं टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: जम्मू कश्मीर में खराब मौसम को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एहतियात के तौर पर यात्रा के लिए नए पंजीकरण पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। एक रिपोर्ट।
3: श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए पहले से पंजीकृत और वैध RFID कार्ड वाले श्रद्धालुओं को प्रशासन के निर्देशों के अनुसार यात्रा की अनुमति दी जा रही है। श्रद्धालुओं से श्राइन बोर्ड और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। नए पंजीकरण पर फैसला मौसम और सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए लिया जाएगा। वहीं श्री अमरनाथ यात्रा का 455 श्रद्धालुओं वाला तीसरा जत्था आज तड़के जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से पुंछ के राजपुरा गांव के लिए रवाना हुआ। इस बीच मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू से N. गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मीनाक्षी।
1: भारत ने गोल में 2 मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में आज श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की पूरी टीम 206 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में नीदरलैंड्स में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। भारत ने 2 मैचों में 3 अंक हासिल किए हैं। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के मिक्स डबल्स स्पर्धा में भारत के ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मकाओ की जोड़ी को उन्होंने हराया। प्री क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी का सामना चीन की जोड़ी से होगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी वॉकओवर मिलने के बाद प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। कोलकाता पुलिस ने न्यू मार्केट इलाके में मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित एक होटल में लगी आग में 9 लोगों की मौत की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। मृतकों में 2 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। 16 घायल लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता अग्नि दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। घरेलू शेयर बाजार में आज लगभग 0.5% गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 365 अंक गिरकर 76,871 पर और निफ्टी 110 अंक गिरकर 24,045 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत सतत वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 130 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट UG पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता। मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। और FIH हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम, NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: उमंग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: घड़ी की सुइयां कभी नहीं रुकती, समय भी किसी का इंतजार नहीं करता। जो हर पल का सम्मान करता है, भाग्य भी उसी का साथ देता है। समय बहुत अनमोल है, उसकी कद्र करें।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतने सुंदर संदेश के लिए, जिसने सच में हम सबको समय का महत्व समझाया। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें पहला संदेश मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन और हेमलता के साथ साथ डिंपल देवांगन।
2: ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, नगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
3: और माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल।
2: छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से हमारे चिर परिचित श्रोता योगेश ठाकुर जी।
2: सभी श्रोताओं को उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम उमंग से।
3: श्रोताओं एक बार फिर से करते हैं आपका बहुत बहुत स्वागत हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
2: जी
3: श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी कुछ ऐसे शब्दों की जो हैं तो हिंदी, संस्कृत और उर्दू के, लेकिन अब वे विश्व की कई भाषाओं में विशेषकर अंग्रेजी में इस्तेमाल किए जाते हैं।
2: आज एक बार फिर से हम लेकर आए हैं कुछ और शब्दों को जो हिंदी, संस्कृत, उर्दू और क्षेत्रीय भाषाओं से आए हैं, लेकिन अब दुनिया भर में प्रयोग में लाए जाते हैं। श्रोताओं, आपने बंगलो यानी बंगला शब्द अवश्य सुना होगा। शायद ही कोई सोचे कि ये शब्द भारतीय है। अक्सर ऐसा लगता है कि ये शब्द अंग्रेजी का है, लेकिन तथ्य कुछ और है।
3: जी श्रोताओं, तथ्य ये है कि अंग्रेजी का बंगलो शब्द बंगला या बांग्ला से निकला है।
2: जी।
3: इसका अर्थ था बंगाल शैली का मकान। ब्रिटिश अधिकारियों ने भारत में जब देखा कि भारत के बंगाल क्षेत्र में एक मंजिला चौड़े बरामदे वाले घर गर्मी के मौसम के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं।
2: जी।
3: तो उन्होंने भी अपने रहने के लिए इसी प्रकार के मकान बनवाए और उन मकानों को उन्होंने बंगलो कहना शुरू किया।
2: जी।
3: धीरे धीरे ये शब्द पूरे ब्रिटिश साम्राज्य और फिर पूरी दुनिया में फैल गया। तो श्रोताओं, जानकारी ये थी कि बंगला शब्द बांग्ला शब्द से निकला है।
2: जी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अनेक देशों में आज भी जहाँ जहाँ ब्रिटेन का प्रभाव रहा, एक मंजिला स्वतंत्र मकान को बंगलो ही कहा जाता है।
3: आशा है श्रोताओं कि आपको हमारी आज की जानकारी जरूर बड़ी रोचक लग रही होगी, है ना? आइए अब सुनते हैं एक और नया शब्द और वो शब्द है खाकी। श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि पुलिस और सेना की वर्दी का प्रसिद्ध रंग खाकी कहाँ से आया?
2: तो हम आपको बता देते हैं, ये शब्द फारसी उर्दू के खाक शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है धूल, मिट्टी या राख। तो जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा में खाकी शब्द कहाँ से आया।
3: होता ये था कि भारत में अंग्रेज सैनिकों की सफेद वर्दी बहुत जल्दी गंदी हो जाती थी।
2: जी।
3: इसीलिए उन्होंने धूल जैसे भूरे रंग की वर्दी पहननी शुरू की। ये रंग इतना उपयोगी सिद्ध हुआ कि बाद में पूरी ब्रिटिश सेना और फिर अनेक देशों की सेनाओं तथा पुलिस ने भी इसे अपना लिया।
2: जी।
3: इसलिए आज खाकी केवल एक रंग ही नहीं बल्कि अनुशासन और सेवा का प्रतीक भी माना जाता है।
2: और अब बात करते हैं एक और बहुत प्रचलित शब्द की। शब्द है लूट। अंग्रेजी का लूट शब्द भी भारत से गया है। ये शब्द हिंदी के लूट या संस्कृत के लुंट शब्द से संबंधित है। इसका अर्थ है छीन लेना या लूट लेना।
3: श्रोताओ, अंग्रेजी शासन काल में अंग्रेज लोग अधिकतर जज, सैनिक या प्रशासनिक अधिकारी होते थे।
2: जी।
3: न्याय करने की प्रक्रिया में या प्रशासनिक मसलों में अंग्रेज अक्सर ये शब्द भारतीयों द्वारा सुनते थे।
2: जी।
3: उन्होंने इस शब्द को यानी

0: लूट शब्द को अपनी भाषा में अपना लिया।
1: जी।
0: आज अंग्रेजी समाचारों, फिल्मों और पुस्तकों में लूट शब्द का प्रयोग पूरी दुनिया में होता है।
1: और अब लेते हैं दो और शब्द जिनसे सभी परिचित हैं, वो शब्द हैं योग और गुरु। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां योग शब्द न सुना हो। योग शब्द संस्कृत धातु युज से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना या मिलाना।
0: श्रोताओ, योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा के संतुलन की जीवन पद्धति है। संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया, जिसके बाद ये शब्द पूरी दुनिया में और अधिक लोकप्रिय हो गया। इसी प्रकार से गुरु शब्द भी संस्कृत से आया है।
1: आज भारतीय अंग्रेजी में ये प्रचलन हो चला है कि किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञ के लिए गुरु शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे टेक्नोलॉजी गुरु,
0: मार्केटिंग गुरु
1: या म्यूजिक गुरु।
0: श्रोताओ, दूसरी भाषाओं में शब्दों का यह स्थानांतरण भारत की ज्ञान परंपरा का विश्व पर गहरा प्रभाव दर्शाता है।
1: जी, तो प्रिय श्रोताओ, भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं होती बल्कि संस्कृति की वाहक भी होती है। जब किसी देश के शब्द दुनिया की दूसरी भाषाओं में पहुंचते हैं तो वे अपने साथ उस देश का इतिहास, संस्कृति और जीवन दर्शन भी लेकर जाते हैं। जिस भाषा के शब्द दुनिया अपनाने लगे, समझिए उस संस्कृति ने दुनिया को कुछ अमूल्य दिया है।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी। तो अब हो जाइए तैयार आज के प्रश्न के लिए। हमारा आज का प्रश्न है, खाकी शब्द किस मूल भाषा से आया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: खाकी शब्द किस मूल भाषा से आया है?
0: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो जरूर करें। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं
0: और इन्हीं पुस्तकों को आप ऑडियो बुक प्रारूप में भी NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर भी सुन सकते हैं।
1: जी
0: श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम, नदी का सफर।
1: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में नदी की यात्रा के बारे में बताते हुए उसके उद्गम, प्रवाहित होने के क्षेत्रों, जल प्रपात बनने और अंततः समुद्र में मिल जाने के बारे में रोचक ढंग से बताया गया है।
2: नमस्कार साथियों, कल कल करती नदियाँ धरती की नसों में बहता हुआ जीवन है जो हर प्राणी को जीवन दान देती हैं।
3: नदियाँ प्रकृति का अमूल्य उपहार हैं, जिनकी गोद में न जाने कितनी मानव सभ्यताएं पनपी, फूली फली और विकसित हुई। नदियाँ न केवल जल का स्रोत हैं बल्कि जीवन, संस्कृति और सभ्यताओं की आधारशिला है। अक्सर एक जिज्ञासा हमारे मन में उठती है कि नदियों का उद्भव कैसे हुआ, तो आइए सुनते हैं एक रोचक कहानी, नदी का सफर।
2: एक समय था जब पृथ्वी पर चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। ये लगभग 20 लाख वर्ष पहले की बात है। इस काल को हिमयुग यानी आइस एज कहते थे। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान बढ़ा, बर्फ पिघलने लगी थी और पेड़ पौधे भी उगने लगे थे।
3: इस तरह से हजारों वर्ष बीत गए। हिमालय पर्वत पर कहीं एक बर्फ की चोटी थी और वहीं रहती थी एक चंचल और चमकदार बर्फ की बेटी, नाम था हिमशिला। वो बहुत बड़े ग्लेशियर यानी हिमनद में रहती थी।
2: एक दिन सूरज ने मुस्कुरा कर कहा,
4: पुत्री हिमशिला, अब तुम्हें धरती पर उतरना होगा। वहां नीचे बहुत से जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, उन्हें तुम्हारे जल की आवश्यकता है।
5: क्यों, मैं क्यों नीचे जाऊं? मैं तो यहाँ ऊपर बहुत खुश हूँ। बादल मेरे साथ आंख मिचौली खेलते हैं। यहाँ यहाँ सब कुछ कितना शांत

0: मैं नीचे क्यों जाऊं?
1: पुत्री, ऊपर रहोगी तो केवल ठंडी बर्फ बनकर यहीं पड़ी रह जाओगी। हमें यूं ही पड़े नहीं रहना चाहिए, किसी के काम भी तो आना चाहिए।
2: अच्छा, वो सोच में पड़ गई। फिर सूरज ने अपना ताप और बढ़ाया। फिर धीरे धीरे हिमशिला ने मन बना ही लिया पर्वत से उतरकर नीचे जाने का। वो एक छोटी सी धार बन गई और बहने लगी तीव्र गति से ढलान की ओर।
3: रास्ते में कई भूमिगत जलधाराओं ने भी यात्रा में उसका साथ दिया। उसकी गति और बढ़ गई। अचानक उसने महसूस किया, कोई उसे खींच रहा है। वो डर गई और बोली,
4: अरे ये कौन मुझे नीचे खींच रहा है?
2: पर्वत पर तपस्या करने वाले एक बूढ़े साधु ने हंसकर कहा,
1: पुत्री, ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है जो तुम्हें नीचे खींच रहा है। डरो नहीं, धरती माँ तुम्हें अपने पास नीचे बुला रही है ताकि उसे जीवन मिल सके।
3: वो खुशी खुशी बहने लगी।
4: देखो देखो देखो देखो, जरा देखो, अरे ये क्या, और भी इतनी सारी छोटी छोटी धाराएं बहती हुई आ रही हैं मेरी तरफ। हाँ देखो ना, मेरी तरफ।
3: ये सभी आपस में मिल गईं और सभी मिलकर बहने लगी। अब उन्होंने नदी का रूप धारण कर लिया था। कहने लगी,
2: सखी, अब हम सब मिलकर बहेंगी। हम सब एक दूसरे की सहायक हैं।
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम सब मिलकर बहेंगी।
2: हाँ।
3: अब मिलकर बहने के कारण उनकी बहने की ऊर्जा और बढ़ गई। फिर क्या था, छोटी सी जलधारा ने अब एक विशाल नदी का रूप धारण कर लिया। मार्ग में कई पत्थर मिले, चट्टाने मिली, मार्ग रोकने की भी कोशिश की, लेकिन नदी को तो अब बस एक ही धुन थी,
4: मुझे तो बस आगे बढ़ना है, आगे और आगे।
3: एक दिन की बात है, बहते बहते नदी एक बहुत ऊंची चट्टान के पास आ गई। नीचे देखा तो बहुत गहराई थी। उसे बहुत डर लगा। क्षण भर के लिए वो रुक गई और सोचने लगी,
4: हाँ, अब मैं क्या करूं।
3: उसने दाएं बाएं देखा, तब पर्वत ने कहा,
1: कूद जाओ ना।
4: कूद जाऊं?
1: डरो मत।
4: हाँ?
1: धरती माता तुम्हें अपनी बाहों में ले लेंगी।
4: अच्छा, तो कूद जाती हूँ। कूद गई।
3: लोगों को खुश देखकर नदी को बड़ी खुशी हो रही थी। और हाँ, एक बात और है, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वो रुकी नहीं, अपने लक्ष्य की ओर बहना जारी रखा। कई बार रास्ते में या पहाड़ों पर वर्षा हुई तो उसका जल प्रवाह और भी बढ़ गया।
2: फिर क्या था, भला भूमिगत झरने भी

0: क्यों चुप रहते? उन्होंने भी पूरा योगदान दिया और वो भी शामिल हो गए नदी की इस रोमांचक यात्रा में।
1: वो आगे बढ़ती रही। रास्ते में उसने कई गांव देखे जहां लोग और पशु पक्षी प्यासे थे। पेड़ पौधे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सारे खेत सूख गए थे। नदी बोल उठी,
2: अब समझी, सूरज दादा ठीक ही कहते थे, मेरा बहना दूसरों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जहां जहां मैं जाती हूँ वहां हरी हरी घास उगाती है, पेड़ खुशी से झूमने लगते हैं, पशु पक्षी प्रसन्न हो जाते हैं, लोग मुझे माता कहते हैं, मेरी पूजा करते हैं। न जाने कितनी सभ्यताओं को मैंने अपनी गोद में फलते फूलते और पनपते देखा है, लेकिन कई बार मुझे बहुत दुख होता है जब लोग मुझ में कूड़ा फेंकते हैं, शहरों की प्रदूषित नालियां तक मुझ में बहा देते हैं और मैं बीमार हो जाती हूँ।
0: जब वो सागर तक पहुंची तो सागर ने कहा,
3: पुत्री तू इतनी दूर कैसे आ गई?
2: माँ धरती का गुरुत्वाकर्षण मुझे यहाँ तक बहा कर ले आया।
3: पुत्री तू बहती रही, इसीलिए जीवन चलता रहा।
2: अच्छा,
3: तू रुकती तो हाँ? जीवन चक्र ही रुक जाता। चलती रहो।
2: मैं चलती रहूंगी। हाँ, मैं हमेशा चलती रहूंगी।
0: चरैवेति, यही तो जीवन है।
1: चरैवेति, नदियों का संदेश यही महान। चलते रहना कर्तव्य पथ पर, हो यही बस तुम्हारे जीवन की पहचान।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम नदी का सफर। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विनीत कुमार शर्मा, कलाकार पूनम एस कुदुसिया, सुनील लोहिया, शशांक शर्मा और बबीता त्रिपाठी, आलेख अजीत होरो, संपादन एवं निर्माण कुसुमलता। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है हेलेन केलर।
2: इस कार्यक्रम में दिव्यांग अमेरिकी महिला हेलेन केलर के जीवन और दिव्यांगता से उनके संघर्ष और विजय की गाथा का सप्रसंग उल्लेख किया गया है और बताया गया है कि किस प्रकार वे विश्व की करोड़ों महिलाओं के लिए

0: आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जो पूरे संसार के लिए प्रेरणा स्रोत है, जिनका नाम है हेलेन केलर।
1: हेलेन केलर का जन्म 27 जून 1880 में अमेरिका में हुआ था।

0: जिनका नाम है हेलेन केलर।
1: हेलेन केलर का जन्म 27 जून 1880 में अमेरिका में हुआ था। जब ये 2 साल की हुई तो बहुत बीमार पड़ी और
2: डॉक्टर, मेरी बच्ची ठीक तो हो जाएगी ना?
3: मिसेस केलर, मुझे बेहद अफसोस है, पर हेलेन अब कभी देख, बोल और सुन नहीं पाएगी। हिम्मत रखिए मिसेस केलर, हिम्मत रखिए।
0: हेलेन की शिक्षा उसकी मां के लिए अब एक चुनौती बन गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हेलेन की देखरेख और शिक्षा के लिए उन्होंने एक अनुभवी अध्यापिका को चुना, जिनका नाम था मिस सेलिवन।
4: आओ हेलेन, मेरे पास आओ। हाँ, इधर। मैं हूँ सेलिवन। आज से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हम दोनों मिलकर खेलेंगे, बहुत सारे काम एक साथ करेंगे। धीरे धीरे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। अच्छा देखो, मेरा हाथ पकड़ो। हाँ, ऐसे। दोस्त हूँ ना तुम्हारी। शाबाश।
1: इस तरह एनी सेलिवन ने हेलेन को पढ़ाना शुरू कर दिया। जो भी शब्द हेलेन को सिखाना होता वो उसके हाथ पर लिख देती थी। इस तरह पढ़ते हुए हेलेन ने सबसे पहले गुड़िया शब्द सीखा।
4: हेलेन, आओ, आज तुम्हें एक शब्द लिखना सिखाती हूँ। हेलेन है गुड़िया जैसी, तो हम लिखते हैं तुम्हारे हाथ पर गुड़िया। लाओ हाथ दो। गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया।
0: अचानक एक दिन बाग की सैर करते हुए पानी का नल देखकर मिस सेलिवन के मन में एक विचार आया।
4: अरे, ये पानी का नल? हाँ, अगर पानी का स्पर्श कराकर हेलेन के दूसरे हाथ पर पानी लिखूं तो कितना अच्छा होगा। अभी देखती हूँ। ये रहा पानी का नल। हेलेन, हेलेन, अपना हाथ मुझे दो। हाँ, शाबाश। अच्छा, अब अपनी हथेली खोलो। ऐसे। हाँ, अच्छा, अब मैं एक शब्द लिखूंगी तुम्हारी हथेली पर। देखो, मैं लिख रही हूँ पानी। हाँ हाँ, शाबाश। पानी। पानी। एक बार फिर कोशिश करो। हाँ,
1: यूं शुरू हुआ हेलेन का पढ़ना। अब तो वो चीजों को छू छू कर इशारे से उनके नाम पूछने लगी।
0: जल्दी ही वो अपनी अध्यापिका के मुंह और गले को छूकर बोलना भी सीख गई, यहां तक कि वो संगीत का भी आनंद

0: लेने लगी।
1: मिसेस केलर
2: जी,
1: हेलेन तो अब बहुत कुछ सीख गई है, संगीत का आनंद भी लेने लगी है। आप तो खुद इतना अच्छा पियानो बजाती हैं, आज हेलेन के लिए मेरे लिए पियानो बजाइए ना।
2: जरूर, मैं अभी बजाती हूँ।

0: सिर्फ इतना ही नहीं, हेलेन उभरे अक्षरों यानी ब्रेल लिपि को पढ़ने लगी। वो अंग्रेजी के अलावा लैटिन, फ्रेंच और जर्मन भाषाएं भी सीख गई।
1: यही नहीं, वो तैराकी, घुड़सवारी और नाव चलाने में भी रुचि लेती। हेलेन ने अमेरिका के प्रसिद्ध महाविद्यालय रेड क्लिफ से स्नातक परीक्षा विशेष सम्मान से उत्तीर्ण की। हेलेन ने आत्मकथा लिखी जो एक प्रसिद्ध पत्रिका में छपी। दुनिया की 50 से ज्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है।
0: बाद में उन्होंने 10 किताबें और लिखी। वो अंधेपन, बहरेपन और उनसे जन्मी समस्याओं के बारे में अखबारों में लेख लिखती रही। अमेरिका और विदेशों में अंधेपन के लिए काम करने वाली संस्थाओं से वो जुड़ गईं।
1: उन्होंने दुनिया के कई देशों की यात्राएं की। सभी जगह हेलेन केलर को भारी सम्मान मिला। सन 1955 में वो भारत आईं। दिल्ली में विशाल जनसभा में उन्हें सम्मानित किया गया।
0: '64 में हेलेन केलर को अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया।

0: हेलेन केलर की सफलता का रहस्य था तमाम कठिनाइयों के बीच आनंद की तलाश। हेलेन अपने प्रशंसकों के लिए प्रेरणा का एक अमर स्रोत थीं, हैं और हमेशा रहेंगी।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम हेलेन केलर। और श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
1: जगबंधु और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3 बज चुके हैं। इसी के साथ संपन्न होती है हमारी ये सभा। शाम की सभा फिल्म संगीत से आरंभ करेंगे 5 बजे। इस बीच विविध भारती के नेशनल नेटवर्क के कार्यक्रम एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर जारी रहेंगे।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी प्रयागराज है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे तटरक्षण फिल्म में उदित नारायण, सुखविंदर सिंह और सुनिधि चौहान को। गीत रचना विशाल ददलानी की थी, संगीत विशाल शेखर का। आइए अब सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में टिनी कक्कर का लिखा गीत। धुन टोनी कक्कर की, फिल्म का नाम क्रीचर 3D।

अभी आप सुन रहे थे क्रीचर 3D फिल्म का गाना अभिजीत सिंह की आवाज में। आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम के अंत में अब हम आपको सुनवा रहे हैं शब्बीर अहमद का लिखा गीत, तनिष्क बागची का संगीत और फिल्म का नाम सिम्बा। मिली जुली आवाज़ें हैं नेहा कक्कड़, मीका सिंह और कुमार सानू की।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में युवा साथी सुनेंगे युववाणी।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
3: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
4: इमरजेंसी कभी बता के नहीं आती, इसलिए UP 112 की टीम रहती है हर आपात स्थिति में आपकी सहायता हेतु तैयार, दिन हो या रात।
5: तो अगर कहीं भी किसी प्रकार की अराजकता, हिंसा या आपात स्थिति हो तो बस फोन उठाएं और 112 मिलाएं।
4: UP 112 के जरिए आप कहीं भी पुलिस, एम्बुलेंस, फायर सर्विस या अन्य इमरजेंसी सेवाओं में त्वरित सहायता पा सकते हैं।
5: दिन हो या रात, UP 112 है आपके साथ, तो बस फोन उठाएं, 112 मिलाएं।
4: UP 112 द्वारा जनहित में।
0: अब युवा साथी सुने अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: गुड इवनिंग साथियों, हम आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट कार्यक्रम युवाणी, मेरे यानी उन्नति।
1: और आज उन्नति के साथ मौजूद हूँ मैं, यानी पूजा यादव।
0: बिल्कुल। और पूजा, जैसे कि तुम जानती हो कि हम अपने प्रोग्राम में कितने नए नए और कितने अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं अपने श्रोताओं से, उन्हें कितनी सारी जानकारियाँ देते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो इसीलिए आज भी हम दो खास दिवस मना रहे हैं और हम उनको बताएंगे अपनी चर्चा के बारे में, और वो दो खास दिवस कौन से उनके बारे में बताएंगे। लेकिन चलो पहला उन्हें बता ही देते हैं हम।
1: ठीक है, तो आज हम मना रहे हैं विश्व मानवतावादी दिवस। हर साल 19 अगस्त को ये मनाया जाता है। ये दिन उन सभी बेखौफ और निस्वार्थ लोगों को समर्पित है जो अपनी जान की परवाह किए बिना युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय संकटों के बीच जरूरतमंदों की मदद करते हैं।
0: और इस दिन की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएन जनरल असेंबली द्वारा की गई थी। आपको बता दें कि 19 अगस्त 2003 को इराक की राजधानी बगदाद में केनाल होटल पर एक भीषण बम हमला हुआ था।
1: इस हमले में संयुक्त राष्ट्र के इराक में महासचिव के विशेष प्रतिनिधि सर जियोजीरियो सेर्गियो वियरा डी मेलो सहित 22 मानवतावादी कार्यकर्ताओं की मौत हो गई थी।
0: इस दुखद घटना की याद में और मानवता की सेवा करने वाले लोगों के सम्मान में संयुक्त राष्ट्र ने साल 2009 को पहली बार ये दिवस मनाया।
1: इसका उद्देश्य, आपको बता दें, मानवतावादी कार्यकर्ताओं का सम्मान करना, संकट से जूझ रहे लोगों की मदद और साथ ही साथ सुरक्षा की मांग शामिल है।
0: आज के समय में दुनिया कई बड़े संकटों से जूझ रही है, चाहे वो सैन्य संघर्ष हो, भुखमरी हो, जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाले भयानक आपदाएं हो। तो ऐसे कठिन समय में मानवतावादी संगठन और कार्यकर्ता ही उम्मीद की किरण बनकर हमारे सामने आते हैं।
1: विश्व मानवतावादी दिवस सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि ये एक संदेश है कि इंसानियत हर चीज से ऊपर है,
0: और इसमें हम भी अपना योगदान दे सकते हैं, सहानुभूति देकर, विश्वसनीय संस्थाओं का सहयोग करके और संवाद के जरिए मानवीय संकटों और राहत कार्यकर्ताओं के बारे में लोगों को जागरूक करके।
1: तो उन्नति, ये तो हमारा पहला विषय था। और जैसा कि तुमने शुरू में ही कहा कि आज हम दो खास दिवस मना रहे हैं, तो पहले तो हमने बात कर ली, लेकिन अब बारी है कि हम उस विषय पर बात करें जो कि आज कहीं ना कहीं बेहद खास होने वाला है।
0: बिल्कुल।
1: आज हम मना रहे हैं विश्व फोटोग्राफी दिवस।
0: बिल्कुल।
1: तो इसके लिए तो मैं ये कहना चाहूंगी कि एक पल को रोक लो, यादों में संजो लो, जो आज है सामने उसे दिल में रख लो, कैमरा उठाओ, नजर मिलाओ, दुनिया को नए रंग दिखाओ, हर तस्वीर में कहानी हो, हर पल में रवानी हो।
0: वाह, क्या बात कही पूजा। और इन शब्दों से मुझे ऐसा लगता है ना, मुझे एक ऐसी बात याद आती है कि कभी कभी हम आकाश की तरफ देखते हैं तो हमें देखकर लगता है कि वाह, आज आसमान कितना सुंदर लग रहा है, बादल कितने खूबसूरत लग रहे हैं, काश मैं इन्हें हमेशा ऐसे ही देख पाऊँ। और फिर आपको याद आता है कि आपके पास एक मोबाइल है और आप उसे निकाल कर उस आकाश की तस्वीर लेने लगते हैं ताकि वो हमेशा आपके पास रहे।
1: और फिर भूले बिसरे अपने फ़ोन की गैलरी आप देखते हैं और आपको वो तस्वीर दिखती है। आई एम श्योर ये हम सबके साथ होता है।
0: बिल्कुल।
1: और वो फोटो देख कर ना आपको सब कुछ याद आने लगता है, आपकी आंखों के सामने वो दिन फिर से वापस आ जाते हैं।
0: मतलब नॉस्टैल्जिया, मतलब वो हंसी, वो मुस्कान, सब ताज़ा हो जाती है। क्यों पूजा?
1: बिल्कुल।
0: यानी एक क्लिक से वो एक पल हमेशा के लिए वो याद में बदल जाता है। लेकिन अपने श्रोताओं को, जैसा कि हमने बताया कि फोटोग्राफी डे आज हम मना रहे हैं, तो हम उसके साथ साथ अपने श्रोताओं के लिए इसी दिवस पे कुछ खास भी लेकर के आए हैं जो कि हम उन्हें आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: दोस्तों, वेलकम बैक। जैसा कि हमने आपको इस गाने के पहले बताया था कि हम विश्व फोटोग्राफी दिवस पर आपके लिए कुछ खास लेकर के आए हैं, तो उसी कड़ी में हमारे पास है आपके लिए एक बातचीत जिसका विषय है फोटोग्राफी, एक शौक, एक जुनून, एक करियर, आखिर क्या। और इसके वार्ताकार हैं अभिनव प्रज्ञा पांडे और सुष्मिता श्रीवास्तव के साथ विवेक कुमार की बातचीत। तो आइए सुनते हैं ये।
1: मैंने भी देखने की हद कर दी, वो भी तस्वीर से निकल आया। सोचिए तस्वीर कितनी जिंदा रही होगी, कितनी खूबसूरत रही होगी। शहपुर रसूल साहब का ये शेर है और हमारे साथी, हमारे दोस्त ये सोच रहे होंगे कि हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत आज शेर से क्यों की। शेर भी जिसमें तस्वीर का जिक्र है, जिसमें जिंदा तस्वीर का जिक्र है। हमने ये शुरुआत इस तरह से इसलिए की क्योंकि आज हम बात करेंगे फोटोग्राफी की। फोटोग्राफी की बात इसलिए करेंगे क्योंकि हर साल 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। फोटोग्राफी क्या है, कैसे करना चाहिए, इसकी बारीकियां क्या हैं, क्या सिर्फ एक क्लिक कर देना ही फोटो खींचना है फोटोग्राफी है, इसको हम किस तरह से अपनी एक शौक, एक कला, एक जुनून या एक करियर के तौर पर विकसित कर सकते हैं। खासकर हमारे जो युवा दोस्त हैं, जो यूथ हैं, सबको शौक होता है फोटो खींचने का, खिंचवाने का, लेकिन सही तरीका क्या होता है, सही प्रयोग क्या होता है लाइट का, कैसे शुरुआत कर सकते हैं, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है विवेक सिंह जी को, जो कि एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं और उसी के साथ एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रख्यात कैमरामैन फोटोग्राफर भी हैं। फोटोग्राफर कहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इस पूरी बातचीत में हमारे साथ रहेंगी हमारी दोस्त सुष्मिता।
2: नमस्कार दोस्तों।
1: सुष्मिता, कभी फोटो खींची है?
2: जी बिल्कुल खींची है, और मैं ये कहना चाहूँगी अभिनव जी कि हमारे जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं वो भी आजकल फोटो, हमारे पास फोन रहते हैं हर समय हाथों में,
1: बिल्कुल
2: तो कहीं ना कहीं हम किसी भी जगह घूमने जाते हैं या इवन सिंपल मोमेंट्स ऑफ लाइफ को हम कैप्चर करते हैं। और मुझे लगता है कि जब भी हम कोई तस्वीर खींचते हैं तो सिर्फ तस्वीर खींचने का नहीं, स्किल, बल्कि उसके पीछे की जो थॉट है वो
1: बिल्कुल
2: बहुत ज़्यादा हमारी उस तस्वीर में झलकती है, दिखती है कि हमने क्या सोचा। और एक बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही एक नॉर्मल सा कोई हमारे सामने लैंडस्केप था, लेकिन जो पिक्चर हमने खींची उसने उसमें जान डाल दी।
1: वो तस्वीर बन गया। विवेक सिंह जी, भूमिका से सीधे आपके पास आते हैं, इतना अनुभव है आपका फोटोग्राफी में, प्रशासन में, लेकिन फिर भी आपने फोटोग्राफी का जो आपका शौक है अपने बाकी के काम के साथ उसको लेकर के इतने अच्छे से आप चल रहे हैं, कैसे इसको मैनेज करते हो? सबसे पहला प्रश्न जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि फोटोग्राफी आपके लिए क्या है, शौक है, कला है, करियर है या जुनून?
3: धन्यवाद अभिनव जी। फोटोग्राफी मेरे लिए ये सब कुछ है। पहले तो ये एक मॉडर्न आर्ट है, कला है, और वो कला जब आप शौक में बदलते हैं तो उस कला के नज़दीक जाते हैं। फिर उसके बाद वो जब शौक आपका एक हद से पार होने लगता है तो जुनून में बदल जाता है, और एक जुनूनी आदमी ही फोटोग्राफी को करियर के रूप में अपना सकता है, ऐसा मेरा मानना है।
1: बिल्कुल। क्या हर क्लिक एक अच्छी फोटो होती है? क्योंकि एक बहुत मशहूर फोटोग्राफर ने कभी कहा था कि आपको एक क्लिक करने से पहले 100 बार सोचना

0: ना चाहिए कि जो मैं देख रहा हूँ, जो मैंने एग्जीक्यूट किया हुआ है अपने आंखों में, अपने दिमाग में, क्या ये इस क्लिक के काबिल है?
1: देखिए, फोटोग्राफी मेरी निगाह में एक इतिहास को लिखने जैसा है। आप एक पर्टिकुलर मोमेंट को कैप्चर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो कोई भी फोटो बेकार नहीं होती है। हाँ, उसकी क्वालिटी, उसकी तकनीकी दक्षता पे आप संदेह कर सकते हैं, परंतु हर फोटो, हर तस्वीर कुछ न कुछ कहती जरूर है।
2: विवेक जी, आज हमने देखा है कि युवाओं में फोटोग्राफी को लेकर काफी एक आकर्षण बढ़ा है, एक क्रेज बढ़ा है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह आपको क्या लगती है?
1: देखिए सुष्मिता जी, फोटोग्राफी में जो क्रेज़ बढ़ने की बात है, वो हमारी ओवरऑल जो चेंजेस हुए हैं रिसेंट टाइम्स में, सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो एक्सपोज़र मिल रहा है, तो ये ज़माना, ये समय इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का है। और तस्वीरें जो है ना, वो बोलती हैं खुद में, अपने आप में। जैसा शुरू में अभिनव जी ने कहा था, एक तस्वीर जो होती है वो 1,000 शब्दों के बराबर होती है।
0: बिल्कुल
1: तो आपका जो अटेंशन स्पैन है वो कम हो गया है, शब्दों में आप उन चीज़ों को देर में समझ पाते हैं, चित्र के माध्यम से जल्दी देख पाते हैं। इसलिए ये बहुत ही स्वाभाविक है कि तस्वीरों की ओर आपका रुझान बढ़ रहा है।
0: किसी बहुत अच्छे फिलोसोफर ने कहा था कि हर व्यक्ति एक दार्शनिक है। क्या जिस व्यक्ति के पास एक बहुत अच्छा कैमरा है, वो एक फोटोग्राफर है, अच्छा फोटोग्राफर है?
1: नहीं, ये कोई आवश्यक नहीं है कि कैमरा अच्छा होने से अच्छा फोटोग्राफर भी बन सके कोई। कैमरा देखिए एक सिर्फ साधन है, साध्य या जो उद्देश्य है ना, वो फोटोग्राफर का विजन है, वो उसकी सोच है, वो अपने कैमरे से उस विजन को कितनी सच्चाई से उतार पाता है, ये उसकी दक्षता को प्रमाणित करता
0: दिखाता
1: है।
0: है। विवेक जी, हमने रीसेंट टाइम्स में देखा है कि स्मार्टफोन से फोटोग्राफी का जो एक कहते हैं ना प्रोफेशनली जो लोग परस्यू कर रहे हैं, उसकी पूरी एक जो तस्वीर है वो बदल दी है। तो आपको क्या लगता है कि स्मार्टफोन के आने से इस दुनिया में काफ़ी चेंजेस आए हैं, या लोगों ने उसको प्रोफेशनली जो परस्यू भी किया है उनमें भी चेंजेस आए हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल सुष्मिता जी, ये सही है कि स्मार्टफोन फोटोग्राफी ने प्रोफेशनल फोटोग्राफी के स्वरूप को हमेशा के लिए बदल दिया है।
0: जी
1: मेरा अपना मानना है कि इसने इस आर्ट को डेमोक्रेटाइज कर दिया है। और हर आदमी के हाथ में कैमरा होने से हर समय एक अच्छी तस्वीर का संयोग बना ही रहता है। बहुत सारे नामी गिरामी फोटोग्राफर्स ने, स्पेशली वेडिंग फोटोग्राफर्स ने,
0: जी
1: अपनी फोटोएं स्मार्टफोन कैमरे से खींचनी शुरू कर दी हैं, और उनको उनको अप्रिशिएट करने वाले, उनकी तारीफ करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो ये कहना कि स्मार्टफोन फोटोग्राफी ने प्रोफेशनल फोटोग्राफी को अफेक्ट नहीं किया है, प्रभावित नहीं किया है, ये गलत होगा।
0: अच्छा, अगर मैं ये पूछूं विवेक जी कि स्मार्टफोन आने के बाद जो नंबर ऑफ क्लिक्स थे वो तो अनलिमिटेड आपको मिल गए, लेकिन जो आपकी क्रिएटिविटी थी, जो आप विजुअलाइज करते थे अपने दिमाग में, अपनी आंखों में कि अब ये सीन है, आपको नहीं लगता कि क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं कुछ कम हुई है? क्योंकि पहले जो सोचते रहे होंगे उनको ऐसा लगता होगा कि हमारे पास सीमित संसाधन है, सीमित क्लिक्स हैं।
1: हाँ बिल्कुल सही बात है कि अब जो क्वालिटी है वो क्वांटिटी के ऊपर नहीं रह पाई है। कहीं ना कहीं जो थॉट प्रोसेस है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो समय की आवश्यकता होती है, क्रिएटिव प्रोसेस में सबसे बड़ी बात यह होती है कि आप थोड़ी देर रुक करके सोचें, अपने विजन को क्रिस्टलाइज करें, क्लियर रखें, और उसके बाद उसको तस्वीरों में उतारने की कोशिश करें। ऐसा नहीं हो पा रहा है, ये बात सच है। लेकिन इसके बाद भी मैं कहूंगा कि ऐसा ना करने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम है।
0: जी
2: सर, फोटोग्राफी इज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, और आपने स्टार्टिंग में उसको अदर फॉर्म ऑफ आर्ट से भी कंपेयर किया। तो जब हम किसी अच्छे फोटोग्राफर की बात करते हैं, जैसे हमारे युवा श्रोता जो हमें सुन रहे हैं, अगर वो एक अच्छा फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, तो क्या सिर्फ उनका पैशन और किस हद तक वो जो तकनीकी ज्ञान है उसकी ज़रूरत होती है, और एक ओवरऑल जो इसका बाय प्रोडक्ट बनेगा वो उनको एक प्रोफेशनल लेवल पे भी अच्छा बना सकेगा? इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? दोनों चीज़ को लिंक कैसे कर सकते हैं?
1: बिल्कुल, देखिए तकनीकी ज्ञान तो किसी भी चीज़ का होना आवश्यक है। हर चीज़ की एक बारीकी होती है, नुआंस होता है, उसको समझना जानना ज़रूरी होता है। और अगर आपको ऐसा कोई मौका मिलता है जहाँ पे आप ये तकनीकी ज्ञान हासिल कर सकें, फोटोग्राफी के केस में अगर आपको कैमरे को हैंडल करना, एक्सपोज़र के बारे में जानना, ये सब चीज़ें अगर आपको पता लग सकती हैं तो अच्छी बात है। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप अपनी रचनात्मक सोच को तस्वीरों के माध्यम से कैसे अभिव्यक्त कर सकते हैं,
0: जी
1: उसकी

0: आपको निरंतर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं, तकनीकी ज्ञान होना तो आवश्यक ही है, साथ में एक रचनात्मक सोच भी होनी चाहिए।
1: बिल्कुल।
2: तो सर, जैसे हमारे सामने हमारे जो युवा श्रोता हैं, हमारे दोस्त हैं, अगर वो परस्यू करना चाहें तो सबसे पहला स्टेप उन्हें इसको सीखने के लिए क्या लेना चाहिए, कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए?
0: मैं अपने सभी युवा दोस्तों से कहना चाहूँगा, शायद ही कोई ऐसा हाथ हो जिसमें स्मार्टफोन नहीं है, जिसमें एक बेसिक कैमरा नहीं है, तो अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो आपको उस कैमरे से ही शुरुआत कर देनी चाहिए। ऐसे इक्विपमेंट का इंतज़ार नहीं करना चाहिए जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा और आप अपने पैशन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो मेरा मानना है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कैमरा उठाइए और फोटो खींचिए।
2: तो स्टार्टिंग में सर हमें कोई प्रोफेशनल डिग्री की जरूरत पड़ेगी जब हम इस करियर की तरफ जा रहे हैं?
0: देखिए, जब आप करियर के बारे में सोचेंगे तो संभवतः डिग्री की आवश्यकता हो, बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं जहाँ पे फॉर्मल डिग्री की आवश्यकता होती है, परंतु आप जानकर के आश्चर्य करेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ जो रेनाउंड फोटोग्राफर्स हैं उनकी कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हुई थी।
1: बिल्कुल। अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूँ विवेक जी, तो सोशल मीडिया के आने के बाद क्या ये जो एक आप फोटोग्राफिक रिवोल्यूशन देखते हैं, बहुत सारे लोग, कुछ एक प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो केवल फोटोज ही पोस्ट करने की अनुमति देते हैं, क्या ये आने के बाद एक जो फोटोग्राफिक माइंडसेट था वो युवाओं का बदला है, चेंज हुआ है, या फिर आप इसे कैसे देखते हैं सोशल मीडिया को फोटोग्राफी के लिए?
0: देखिए, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म जो हैं वो उन्होंने फोटोग्राफर्स को अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी दी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सीखने की बात करें तो आपके पास बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, ऐसे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ऐसे गुरु आपको मिल जाएंगे जो आपको सिखाने के लिए फोटोग्राफी की तकनीक को हर समय उपलब्ध है, आपकी सुविधा के अनुसार उपलब्ध है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुछ भी आपने सीखा है उसको विश्व को दिखाने के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी आपके पास डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है। आपके पास इस समय एक ग्लोबल ऑडियंस है, आप अपने पोर्टफोलियो को इंस्टेंटली वायरल कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। पहले समय लगता था, आप एग्जीबिशंस लगाते थे, फिजिकली एग्जीबिशंस लगाना बड़ा कॉस्टली होता था और उसमें भी जो फुटफॉल होता था वो लिमिटेड होता था, एक्सपोजर आपका लिमिटेड होता था, आपको लोग जानते थे। लेकिन अब वो समय है जब आपकी एक तस्वीर जो अच्छी खिंची हुई हो वो आपको बहुत ही अच्छा नाम और करियर दे सकती है।
2: फोटोग्राफी में सर करियर बनाने के लिए जो शुरुआती निवेश है वो कितना ज़्यादा आवश्यक होता है, और ये क्या पॉइंट ऑफ कंसर्न होना चाहिए जो लोग इसे परस्यू करना चाह रहे हैं?
0: नहीं, मेरा मानना है कि शुरुआती निवेश के बारे में कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए, करियर बाद में आएगा, पहले आपको शुरुआत फोटो खींचने से करनी है। आपको फोटोग्राफी में वो जैसा हम लोगों ने शुरू में कहा ना, पहले शौक पैदा करना है, फिर जुनून, और आखिर में उसको करियर के रूप में लेना है। तो शौक तो आप स्मार्टफोन कैमरे से भी कर सकते हैं जो आपके फोन में लगा हुआ है, उसके बाद एक बेसिक कैमरे से शुरुआत कर सकते हैं। इक्विपमेंट का महत्व होता है, लेकिन ये उसी तरह से कहने के जैसा है कि एक अच्छी कलम से एक अच्छा उपन्यास लिखा जा सकता है।
1: एक प्रश्न है विवेक जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बल्कि मैं ये कहूँ कि अगर मैं दो प्रश्नों को जोड़ करके पूछ रहा हूँ, पहला ये कि एक अच्छी तस्वीर जब आप लेते हैं तो आप क्या देखते हैं, उसके तत्व क्या क्या होते हैं कि हमको यहाँ से लाइट्स देखनी है, एक्सपोजर देखना है, ये सारी चीज़ें देखनी है। दूसरा, एडिटिंग का कितना महत्व है, क्योंकि आजकल अगर हम सोशल मीडिया पर देखें तो एक ट्रेंड ये भी है अनएडिटेड फोटोज़ का, उसको एक टर्म दिया जाता
2: candid.
1: है कैंडिड। एडिटिंग कितनी ज़रूरी है, इतनी ज़रूरी है कि बिना एडिटिंग के कोई फ़ोटो दिखाई ही नहीं जा सकती, पोस्ट नहीं की जा सकती या एग्जिबिशन में नहीं लगाई जा सकती। दूसरा एक टर्म इसमें और आता है, फोटोग्राफी में नैतिकता, या जिसे हम फोटोग्राफिक एथिक्स कहते हैं, ये तीनों चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं?
0: देखिए, सबसे पहले आपका पहला सवाल, तस्वीर प्रभावशाली किन चीज़ों से बनती है? एक तस्वीर प्रभावशाली तकनीकी एस्पेक्ट से तो बनती ही है कि उसमें लाइट कहाँ से आ रही है, उसका एक्सपोजर कितना सही है, उसमें जो फोटोग्राफी के बेसिक रूल्स हैं वो फॉलो हुए हैं, रूल ऑफ थर्ड या इस तरह की चीज़ें।
1: ये क्या है रूल ऑफ थर्ड?
0: रूल ऑफ थर्ड की फोटो को, अगर एक फोटो को ले लिया जाए और उसको 9 भागों में बांट दिया जाए तो उनके किसी भी बिंदु पे जो मुख्य विषय वस्तु है वो आनी चाहिए। लेकिन इस तरह के बेसिक रूल्स को तोड़ करके भी, नेगेटिव स्पेस का रूल है, उन्हें तोड़ करके भी अच्छी तस्वीरें बनाई जाती हैं। सो फोटोग्राफी में ये महत्वपूर्ण नहीं है कि तकनीकी ज्ञान आपका जो है वो आपको सिर्फ एक बेसिक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, उसके बाद कैमरे के पीछे खड़े हुए व्यक्ति के पास जो

0: भाव हैं वो तस्वीर में कितनी हद तक उतर पा रहे हैं वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एक प्रभावशाली तस्वीर व्यक्ति की सोच पर ही निर्भर करता है, मेरा ऐसा मानना है। दूसरा, आपने पूछा फोटो एडिटिंग का कितना महत्व है। फोटो एडिटिंग का महत्व है, बहुत महत्व है। मेरा अपना मानना है कि फोटो एडिटिंग की जानी चाहिए अनलेस एंड अनटिल वो विषय वस्तु को परिवर्तित करती हो। फोटो एडिटिंग को आप ऐसे देखें कि वो एक तरह से व्यक्ति की रचनात्मकता को वास्तविकता में बदलता है।
1: तो विषय वस्तु का परिवर्तन वास्तविकता के साथ न्याय होगा क्या?
0: देखिए, जब भी फोटोग्राफर देखता है वो अपनी आंख से देखता है, वो किसी सच्चाई को अपने अपने एंगल से, अपने दृष्टिकोण से ही दिखाने की कोशिश करता है। उदाहरण के तौर पे हम, आप और एक और व्यक्ति, तीन लोग बैठे हुए हैं और उसमें से किसी फोटोग्राफर ने फोटो खींची तो उसने दो व्यक्तियों को तो शामिल किया उस फोटो में, तीसरे को हटा दिया। तो एक्चुअल रूप में वहां पे मौजूद तो तीन लोग थे, लेकिन जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो तस्वीर बार बार यही बोलेगी कि वहां पे सिर्फ दो लोग थे। सो मेरा अपना ये मानना है कि प्रामाणिकता के साथ छेड़छाड़ अगर नहीं होती है तो फोटो एडिटिंग फोटोग्राफर के विजन को प्रस्तुत करती है। तीसरा प्रश्न, एथिक्स। एथिक्स देखिए, जैसे मैंने अभी कहा कि अगर वो सीन की वास्तविकता को अगर चेंज नहीं कर रहे हैं हम, उदाहरण के लिए एक प्रदर्शन हो रहा है वहां पे सब लोग शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं और किसी फोटोग्राफर ने उस स्थान की तस्वीर उठा ली जहां पे लोग शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं, उसके ठीक पीछे लाठीचार्ज हो रहा है, लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश पुलिस कर रही है, उस तस्वीर को नहीं उतारा गया, तो आपके दिमाग में कौन सी छवि बनी रहेगी?
1: शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया।
0: और अगर उस तस्वीर को सिर्फ पलट करके लाठीचार्ज की तस्वीर से जोड़ दिया जाए तो आपके दिमाग में छवि बिल्कुल बदल जाएगी।
1: बिल्कुल।
0: सो ये फोटोग्राफर का विजन है। फोटो जर्नलिज्म जैसी और डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी में इन बातों का बहुत ही महत्व है। पर कुछ जगह पे जहां पे आप, जैसे प्रोडक्ट फोटोग्राफी है, जैसे फैशन फोटोग्राफी है, उन जगहों पर फोटो एडिटिंग का बहुत महत्व है। सो एथिक्स बहुत ही थिन लाइन है, बहुत ही पतली सी लाइन है, जिसको बहुत ही सावधानी पूर्वक एक फोटोग्राफर को ट्रीट करना चाहिए।
1: आज के दौर में बहुत संक्षेप में जानना चाहूँगा विवेक जी, आज के दौर में आप इसे कितना ज़रूरी मानते हैं, खासकर युवाओं के लिए, यूथ के लिए, जो हर एक लम्हे को सोशल मीडिया पर फोटो के रूप में डाल रहा है?
0: मैंने कहा ना कि जैसे अगर आप प्रामाणिकता से, वास्तविकता से छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं और सिर्फ अपने एक विजन को प्रस्तुत करने का माध्यम बना रहे हैं तो फोटो एडिटिंग, या ये कह लें कि उसको रीटच,
1: यस
0: ज्यादा सही
1: जी
0: शब्द है, रीटचिंग तो करनी चाहिए।
1: जी
0: फोटो एडिटिंग इज अ डिफरेंट थिंग। आपने किसी को, व्यक्ति को ही हटा दिया, किसी उस एलिमेंट को ही गायब कर दिया जो उसका महत्वपूर्ण अंग था।
1: बिल्कुल। और सर, जब हम बात करते हैं कि ये दौर एआई का दौर है और जेनरेटिव इमेजेस का, तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं ना कि फोटोग्राफ्स कैन बी डिसेप्टिव इन दिस डे एंड एज। तो उस चीज़ के बारे में आप इसको, अगर हम बात करें कि इसमें फ्यूचर ऑफ फोटोग्राफी को आप कैसे देखते हैं?
0: देखिए, फोटोग्राफी हमेशा रहेगी, हमेशा थी, जब से 1839 से शुरू हुआ फोटोग्राफी का दौर, और आगे भी रहेगी ऐसा मेरा मानना है। उसमें जो एआई और जनरेटिव इमेजेस का आया है दौर, वो उसको अगर कुछ इन्हांस कर सकता है तो अलग बात है, परंतु फोटोग्राफी का रेलेवेंस या उसकी उपयोगिता कभी ख़त्म नहीं होगी। इसलिए क्योंकि देखिए, हर तस्वीर के पीछे कहानी जुड़ी हुई होती है।
1: बिल्कुल।
0: जो जनरेटिव इमेज है, जो एआई से बनी हुई तस्वीरें हैं, उनके पीछे वो कहानियां नहीं होंगी।
1: सर, अगर कोई फ्रीलांस फोटोग्राफी के रूप में अपना करियर शुरू करना चाहता है तो उसके लिए क्या चुनौतियां हो सकती हैं, और किस ऐसी कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसका उसको ख्याल रखना चाहिए कि वो अपने इस करियर में अच्छा कर सके?
2: और सुष्मिता और विवेक जी, ये देखने में भी आया है कि आजकल हर व्यक्ति, हर युवा लगभग फ्रीलांस फोटोग्राफर है।
1: जी
2: वो हर चीज़ें वो ये चाहता है कि, अब जैसे हमने देखा कि कोई एक फ़ोटो, कोई एक वीडियो इतना वायरल हो गया तो सबके मन में एक इच्छा आती है कि हम भी इतने वायरल हो जाएं, फ़ोटोज़ या वीडियोस डाल करके, वो किसी भी तरह के हो सकते हैं। ये किस तरह से काम करता है?
0: देखिए, मैंने शुरू में ही कहा था, हर हाथ में स्मार्टफोन होने से फोटोग्राफी का डेमोक्रेटाइजेशन हो गया है। आप उसी बात को अंडरलाइन कर रहे हैं, उसी
1: जी
0: बात की पुष्टि कर रहे हैं, और ये कोई खराब
1: बात नहीं,
0: डेवलपमेंट नहीं है,
1: ठीक है।
0: बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है। हर आदमी को इस बात का हक है कि वो अपने विचार को तस्वीरों के माध्यम से लोगों के सामने रख सके। अब रह गया फ्रीलांस फोटोग्राफर के रूप में हमें क्या चुनौतियां मिल सकती हैं, तो देखिए, सबसे बड़ी, तस्वीरों का जो बम्बार्डमेंट हो रहा है तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, तो इसमें सबसे बड़ा संकट तो

0: शान का ही संकट है। ये तस्वीर किसकी है, किसने खींची, कैसे खींची, इन पे समय देने का जो व्यूअर है उसको समय नहीं है। तो आपकी तस्वीर इतनी बोलती हुई होनी चाहिए कि वो उस तस्वीर पे रुके, आपका अटेंशन स्पैन उस पे कम ना हो, आपकी तस्वीरें उसको आकर्षित कर सके। ये सबसे बड़ा चैलेंज है एक फ्रीलांस फोटोग्राफर के लिए। तो अगर वो अपनी विशेषता से, अपनी तकनीकी दक्षता से और अपने विजन से लोगों का ध्यान आकर्षित कर पाया तो अच्छा फोटोग्राफर बन सकता है।
1: फिर से एक बार एक प्रश्न पूछना चाहेंगे जो सुष्मिता तुम्हारे मन में भी होगा कि शुरुआत मान लीजिए करनी है तो कैमरा कौन सा सेलेक्ट करें, लेंस कौन सा लें, शुरुआत से बेसिक से की अगर बात करें, और जिस बात की आप बात कर रहे हैं कि आपकी तस्वीरों में उतना वो मैस्मराइजिंग इतनी होनी चाहिए, इतनी कैप्टिवेटिव होनी चाहिए कि कोई एक बार देख करके दोबारा नज़र फिर उस पर आए ही आए, शुरुआत किस तरह के बेसिक कैमरेज या लेंस के साथ वो कर सकता है?
0: देखिए, मैंने कहा ना, आज स्मार्टफोन्स बहुत ही अच्छे हो चुके हैं, आप स्मार्टफोन से बहुत ही अच्छी तस्वीरें
1: तो
0: ले सकते हैं।
1: इतने ट्रेंड, इतने फील्ड्स भी तो हैं उसमें, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, वेडिंग फोटोग्राफी, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी।
0: बिल्कुल सही है,
1: कैसे चुनाव करें कोई?
0: बिल्कुल, आपको ये आपकी अपनी व्यक्तिगत रुचि पे निर्भर करेगा कि आपने कौन सी फील्ड चूज की है। फोटो जर्नलिज्म, डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी, इवन मैं कहूँगा फैशन फोटोग्राफी, इन चीज़ों के लिए नॉर्मल स्मार्टफोन फोटोग्राफ्स खींची जा सकती हैं, बहुत अच्छी खींची जा सकती हैं। मैं बताऊँ, मेरा तो शौक जो प्राथमिक रूप से है वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी है, और मैंने पिछले 5 सालों में अनगिनत बार, अब तो कोर्ट ने बैन लगा दिया है स्मार्टफोन फोटोग्राफी करने पे, अनगिनत बार बहुत ही सुंदर तस्वीरें बनाई हैं। ऐसी तस्वीरें जो मेरे मन को भाती हैं वो स्मार्टफोन से बनी हैं।
1: अच्छा,
0: तो ये कहना कि स्मार्टफोन से, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ये परिस्थिति पे निर्भर करता है कि आपके पास कैसी लाइट है, कैसा सब्जेक्ट किस तरह से है।
1: अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने 2019 के कुंभ में कुछ ऐसा निकाला भी था, कुंभ डायरी या समथिंग।
0: जी जी, मैंने कुंभ पे एक किताब की है, सेलिब्रेटिंग फेथ, और 2019 में उस कॉफी टेबल बुक के अंदर मैंने 20-22 तस्वीरें ऐसी इंक्लूड की थी जो मोबाइल फोन से खींची गई थी, और जब तक मैंने बताया नहीं, कोई ये नहीं बता पाया कि वो DSLR फोटोग्राफ्स नहीं है।
2: सर, फोटोग्राफी अब जैसे बात आपने शुरुआत में ही कहा कि वो पैशन से फिर करियर की तरफ जाता है, तो वहीं हम यही पूछना चाहते हैं सर कि स्टार्टिंग जब कोई युवा कर रहा है तो आज वो अगर फोटोग्राफी में अपना करियर बनाना चाहता है तो क्या ऐसी आप उन्हें सलाह देना चाहेंगे, या क्या ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप उन्हें सुझाव देना चाहेंगे जिस बात का उन्हें पालन करना चाहिए?
0: देखिए, गेयर की बात हम लोगों ने काफ़ी कई बार की, और निश्चित रूप से जब आप अपने करियर में आगे बढ़ेंगे तो आपको अच्छे गेयर की आवश्यकता होगी, इससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन सिर्फ इस आधार पे आप अपने करियर को आगे ना बढ़ाएं कि आपके पास उपयुक्त कैमरे नहीं हैं, मेरा मानना है ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मेरी पहली सलाह है। और दूसरी बात यह है कि अच्छे और नामी फोटोग्राफर्स के फ़ोटो को देखें आप, उसे स्टडी करें क्लोजली, आपको उन तस्वीरों को देख कर भी काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। इस पूरी कला को सीखते समय हर समय शिष्य ही बने रहें, गुरु बनने की आवश्यकता नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: और मेरा मानना है कि सिर्फ और सिर्फ एक सलाह मेरी ओर से कि हर दिन फोटो खींचे,
1: हर दिन फोटो खींचे। आपने लेकिन वो एक तकनीकी बात नहीं बताई कि आप लाइट्स का कैसे प्रयोग करें, कैसे कर सकते हैं, कोई लाइट पीछे से आ रही है, कोई साइड से आ रही है, कोई कैसे करते हैं?
0: ये बात सही है, तकनीकी ज्ञान जो एक प्राथमिक रूप से है वो हासिल करना आवश्यक है, लेकिन मुझे लगता है आज का युवा इतना जागरूक है कि उसने सारी तकनीकी जो आवश्यकताएं हैं उनको आत्मसात कर रखा है। मुख्य जो समस्या है वो ये है कि वो भाव उसमें नहीं ला पाता है। तो टेक्निकल एस्पेक्ट्स अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फॉर्मल कोर्सेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, कॉलेजेस में हैं, इसके अलावा यूट्यूब पे हैं, पेड चैनल्स हैं, फ्री चैनल्स हैं, वहाँ से आप तकनीकी ज्ञान ले आ सकते हैं, परंतु जो भाव है उसके लिए यह बात बहुत ही आवश्यक है कि हर दिन आप तस्वीरें खींचते रहें।
1: बिल्कुल।
2: सर, अंत में आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपके जीवन की कोई ऐसी तस्वीर या कोई अनुभव जिससे आपको फोटोग्राफर के रूप में मतलब बहुत एक प्रभावित किया हो, आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस जो आपके दिल के बेहद करीब हो।
1: हाँ बिल्कुल सर, ये बहुत मतलब अच्छा प्रश्न है और मैं खुद भी मैंने कई बार ऐसा

0: देखा है कि आप कोई एक ऐसी तस्वीर देख लेते हैं, या तो वो इतनी खूबसूरत होती है कि आपके दिलो जहन पे छा जाती है, या फिर उसमें इतनी अधिक मार्मिकता होती है कि उसको भुलाए नहीं भूलती वो, आप रह रह कर याद आती है। आप कोई ऐसी वाइल्ड लाइफ फोटो फोटो कुछ भी, मतलब ऐसा जान होती है इतनी उसमें, या ऐसा कुछ कभी आपके साथ अगर हुआ हो?
1: जी ज़रूर। मेरे गुरु स्वर्गीय श्री रघुराय जी की एक तस्वीर है, 1984 की भोपाल जो गैस ट्रेजडी है उसमें। और सर ये बता रहे थे उस तस्वीर के बारे में कि एक छोटा सा बच्चा है वो उस तस्वीर में, जो जिसको कब्र में दफनाया जा रहा है, उसका सिर्फ चेहरा दिख रहा है। और उस तस्वीर को उस समय BCO लोगों ने खींचा था, लेकिन जो सर की तस्वीर थी, रघुराय सर की तस्वीर थी, उसमें बच्चे के सिर पे एक फादर का हाथ भी है इंक्लूडेड। तो वो उस पूरी ट्रेजेडी को और इनहेंस करता हुआ
0: और
1: है,
0: वो दोनों ही जीवित नहीं है।
1: और दोनों ही जीवित नहीं है। यही एक तस्वीर ऐसी थी जिसने मुझे फोटोग्राफी की ओर प्रेरित किया था आने के लिए। इस तस्वीर को मैं कभी भुला नहीं पाया। मेरी अपनी खुद की जो तस्वीर है, देखिए मैंने आपको शुरू में बताया था मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूं, तो और वाइल्ड लाइफ में भी मेरा बाघों पे
0: अच्छा,
1: बहुत शौक।
0: जानवरों की फोटो कभी खराब क्यों नहीं आती?
1: उनके अंदर कोई ईगो नहीं होता इसलिए। लेकिन जो टाइगर होता है उसकी तस्वीरें मिलना थोड़ा कठिन होता है, और ख़ास तौर से चूंकि वो सॉलिटरी एनिमल होता है इसलिए कई सारे टाइगर्स की फ़ोटो एक साथ मिलना और भी कठिन होता है। तो ऐसी और मदर्स की बच्चों के साथ फ़ोटो मिलना बहुत ही कठिन होता है। ऐसी एक मेरी तस्वीर है जो मुझे बहुत प्रिय है, चूंकि वो अचानक से घटित हुई घटना, उसमें माँ अपने चारों बच्चों के साथ हमको एक एक फ्रेम के अंदर मिली थी। वो तस्वीर मेरे लिए हमेशा के लिए यादगार रहेगी।
0: तो सुष्मिता, देखा कैसा विवेक सिंह जी ने इतनी सारी जानकारियाँ दी, और हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारे साथी हैं, जो सुन रहे हैं, वो फोटोग्राफी की बारीकियों को उन्होंने समझा होगा, और कैसे वो इन तस्वीरों की याद को, इन तस्वीरों को अपने साथ लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, तस्वीरों के शौक को आगे लेकर के बढ़ सकते हैं, इसमें भी उन्हें मदद मिलेगी।
2: बिल्कुल। और मुझे लगता है अभिनव जी कि सिर्फ जो अभी तक वो थोड़ा सा अगर हिचकिचा भी रहे थे कि कैसे परस्यू करें, तो मुझे
0: बिल्कुल
2: लगता है सर ने काफ़ी क्लियरली बता दिया है कि आप रोज़ एक फ़ोटो खींचें, और
1: बिल्कुल
2: आपके हाथ में स्मार्टफोन है तो देर मत करें। अगर आपको इसको प्रोफेशनली भी परस्यू करना है तो बस लग जाएं उसके पीछे।
0: बिल्कुल लग जाएं उसके पीछे और रोज़ एक फ़ोटो खींचें, इसको अपनी आदत बना लें। और फ़ोटो सिर्फ खींचने के लिए ना खींचें, आप जैसा कि विवेक सर ने बताया कि आप उसके साथ अपनी भावनाएं भी जोड़ें, आप जो सोच रहे, जैसे कहते हैं कि खाने का जो स्वाद होता है वो कई दफ़ा खाने बनाने वाले की जो मनस्थिति होती है, जो मेंटेलिटी होती है, जो वो सोच रहा होता है, उस पर बहुत अधिक निर्भर करता है। यही चीज़ फोटोग्राफी के साथ भी है। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ, सुनते रहिएगा युवाणी, सुनते रहिएगा आकाशवाणी। विवेक सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी प्रयागराज के स्टूडियो में आने के लिए और इतनी बारीक जानकारियां फोटोग्राफी की देने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव जी, सुष्मिता जी धन्यवाद।
3: दोस्तों, अभी आपने सुनी बातचीत जिसका विषय था फोटोग्राफी, एक शौक, एक जुनून, एक करियर, आखिर क्या। अभिनव प्रज्ञ पांडे और सुष्मिता श्रीवास्तव के साथ विवेक सिंह की बातचीत। तो हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
5: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से, वाह,
6: फसा। अनजान ऐप से बचें।
7: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम के अगले सेगमेंट और खास सेगमेंट प्रेरणा पुंज की ओर।
8: 17 दिसंबर 1927 की वो सुबह जब गोंडा जेल का भारी लोहे का दरवाजा खड़खड़ाया, तो अंदर का नजारा देखकर जेलर के कदम वहीं थम गए। सामने फांसी के फंदे पर चढ़ने के लिए तैयार खड़ा 26 साल का एक नौजवान बेफिक्र होकर कसरत कर रहा था। चेहरे पर मौत का जरा भी खौफ नहीं, बल्कि

0: भारत माता को आजाद देखने का एक अनोखा और अटूट जुनून था।
1: ये कहानी है पंडित राजेंद्र नाथ लाहिड़ी की, एक ऐसा वीर सेनानी जिसने न केवल अंग्रेजों की हुकूमत की नींव हिला दी बल्कि फांसी के तख्ते को भी अपनी देशभक्ति के आगे छोटा साबित कर दिया।
0: वे केवल एक निडर क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि उच्च विचारों और अटूट अनुशासन के प्रतीक थे।
1: उनका जन्म 23 जून 1901 बंगाल प्रेसिडेंसी यानी वर्तमान के बांग्लादेश का पाबना जिला के मोहनपुर गांव में हुआ था।
0: उच्च शिक्षा के लिए वे वाराणसी

0: मिल सचिंद्र नाथ सन्याल और चंद्रशेखर आजाद जैसे महान क्रांतिकारियों से हुआ और वे रिपब्लिक हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA के प्रमुख रणनीतिकार बन गए।
1: सशस्त्र क्रांति के संचालन और हथियारों की खरीद के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। इसी उद्देश्य से 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने काकोरी में अंग्रेजों के खजाने को ले जा रही ट्रेन को रोकने की साहसिक योजना बनाई।
0: इस पूरी योजना में सबसे जोखिम भरा काम था चलती ट्रेन को समय पर रोकना। रामप्रसाद बिस्मिल को लहेड़ी जी की सटीकता और साहस पर पूरा भरोसा था। राजेंद्र नाथ लहेड़ी जी ने ही सबसे पहले ट्रेन की चेन खींचकर उसे रोका था, जिसके बाद काकोरी ट्रेन एक्शन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया।
1: मृत्यु को चुनौती देने वाला ऐतिहासिक क्षण काकोरी कांड के बाद अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की और लाहिड़ी जी पर मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई।
0: ब्रिटिश सरकार इस वीर सेनानी से इतनी भयभीत थी कि उसने तय तारीख यानी 19 दिसंबर का इंतजार भी नहीं किया। जेल तोड़ने या किसी जन विद्रोह के डर से अंग्रेजों ने निर्धारित समय से 2 दिन पहले यानी कि 17 दिसंबर 1927 को उत्तर प्रदेश की गोंडा जिला में उन्हें छिपाकर फांसी दे दी।
1: और मात्र 26 वर्ष के अल्पायु में राजेंद्र लाहिड़ी ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको राजेंद्र लाहिड़ी जी जो हमारे आज के प्रेरणा पुंज थे उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, उनके साहस से सीखने को मिला होगा।
0: और जैसा कि आज हम फोटोग्राफी दिवस भी मना रहे हैं और हमने इतनी बेहद खास बातचीत आपके लिए शामिल की थी जिसमें आपको इस प्रोफेशन के बारे में जानने को पता चला होगा, आपको ये भी एहसास हुआ होगा कि फोटोग्राफी एक शौक हो सकता है किसी के लिए लेकिन अपने आप में एक आर्ट फॉर्म है जिसके लिए टेक्निक्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है।
1: और टेक्नोलॉजी की मदद से ये और भी ज्यादा एनहांस हो गया और ये प्रोसेस और भी ज्यादा जल्दी हो गया है। क्योंकि जैसा कि पूजा तुम्हें याद ही होगा कि हम जब मतलब पुराने समय पहले के समय की बात करते हैं तो हमारे जो दादा दादी या नाना नानी है तो वो हमें बताते थे कि एक फोटो को आने में कितना टाइम लग जाता था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी और मोबाइल फोन्स के जरिए हमें वो फोटो तुरंत दिख जाती है, तुरंत मिल जाती है।
0: बिल्कुल, और हम बहुत सारी यादों को संजो भी लेते हैं। तो यही वजह है कि इसको इस बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए हम इस दिवस को भी मनाते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आज हमने जिन जिन विषयों को अपने कार्यक्रम में शामिल किया है आपके लिए बेहद सार्थक रहे होंगे।
1: बिल्कुल, तो अब हम चलते चलते अपने श्रोताओं को एक और गीत भी सुनवाही देते हैं।
0: बिल्कुल उन्नति।

0: तो श्रोताओं, हमें पूरी उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। जितने भी सेगमेंट्स हमने शामिल किए थे बेहद सार्थक आपको लगे होंगे। इसी के साथ आपको हम ये भी बता दें कि हमारे कार्यक्रम को लेकर जो भी फीडबैक आप हमें देना चाहते हैं आप हमें भेज सकते हैं। हमारा नंबर है
1: 8004926250।
0: हमारी ईमेल आईडी है
1: yuvvaniald@gmail.com।
0: इसी के साथ मुझे यानी पूजा यादव को,
1: मुझे यानी उन्नति को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।

0: अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी, प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की लागत वाली इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
2: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का थर्ड एंड फोर्थ लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोन बरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने की मंजूरी दी है।
2: बिहार में बहुत इम्पोर्टेंट आज हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर्स का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4 लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट इसमें हो। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
1: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। नई दिल्ली में आज उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में श्री वैष्णव ने कहा कि देश 6-8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि प्रौद्योगिकी, मीडिया, अर्थशास्त्र और लोकनीति की दुनिया तेजी से बदल रही है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भारतीय सूचना सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही।

0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में वर्ष 2025 से 27 बैच के भारतीय वन सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति आज दो दिन के दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में प्रश्नपत्र लीक जैसे मामले रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया है, जिसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए एक स्थायी तंत्र शामिल हो। न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सचिव को निर्देश दिया कि वे हलफनामा दाखिल करें, जिससे ये बताया जाए कि राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा नंदन नीलेकणी समिति द्वारा सुझाए गए आवश्यक संशोधनों को भी इसमें शामिल किया जाए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। श्री जोशी ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने की प्रधानमंत्री की पहल के कार्यान्वयन की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 312 हो गई है, जबकि 4611 लोग घायल हुए हैं और 290 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। नीदरलैंड्स में एफआईएच हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय के अनुसार अब से कुछ देर में शुरू होगा। भारत ने अब तक दो मैचों में 3 अंक हासिल किए हैं। बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारत की मिक्स डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को भी बाय मिली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम भी 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम। रात 9:30 दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है पंचायत घर में। शाम 6:30 ग्रामीण भाई रायचंद्रपाल और साथियों के स्वर में लोकगीतों के अलावा प्रोफेसर मिथिलेश त्रिपाठी से नीति वचन सुनेंगे। शाम 7:31 पर आप सुनेंगे गुरुदत्त पर आधारित किस्सा गोई। चित्रपट संगीत रात 8:00। शास्त्रीय संगीत में रात्रि 10:30 पर हम आपको प्रियंका मलिक का ख्याल गायन सुनवाएंगे। चित्रपट संगीत का समय जैसा कि मैंने बताया कि रात 8:00 और फिल्म संगीत रात 10:00। रात्रि 8:30 पर सबरस कार्यक्रम होगा। तो ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब कल के मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। कल शाम 4:00 संदेश टू सोल्जर्स। चर्चा का विषय है रात 9:30। दोनों ही कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृषि जगत में प्रातः 6:35 पर किसान भाई डॉक्टर मनबोध प्रसाद से सुरेश कुमार की बातचीत सुनेंगे। बातचीत का विषय होगा मृदा में जीवांश की महत्ता। प्रातः 6:45 पर रोज की तरह स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम होगा। इसमें आप डॉक्टर पारितोष मिश्र की वार्ता सुनेंगे बच्चों में मोबाइल एडिक्शन। श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ सुनवाएंगे सवेरे 7:00। लोकगीतों के कार्यक्रम में सवेरे 10:30 और शाम 6:30 पंचायत घर कार्यक्रम में कलाकार होंगे रामदेव और साथी। पंचायत घर कार्यक्रम में लोकगीतों के अलावा ग्रामीण भाई सुनेंगे किसान चर्चा। हिंदी

कार्यक्रम शाम 7:31 पर होगा। इसमें आपको सुनवाई जाएगी निशा यादव की कहानी। सवेरे 11:30 पर एक बार फिर सुनिएगा गुरुदत्त पर आधारित कार्यक्रम किस्सा गोई। शास्त्रीय संगीत में सवेरे 7:30 पर हम आपको विदुषी बागेश्वरी देवी का उपशास्त्रीय गायन सुनवाएंगे। दिन में 12:15 पर राम शंकर का ख्याल गायन और रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे सुब्रतो मुखर्जी का सितार वादन। हेलो फरमाइश, ये फोन इन कार्यक्रम आप सुन सकते हैं दिन में 12:30 पर। गृहलक्ष्मी में दिन में 1:15 होगा हेलो पनघट कार्यक्रम। इस फोन इन कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे महिलाओं के कानूनी अधिकार विषय पर एडवोकेट नाजिया नफीस से बातचीत। सुगम संगीत का आनंद लीजिएगा सवेरे 9:50 पर और रात 7:45। सवेरे की कलाकार होंगी मनीषा निरखी और रात 7:45 अरुण गुलवाणी के स्वर में गीत और भजन सुनिएगा। अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए अब सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सूचना। पहली सूचना है कोखराज थाना सैनी जनपद थाना मंजनपुर जनपद कौशाम्बी से। छोटे लाल सूचित करते हैं कि उनकी पुत्री कौशल्या देवी उम्र 22 वर्ष कद 5 फीट रंग गेहुआ चेहरा लंबा है बदन की बनावट एकहरी है। ये दिनांक 4 जुलाई 2026 से अपने निवास स्थान में सवेरे लगभग 8 बजे से लापता हैं। लापता होने के दिन इन्होंने सलवार सूट पहना हुआ है। इनके बारे में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर थाना मंझनपुर जनपद कौशाम्बी को सूचित करें। शिवदयाल सूचित करते हैं ग्राम बक्शी का पूरा थाना पश्चिम शरीरा जनपद कौशाम्बी से कि उनकी पत्नी सुनैना देवी उम्र 22 वर्ष कद 4 फीट 7 इंच रंग गेहुआ चेहरा लंबा है। ये दिनांक 8 जुलाई 2026 से शाम लगभग 7 बजे से अपने निवास स्थान ग्राम बक्शी का पूरा थाना पश्चिम शरीरा जनपद कौशाम्बी से लापता हैं। इनके बारे में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर थाना पश्चिम शरीरा को सूचित करें। संबंधित फोन नंबर कृपया नोट कर लें 6387031485।

काजल सरोज, पति का नाम है श्री संतोष सरोज, उम्र 22 वर्ष, कद 5 फीट 2 इंच, रंग सांवला, चेहरा गोल है। ये दिनांक 31 जुलाई 2026 से दिन में लगभग 1 बजे से अपने निवास स्थान ग्राम कान का पुरवा बेलहा थाना लालगंज जनपद

प्रतापगढ़ से लापता हैं। इनके बारे में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ को सूचित करें। संबंधित फोन नंबर कृपया नोट कर लें, 7991523819। ये सूचना है ग्राम भीटी कला थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ से। ओम प्रकाश सिंह पुत्र बाबूलाल सिंह सूचित करते हैं कि उनकी पत्नी श्रीमती संगम सिंह, उम्र 35 वर्ष, कद 5 फीट, रंग गोरा, चेहरा गोल है। ये दिनांक 25 जुलाई 2026 से दोपहर लगभग 12 बजे से अपने निवास स्थान थान ग्राम भीटी कला के पास से लापता हैं। लापता होने के दिन इन्होंने साड़ी पहनी हुई है। इनके बारे में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ को सूचित करें। संबंधित फोन नंबर कृपया नोट कर लें, 8200352282। खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सूचना अब समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए समूह स्वर में देशगान।

0: अभी आप समूह स्वर में देश गान सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार दिल्ली केंद्र से।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन 41,13,000 करोड़ रूप्यकाणां 5 परियोजनाः अनुमोदिताः, यत्र चतस्रः रेल परियोजनाः एका राजमार्ग परियोजना वर्तते। केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णवः असूचयत् यत् सर्वकारेण प्रतिवर्षं प्रायः 30,100 अर्बुद अमेरिकी डॉलर मितं सार्वजनिक निवेशः क्रियते, येन सततार्थिक विकासः संवृद्ध्यते। सर्वोच्च न्यायालयः नीट यूजी प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणात् परं परीक्षा परिष्कारे राधाकृष्णन समित्याः संस्तुतीनां क्रियान्वयनाय केन्द्र सर्वकारस्य प्रतिवचनम् ऐच्छत्। कोलंबिया देशे भीषण भूकंपेन मृतानां संख्या 12,300 यावत् प्रवर्धिता। अपि च भारतेन प्रथम निकष स्पर्धायां श्रीलंका दलं 65,100 धावनांकैः पराजितम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः अध्यक्षतायां समुपविष्टेन केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन अद्य 41,13,000 करोड़ रूप्यकाणां 5 प्रमुख परियोजनानां अनुमोदनं कृतम्।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस ऐतिहासिक थर्ड टर्म में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जो देश के लिए बुनियादी ढांचा है, देश के लिए एक फाउंडेशन है, वो प्रोजेक्ट्स 62 रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं, 38 हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं, 12 मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं। ये सारे के सारे स्ट्रेट अवे हमारे मिडिल क्लासेस और यूथ को बेनिफिट करने वाले प्रोजेक्ट्स हैं। इससे नई अपॉर्चुनिटीज बनेंगी।
1: एतासु चतस्रः रेल परियोजनाः एका च राजमार्ग परियोजना समाविष्टा अस्ति। नवदिल्ल्यां मन्त्रिमण्डल उपवेशनानन्तरं प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् केन्द्रीय सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः असूचयत् यत् रेल विभागस्य चतस्रः बहुमार्ग

0: पंचो राम
1: राम
0: राम
1: राम राम भैया, राम राम दिनेश भैया, और का हाल चाल बा हो?
0: हे सुरेमन, ये समझा ना,
1: हाँ हाँ,
0: कि दो दिन से दाऊ राजा का ऐसी कृपा बरसी,
1: हाँ हाँ,
0: कि का गांव का शहर
1: कहिया
0: चारा वोरी पानी पानी।
1: एहो दिनेश भैया, देखा ये तो बड़ा धनभाग वाली बात बताया हूँ कि दयु राजा हम सब देखा किसान भैया बहनिन बदे जौन है इतना प्रसन्न बा, इतना प्रसन्न बा कि भैया देखा चारी मोर देखा तो जल भरावे भराव, का देखा खेत, का देखा तालाब तलई पोखर नदी नाली नाला। हम तो ये समझे थे कि भैया देखा चारी वो जले जल हो।
0: भाई सुरेमन, देखा खेते में पानी बा, तालाब पोखरा में पानी बा,
1: हाँ हाँ
0: ये तो ठीक है बे।
1: हाँ
0: लेकिन ये बरसात जोन दो दिन भाई न,
1: हाँ हाँ
0: हम कहते कि गांव में घरे में,
1: कह गया
0: हाँ, रास्ता बिरस्ता चारा वो और पानी पानी,
1: हाँ हाँ
0: डोलब टहरब अपाड़ हो गए वह हो। हम कहते गोरू बछरू को उठब बैठब अपाड़ हो गए।
1: कह गया और साथ ही साथ एक बात और कहा वो कि देखा ही जम तरह देव राजा बरसा करत बा, और देखा आपन जौन है आकाश में देखा जौन तरह काले काले बादल बा मंडरात बा,
0: जी
1: तो ऐसे भैया देखा ई मनसा होत बा कि हम सब किसान भैया बहनी हरिन के बहुत सतर्क हो की जरूरत बा। काहे कि भैया देखा जौन तरह की बरसा बा, देखा घर से निकलो तो भैया देखा पानी ही पानी बा।

0: तो अपन चाहे पशु हो, देख प्राणी हो, चाहे खेत खलिहान हो, जौन ये वर्षा के जल बा तो एके निकासी बदे भैया देखा हम सब किसान भैया बहन इनका उचित प्रबंधन के बहुते जरूरत है वो।
1: भाई देखा, एक बात समझा सुरेमन ना,
0: हाँ
1: कि भाई पहली बात तो ये जाना कि जहाँ भी आबादी बा, जो उन गांव में घर गुवार बना है
0: हाँ
1: भैया,
0: हाँ
1: तो अब सरकार की ओर से तमाम योजनाएं आवत है
0: हाँ हाँ
1: कि घर बा तो रास्ता बा, सड़क बा, चाहे खड़ंजा बा,
0: कहेगा
1: साथे में नाली भी बने के चाहिए,
0: हाँ हाँ
1: जहिया से कि बरसात का पानी का निकास सुगमता से हो जाए।
0: कहेगा
1: और अगर नहीं पानी का निकास हो जाए तो फिर केहू के घरे में या रास्ता में पानी का जमाव ना हो।
0: कहेगा
1: और एक बात ये कि भाई देखा, एक कहावत होता है ना, कौनो चीज़ भी अगर ज़्यादा होए
0: हाँ
1: तो वो नुकसान ही करत।
0: कहेगा
1: खेते में भी धान एक फसल बा, धान भाई पानी का राजा होता है,
0: हाँ हाँ
1: लेकिन उतना ही होता है जितना के जरूरत बा।
0: हाँ
1: अब अगर पानी ज़्यादा हो गए, मेड़े के ऊपर हो गए, हाँ फसल डूब गए, तो ओमन भाई गले और सड़े के डर बना रहा था,
0: कहेगा और नुकसान हो
1: तो
0: जाता
1: नुकसान हो जाता। तो यूं स्थिति में अगर खेते में पानी ज़्यादा हो गए तो ओकर निकासी का भरपूर प्रबंध होए के चाहिए।
0: चाहिए।
1: अगर जल निकासी का प्रबंध रहे तो निश्चित बात कि भाई जनजीवन दोनों सुरक्षित रहे,
0: हाँ
1: और पानी की वजह से या बाढ़ की वजह से कोनो दिक्कत न आए।
0: कहेगा और जौन भैया देखा ये जौन गांव गिराव वाली बात बताया हो कि अपने गांव में घर घर के देखा, घर के अगल बगल जौन सरकार की तरह तरह योजना से बा देखा लाभ मिलत बा, और नाली नाला भैया देखा जौन बना बा, तो हम तो ये अपने किसान भैया बहनी हरिन से सबसे यही कहा कि भैया देखा अपन जौन घर के अगल बगल नाली नाला बा, वो नाली नाला का देखा बारिश के पहले भैया देखा ही चाहिए कि साफ सुथरा कर लें, कौनों तरह के वो में देखा कि जैसे कि घास फूस और साथे साथ कौनों भी तरह से वो नाली नाला में ऐसा कौनों चीज़ ना रहे कि जौन है कि नाली सट जाए और साथे साथ भैया देखा पानी के जौन निकासी वाली व्यवस्था वा वो बाधित हो।
1: मैं देखा सुरेमन, एक बात ये हो, कहूँ कहूँ ये देखे को होता ना
0: हाँ हाँ
1: कि भैया अरे का कहेंगे, नाली बनी वे वही को ऊपर से रास्ता बना लें,
0: हाँ हाँ
1: हाँ और नाली भट गए,
0: हाँ
1: अब पानी के निकास कैसे हुए, पानी जाहिर बा के ऊपर ऊपर बहे।
0: कहेगा
1: तो ये हमार तोहार जिम्मेदारी बा कि जोन नाली सरकार की ओर से बनाई गई बा, निकास का पानी निकास का जोन रास्ता बनावा बना बा, ओपे कोनो रुकावट न पैदा करी,
0: हाँ
1: बल्कि ओके देख रेख, ओके साफ सफाई करत रही, जहिया से कि बरसात का पानी आराम से
0: हाँ
1: तालाब में या खाली जगह पे चला जाए
0: हाँ
1: और केहू के रह सहाय में कोनो परेशानी न होए।
0: ये तो बहुत नेक बात बताया हो भैया दिनेश, और साथे साथ हमरे मन में एक बात और ही बात कि
1: बता
0: भैया
1: जा।
0: देखा सरकार तो अपन तरह तरह की योजना से हम सब किसान भैया बहनी हरिन का तो लाभ मिलता है बा, मोला भैया देखा हम सब के कर्तव्य बा कि भैया देखा अपने गांव गिराव के अगल बगल जैसे तालाब है, तलरी है, पोखर है, भैया जौन तरीका से तो वहाँ में कोनो तरह के भैया गंदगी ना होए के चाहिए, साफ सुथरा रखें ताकि जौन वर्षा के जलवा एकत्रित हो इकट्ठा होए तो के वजह से अपन साल भर भैया देखा ये जल सुरक्षित रहे, साफ सुथरा रहे, अपन भैया देखा पशुओं भी अपन पीवत हैं, साथे साथ भैया टेम टेम से हम सब किसान भैया बहनी इनका जरूरत पड़त बा तो अपन वर्षा के जल सुरक्षित रखें और साथे साथ साफ सुथरा भी रखें।
1: भाई बात तो खैर से बहुत पते की कह हो सुरेमन भैया, देखा अगर वर्षा का जल सुरक्षित रहा है, एक जगह इकट्ठा रहा है,
0: हाँ
1: तो समय पे सिंचाई पताई का भी काम देत है।
0: हाँ हाँ
1: लेकिन कहूँ कहूँ ये देखे के मिलत है कि जोन तालाब पोखरा बा,
0: हाँ
1: हाँ वही के भैया भाट के कब हमें घर बनवे लागत थी, खेती करे लागत थी,
0: हाँ हाँ
1: तो ये सब तो काम अपने लिए नुकसान ही करे थे भैया जी।
0: हाँ ये तो नुकसान
1: हम
0: बा
1: कहते जोन तालाब भी बाट खेत गाँव में हैं, उनके साफ सफाई अगर वो कुछ भटान पे होत बे तो ओकर खुदाई उदाई के भी व्यवस्था जोन गांव के वो भाई
0: हाँ हाँ
1: सरपंच है, पंचायत है, ओकरे माध्यम से या श्रमदान के माध्यम से करही, तो
0: हाँ
1: निश्चित बा कि वो हमरे तुहार लाभ हुए।
0: कहिए और साथे साथ एक यह हुआ कि आपन जैसे भी जितना गांव गिराव में तालाब तलरी बा जितना ज़्यादा से ज़्यादा होए उतने भैया देखा लाभ बा, काहे
1: बिल्कुल
0: कि
1: बिल्कुल

0: वर्षा के टाइम में जौन जल भराव हुए ओके वजह से भाई देखा, चाहे अपन हैंडपम्प हुए, चाहे अपन कुआँ हुए, चाहे भी भैया देखा और भी अपने सिंचाई के साधन की जौन व्यवस्था बा सिंचाई पताई में भी, अपन जौन धरती के जौन जल की जब स्तर बा स्तर बढ़िया बना रहा है, स्तर में जल जल के स्तर में कोनो तरह की कमी ना आवे पावे, इस वजह से हम सबका किसान भैया बहनी हरिन का भैया इसे सतर्क रहें और अपन वर्षा के जल का जो उन्हें जल एकत्रित करके प्रबंधन जरूर।
1: एक बात सुरेमन भैया और कहे है कि जब बरसात ज़्यादा हो था कहूँ कहूँ
0: हाँ
1: तो होते ही कि कुआं का पानी ऊपर भाई लागत
0: हाँ,
1: जो उन खुला कुआं है
0: हाँ
1: हमन खर पतवार परत ब परत ब तो पानी दूषित होए के डर रहा था।
0: हाँ
1: और अगर दूषित पानी चाहे मनई पिए चाहे जानवर पिए सबके नुकसान करत था, बीमारी पैदा करत। ऐसी स्थिति में भैया हरण के चाहे कि अगर खुला कुआं बा तो ओमे अगर कोनो खर कतवार बा तो ओका छान के बाहर कह दें और भाई पानी दूषित ना हो पावे, पानी शुद्ध रहा है। ओकरे लिए हम कहे थे कि भैया विकास खंड में जो जानकार भैया हरे हैं ना और वो ओकर दवाई दे थी, ओकर ले आए के कुआं में डाल दे ही तो पानी कुआं का सुरक्षित रहे और उसे केहू का नुकसान और कोनो बीमारी होए के डर न रहे।
0: ये तो बहुत नीक बात बताया हो भैया,
1: तो
0: हम कहे कि अपन किसान भैया बहनी जरूर ध्यान दें और अपना भैया ब्लॉक में जाएं और अपन ये जानकारी लें और इसके लाभ उठाएं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अब देखा एक बात और सुरेमन भैया,
0: हाँ हो भैया,
1: आज देखा बुधवार का दिन बना तो भैया रंग का नीत वचन भी सुनवावा जाए।
0: अच्छा,
1: हाँ हमार मन कहत रहा कुछ गीत गाओ नहीं सुनवाता तो कुछ मन हरियर हो।
0: हाँ वो दिनेश भैया देखा अपन किसान भैया बहनी भी जोहत हुई हैं, सोचा तो हैं कि ढोल मजीरा का जो उन्हें कुछ देर सवेर जो उन्हें ठनकी का तो पहले भैया देखा रायचंद पाल और संघातिन के गाय एक छपरहिया बा, वो किसानों भैया बहनी ने सुने तो हाँ सुना
1: सुना
0: हाँ हाँ तो सुने।

0: हाँ
1: सुरेमन भैया,
0: दिनेश भैया।
1: देखा हो गीत गौनो ही तो हो गए श्री रायचंद पाल उनके संघाती का।
0: हाँ
1: हम कहीं तक तो भाई देखा कि अपने देश के प्रति हर विधा में लोग समर्पित हैं,
0: हाँ हाँ
1: चाहे गीत हो, चाहे कविता हो, चाहे कहानी हो।
0: कहिए
1: तो यही अपने देश का सम्मान है, यही अपने देश का मान भाव।
0: कहिए।
1: और एक साथ एक बात ही समझा भैया कि अगर देश के विकास करे के बाद समाज के विकास करे के बाद
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: एकजुट होय के, एकमत होय के रहब जरूरी बा, और एकमत होय के अपने देश का, अपने समाज का सम्मान करब जरूरी बा। अब देखा आज जो नीत वचन के बात होत रही ना, तो हम कहते हैं नीत वचन भैया रंग सुनवावा।
0: हाँ दिनेश भैया, देखा अपने नीत वचन के माध्यम से जौन बा आपन जौन है किसान भैया बहनी हर तरह तरह की ज्ञान की बात सुना थे मैं, अपने जीवन में अमल ले थे मैं।
1: हाँ।
0: तो आज अपने पंचायती में आप किसान भैया बहनी का प्रोफेसर मिथिलेश तिवारी के जौन नीत वचन बा,
1: हाँ।
0: तो किसान भैया बहनी हर का सुनवाए दिया जाए, तो आगे बात बत कही।
1: बिल्कुल बिल्कुल सुना दे।
0: हाँ हाँ तो सुने।
2: संपूर्ण हिंदी साहित्य में नीति वचनों को कवियों ने अपनी काव्य साधना में प्रमुख स्थान प्रदान किया है। कहीं कहीं तो सीधे सीधे नैतिक उपदेश परक छंद लिखे हैं, तो अनेक स्थानों पर उन्हें अनुभूति का विषय बनाकर रसात्मक भाषा में अभिव्यंजित किया है। हिंदी साहित्य के चारों कालखंडों से संबंधित विविध काव्य धाराओं में जीवन गति से संबंधित जो पथ निर्देशन किए गए हैं, उनमें से कुछ प्रमुख कथन इस प्रकार हैं। पृथ्वी पर एक कोशीय अमीबा से सुदूर अतीत काल में जिस सृष्ट जीवन ने जन्म लिया था, उसका चरम विकसित रूप है असीम शक्ति क्षमताओं से भरा हुआ मानव शरीर। मानव शरीर बड़े भाग्य से मिलता है, देव योनि तक के लिए भी यह शरीर दुर्लभ है। ऐसे शरीर को विषय वासनाओं के मलिन दलदल में फंसा कर नष्ट कर देने वाला व्यक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी की दृष्टि में घोर निंदनीय है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जेहि परलोक सुधारा, सो परत्र

दुख पावै सिर धुनि धुनि पछिताय, कालहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने इस अनुभूत सत्य को दृढ़ता के साथ स्थापित किया है कि सृष्टि में किसी भी योनि के किसी भी प्राणी का शरीर नर शरीर को समान उत्कृष्ट नहीं है। नर तन सम नहीं कौन्यु देही, जीव चराचर जाचत जेही। उनकी अंतर्दृष्टि में पंच तत्वों के सम्मेल से विनिर्मित शरीर तब तक अधम होता है जब तक उसमें प्राण चेतना की धारा नहीं बह रही होती। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, तथा जीव बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसई नाथ पुरुष बिनु नारी। प्राण चेतना से युक्त शरीरों में मानव शरीर अर्थात मानव जीवन भगवान को विशेष प्रिय है। ऐसा इसलिए कि तपस साधना द्वारा उसे साध कर जो अनिर्वचनीय शक्ति क्षमता प्राप्त की जाती है उसके द्वारा साधक असंभव से प्रतीत होने वाले कार्यों को भी संभव कर दिखाता है। तपस्या की महिमा का बखान करते हुए गोस्वामी जी ने लिखा है, तप अधीन सब सृष्टि भवानी तथा तपते अगम न कछु संसारा। प्रबल प्रारब्ध के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले मानव शरीर के अंदर बीज रूप में सुप्त पड़ी हुई शक्तियों को जगाने के लिए नीतिकारों ने अनेक प्रकार के करणीय एवं वर्जनीय आचरणों को स्वभाव का अंग बनाने का आह्वान किया है। इन आचरणों में सबसे प्रमुख आचरण है मनोनिग्रह। श्रीमद् भगवद गीता में मन को बंधन और मोक्ष का कारण बताया गया है। मन एव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो। गुरु गोरखनाथ जी ने मन को साक्षात शक्ति और शिव बताते हुए उसे उन्मनी दशा से युक्त करके त्रिलोक ज्ञाता बनने की प्रेरणा प्रदान की है। यह मन शक्ति, यह मन शिव, यह मन पांच तत्व कर जीव, यह मन ले जो उन्मन रहे वह तीन लोक की बाता कहे। सिद्ध साहित्य में ऐसा उल्लेख है कि मन बुद्धि एवं अहंकार की वृत्तियों के विनष्ट होने पर ही मायामय संसार का परम फल प्राप्त होता है। बुद्धि विनाशय मण मरय जय टुट्टय अहिमाण, सो मायामय परम फल सो किन बद्धय झाड़। हिंदी साहित्य में उल्लिखित नीतिपरक कविताओं में वे सभी सदुपदेश विद्यमान हैं जो व्यष्टि से लेकर समष्टि तक के जीवन को समुचित दशा एवं दिशा का ज्ञान कराते हैं। घाघ कवि ने मानव मात्र के सर्वांग स्वास्थ्य हेतु उषा पान का निर्देश करते हुए कहा है, प्रात काल खटियाते उठ के पियो तुरंत ही पानी, वैद घर में झांक न आवे बात घाघ की मानी। सुखी जीवन के लिए उन्होंने कम और गम खाना नितांत आवश्यक बताया है। ज्यादा खाए जल्द मर जाए, सुखी रहे जो थोड़ा खाए, रहे निरोगी जो कम खाए, बिगड़े काम न जो गम खाए। बारहों महीने दिन में शयन के प्रेमी लोगों को केवल जेठ महीने में दिवा शयन करने की सलाह देते हुए उन्होंने कहा है, जेठ माह जो दिन में सोवे ताको ज्वर आषाढ़ में रोवे। आज के घोर भौतिकवादी युग में जबकि संयुक्त परिवार तेजी से टूट रहे हैं, तब भोजपुरी के प्रख्यात कवि स्वर्गीय चंद्रशेखर मिश्र के ये नीति निर्देश प्रत्येक मानव के लिए धारणीय एवं पालनीय होने चाहिए। भूई असमाई असमान यस बाप रहे, भय हरे भाई मन विमल विचार द, बस में सपूत रहे बल में अकूत रहे, शस्त्र और शास्त्र दुनहूं के जानकार द, बाप के पगरिया जे ऊंची राखे सभवा में, बेटी यस बेटी दुनू कुल उजियार द, जवने के देख देख देवता तरस जाला, जिनगी जदत नाथ अस परिवार द, दूध बदे पूत रहे पूत बदे दूध रहे, छोट बड़ जस रहे तैसन दुलार द, गाई यस माई रहे माई यस गाई रहे, ऊपरा से सरग जमीन पे उतार द, पानी यस सासु रहे मछरी पतोहु रहे, गंगा यस निर्मल मन में विचार द, जवने के देख देख देवता तरस जाला, जिनगी जदत नाथ अस परिवार द। क्षुद्र वासना को उद्दीप्त करने वाले कृत्रिम सौंदर्य के विरुद्ध लौहवत कठोर हृदय को पिघला देने वाले सात्विक सौंदर्य को ही वास्तविक सौंदर्य बताते हुए जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, है यही सौंदर्य में सुषमा बड़ी, लौह ही को आँच उसकी है कड़ी। इसकी पुष्टि उन्होंने इन शब्दों में की है।

सौंदर्य सुधा बलिहारी चुगता चकोर अंगारे। प्रसाद जी की दृष्टि में सौंदर्य चेतना का उज्जवल वरदान है, उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं। गोस्वामी जी की आंखों ने श्री राम में ऐसा ही सौंदर्य देखा था जिसके सन्मुख होते ही हिंसा जीवी खर दूषण की हिंसा वृत्ति नष्ट हो गई थी। उस समय उसने कहा था, यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, बध लायक नहीं पुरुष अनुपा। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रख्यात कवि श्री रामवरण त्रिपाठी जी ने अपने युग

उस समय उसने कहा था, यद्यपि भगिनी कीन्ह कुरूपा, बध लायक नहीं पुरुष अनुपा। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रख्यात कवि श्री रामवरण त्रिपाठी जी ने अपने युग दर्शन नामक दोहा काव्य में ईर्ष्यालु व्यक्ति के विनाश का कारण उसकी स्वयं की ईर्ष्या बताया है। यथा जिसमें पर संताप है भीतर भीषण आग, जलकर राख स्वयं हुआ पर को धुआं न लाग। बाह्य सौंदर्य के आकर्षण से आकर्षित होकर की जाने वाली मित्रता को घातक बताते हुए उन्होंने लिखा है, बाह्याकर्षण से कभी मैत्री करो न भूल, अभ्यंतर जाने बिना हो सकता प्रतिकूल। उनके अनुसार समान भाव दशा वाले व्यक्तियों के बीच होने वाली मित्रता ही वास्तविक मित्रता होती है। हृदय हृदय से जब मिले तभी मित्रता जान, बिना हृदय के मेल से मैत्री बैर समान। उनका मानना है कि आज के आडंबर प्रधान युग में असली और नकली के अंतर को पहचानना कठिन हो गया है। कौन भला है या बुरा, कैसे हो पहचान, लौकी तितलौकी लता लगती एक समान। तारुण्य काल को प्रमाद में नष्ट कर देने वाले मनुष्यों के वार्धक्य काल की दुर्दशा को सीख सुहानी नामक काव्य ग्रंथ में लक्षित करते हुए लिखा गया है, तारुण्य निशा अधियारी पाकर जो सोया करते, वार्धक्य काल में वे ही हैं दर दर दुखित भटकते। इसके विपरीत तारुण्य काल में अपना सुविवेक बचा जो रखता, वह जीवन का रस अमृत जीवन भर पीता रहता। शंकाल प्रवृत्ति के व्यक्तियों की दुर्दशा को इंकित करके शंका से दूर रहने का सुंदर संदेश सीख सुहानी ग्रंथ में ही इस प्रकार से व्यक्त हुआ है, शंका का भूत भयानक जिस भी दिमाग में घुसता, उसकी सारी संरचना को तहस नहस है करता। सुखमय जीवन के लिए लालच का त्याग कर अपनी परिस्थिति में ही संतुष्ट रहने की शिक्षा संत कबीर दास जी की निम्न पंक्तियों में व्यंजित हुई है, रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीव, देख पराई चूपड़ी मत ललचाओ जीव। कबीर ने ही कहा है कि गुरु का स्वभाव कुंभकार की भांति होना चाहिए, जो घट निर्माण के समय अपने एक हाथ को अंदर रखता है और दूसरे से बाह्य भाग पर चोट करता है। गुरु कुम्हार शिशु कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहारा दे बाहर बाहे चोट। साथ ही तुलसीदास जी ने उन गुरुओं की घोर निंदा की है जो शिष्य के धन को हरण कर लेते हैं और उनके शोक का हरण नहीं करते। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। कुसंगत के दुष्प्रभाव में आकर विनष्ट हो रही वर्तमान युवा पीढ़ी के लिए उनकी यह चौपाई संजीवनी स्वरूप है, को न कुसंगति पाई नसाई, रहय न नीच मते चतुराई। मित्रता नामक निबंध में आचार्य शुक्ल ने कुसंगति को जीवन विकास के लिए अत्यंत घातक मानते हुए लिखा है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। जहाँ कुसंगत के प्रभाव से सामान्य जनों के विनष्ट होने की बात नीतिपरक कविताओं और वचनों में कही गई है, वहीं सत्संगत के सत्प्रभावों को महिमान्वित भी किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार षठ प्रकृति के व्यक्ति भी सत्संग से सुधर जाते हैं। षठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। कबीर रहीमदास जी ने उत्तम प्रकृति के मनुष्यों को चंदन तर से उपमित करते हुए लिखा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विश्वव्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। अधम प्रकृति के व्यक्ति जिन्हें गोस्वामी जी ने खल के समकक्ष रखा है, कभी विश्वसनीय नहीं हो सकते, ऐसा प्रमुखता से लिखा है। नवन नीच कै अति दुखदाई, जिम अंकुश धन उरग बिलाई। खलों की विनम्रता की उपमा गोस्वामी जी ने बिच्छू से दी है, कुटिल अगर झुक के मिले लक्षण अशुभ दिखाए, वक्र डंक बीछी रहे डसत सीध हो जाए। कुटिलों को सरल व्यक्ति की सरलता में भी कुटिलता दिखाई देती है, यथा चले जोक जिम वक्र गति यद्यपि सलिल समान। गोस्वामी जी ने खल को सन आही मूषक कुठार आदि से उपमित करते हुए उनसे उदासीन रहने का उपदेश इन पंक्तियों में दिया है, कवि कोविद गावहि असनीति, खल सन कलह न भल नहीं प्रीति, उदासीन नित रही गोसाई, खल परिहरी स्वान की नाई। मानव मात्र को कायरता का परित्याग करके स्मरणीय
मौत मरने का

0: उपदेश मैथिली शरण गुप्त ने मनुष्यता शीर्षक कविता में विस्तार से दिया है। यथा विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यों मरो जो याद हो करें सभी। न केवल मानव जीवन अपितु संपूर्ण सृष्टि जीवन ही प्रेम पर आधारित है। हिंदी साहित्य में प्रायः सभी काव्यधारा के कवियों ने अपने अनुभवों के आधार पर प्रेम को विश्लेषित किया है। भिन्न भिन्न मनस्थित के बीच उसे भिन्न भिन्न प्रकार से लक्षित करते हुए उसके क्रियाकलापों, प्रभावों और परिणामों को रूपायित किया गया है। प्रेम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली रूप है दाम्पत्य प्रेम। इस प्रेम के मूल में होता है यौवनाकर्षण। यौवन के प्रबल आकर्षण से जब पुरुष के अंदर नारी के प्रति प्रथम प्रथम प्रेम जगता है और वह प्रेम उन्माद की दशा में पहुंच जाता है तो पुरुष अपनी ही आंखों के सामने अपना सर्वस्व लुटा बैठता है। इस यथार्थ को विस्तार से विश्लेषित करते हुए दिनकर जी ने उर्वशी नामक ग्रंथ में लिखा है, इसमें क्या आश्चर्य, प्रीति जब प्रथम प्रथम जगती है, दुर्लभ स्वप्न समान रम्य नारी नर को लगती है।
1: हाँ,
2: देखा हो सुरेमन, प्रोफेसर मिथिलेश तिवारी भैया कितना नीत के वचन में,
1: हाँ,
2: कितना ज्ञान के बाद बताए
1: कह
2: कि मनुष्य को कैसे संगत कुसंगत से बचे के चाही, कुसंगत का का दुष्प्रभाव हो था, संगत का का लाभ हो था।
1: हाँ, हाँ, ये तो बहुत नीक बात बताएं भैया। अब हम सब किसान भैया बहनी हरिन देखा नीत वचन से सुनें गुने और एक जीवन में अमल करें, लाभ उठावें।
2: बिल्कुल।
1: और साथे साथ भैया दिनेश, हम तो यह कहब हो कि भैया देखा खेती किसानी में ये टेम अपन जैसे कि धान की फसल बा, तो किसान भैया बहनी हरिन के अपन धान के फसल में ये टेम जैसे कि जल वर्षा होत बा, बाढ़ आवत है, बहुत ऐसी जगह बा कि खेती किसानी में देखा बहुत से फसल नष्ट हो जाते हैं और अपन धान के भी फसल जो है बहुत जगह नष्ट हो के संभावना बा। तो किसान भैया बहनी हरिन का भैया देखा सरकार की ओर से तरह तरह की योजना के लाभ मिलत है, तो वह है मैं एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बा, यहाँ से लाभ मिलत है।
2: भाई देखा सुरेमन, एक कहावत है न,
1: हाँ,
2: कि किसान बिना बोए नहीं रहत,
1: हाँ हाँ,
2: बिना काटे संतोष कह ले
1: कह
2: गया। कोनो दुर्दत आपदा आए गए,
1: हाँ हाँ,
2: कोनो गति दुर्गति हो गए,
1: हाँ,
2: भले फसल नष्ट हो जाए, भले सूखा पड़ जाए, लेकिन किसान का पूरा प्रयास रहा था कि अगर धान का समय बा,
1: हाँ,
2: तो धान लगावे के,
1: हाँ,
2: गेहूं का समय बा, गेहूं को बुवाई जरूर करत।
1: अब
2: जोन ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बा, ऐसे तो किसान भैया हरंग के बहुत ही लाभ बा हो।
1: हाँ,
2: हम कहते कि ये जोन बा न कि फसल बीमा योजना में प्राकृतिक आपदा, ओला वृष्टि,
1: हाँ,
2: बाढ़, सूखा,
1: यह
2: तरह का अगर कोनो भी कारण भवा जोने, हाँ, से कि फसल नष्ट हो गए, ओके ज़्यादा से ज़्यादा भाग उत्पादन रहित हो गए,
1: हाँ,
2: हाँ, तो ओकर भाई सरकार की ओर से जो भी भैया हरे बीमा कराए हैं, हाँ, ओकर भरपाई के लिए सरकार व्यवस्था करत।
1: ये तो बहुत
2: और सबसे सबसे अच्छी बात सुरेमन ये बना कि एकरे बीमा के लिए सरकार बहुत कम कम से कम मात्रा में किसान से किस्त लेत है,
1: हाँ,
2: हाँ, बीमा का जो भुगतान होत है,
1: हाँ,
2: बीमा के एक तरह से मूल्य समझ ले,
1: हाँ, हाँ,
2: तो वो बहुत कम बा।
1: अच्छा।
2: तो हम कहते कि कम जैसे खेती में लागत लागत में वैसे थोड़ा सा लागत बीमा में, ऐसे
1: हाँ,
2: का होता है कि भाई किसान का भविष्य सुरक्षित रहत।
1: तो
2: अगर कोनो भी आपदा आए गए जैसे देखे बरसात हो तो वह कहूँ कहूँ बाढ़ आए गए,
1: हाँ, हाँ,
2: अक्सर देखे के मिलत रहा था कि फला जगह बाढ़ आए गए, गाँव बह गवा, खेत फसल बह गए, तो ऐसी दशा में ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानन के लिए बहुत ही सहायक बा हो, एकदम संजीवनी समझा।
1: और ये दिनेश भैया, अब देखा कि जोन योजना बा, ये योजना का आपन किसान भैया बहनी हरिन आपन जैसे खेती किसानी के जोन विशेषज्ञ भैया हैं और साथे साथ अपन ब्लॉक स्तर में भी, और देखा अपने नज़दीकी जोन ग्रामीण बैंक बा, हाँ, वहाँ से भी जानकारी लेके और अपन जो भी किस्त हो उचित जोन भी अपन सरकार की ओर से जोन दे धनराशि होए।

0: ओकर अपन जमा कर लें, अपन तौर तरीका से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ जरूर उठाएं।
1: हम कहे तो भैया एक बात और है, आजकल तो भाई देखा विज्ञान का युग बा ना।
0: हाँ हाँ
1: हाँ, तो भैया देखा एक राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल बा,
0: हाँ हाँ
1: यहू पे इस पे सारी जानकारी बा।
0: कहिए।
1: हाँ, कि कितना कौन फसल के लिए कितना किस्त बा, कौन फसल के लिए कब कितना मुआवजा मिले,
0: हाँ
1: कितने
0: हाँ
1: खेत का फसल बा तो कितना मिले,
0: हाँ
1: सारी जानकारी वह पर मिल जाए भैया रन के। और
0: हाँ
1: एक बात ये जाना कि सबसे अच्छी बात यह है कि बुआई से लई के कटाई तक का फसल का बीमा के व्यवस्था बा।
0: ये तो बहुत नेक बात
1: ऐसा
0: बताए
1: नहीं
0: हो।
1: है भैया कि बीच में कोनो समय के लिए बा,
0: यानी किसान भैया बहनी है ना, अपन जौन भी फसल के बुआई से लेके
1: कटाई तक,
0: कटाई तक।
1: जैसे कबो को हो तो का कि बुआई तो हो गई,
0: हाँ हाँ
1: अचानक बरसात हो गई, ज़्यादा बरसात हो गई, 2-4 दिन खेते में पानी रहा, जम्बे नहीं बुआ। तो ऐसी दशा में जो नुकसान किसान का बुआ, खाद का, जुताई का, बिया का,
0: हाँ
1: हाँ, ओकर मुआवजा सरकार बीमा योजना के तहत दे।
0: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात बताया हो दिनेश भैया।
1: तो यह तरह से हम कहते हो कि भैया जो सरकार की ओर से योजना जो भी चलाई जाते हैं,
0: हाँ
1: हाँ, नज़दीकी विकास खंड बा, किसी सहायक भैया हरे हैं, उनसे मिल के जानकारी ले के ओकर लाभ उठे ही तो निश्चित बा कि लाभ होए।
0: कहेगा। और एक बात और है हो,
1: हाँ
0: वो
1: बताओ।
0: ई बा कि जैसे कि अपन किसान भैया बहनी हरिन के जौन भी फसल में कोनो तरह के नुकसान होत है, चाहे बाढ़ आपदा से हो, चाहे भैया देखा कोनो तरह के फसल में आग लग जात हवे, वहाँ से भी अपन फसल नुकसान हो जात है।
1: जी जी
0: किसान भैया बहनी ने अपन बुआई कहीं और वह जौन है बीज है ठीक से ना जौन है उगा हो, तो वहाँ से नुकसान। तो यानी जौन भी समस्या होए, आपन भैया देखा अपने नुकसान से 72 घंटे के भीतर भैया देखा आए तो जौन अपन जौन कृषि विभाग हुए वहाँ अपन जाए के जानकारी दे सकत हैं।
1: बिल्कुल।
0: साथे साथ जौन अपन या नुकसान वाला जौन पोर्टल ऐप बा वहाँ में अपन दर्ज कराए सकत हैं। और
1: बिल्कुल।
0: एक बात और हो, जैसे कि अपन किसान भैया बहनी हरिन बहुत से कम जानकार बा, तो अपन जौन नज़दीकी जौन सहज केंद्र नहीं होता है
1: हाँ हाँ
0: जगह जगह, वहाँ भी जाए के अपन वहाँ से मदद लेके भैया देखा अपन जौन समस्या बा वहाँ का जौन है पोर्टल पर दर्ज कराए सकते।
1: ये बात एकदम सही सुरेमन भैया। देखा एक बात ये है ना
0: हाँ
1: कि जब मनई करे चाहे तो उसका रास्ता मिल जाए।
0: कहियो
1: अब घरे बैठे रहा, हाथे पे हाथ धरे रहा, तब तो फिर रास्ता मिले ना।
0: ना।
1: काहे का मतलब ये है कि भाई सरकार योजना बना दे तो उसका क्रियान्वित कर दे,
0: हाँ
1: अब
0: हाँ
1: उसका लाभ ले के लिए हाथ पाँव चलाए पड़ी।
0: कहियो।
1: एक बात, दूसर बात, एक बात ये काहे का रहा सुरेमन भैया,
0: हाँ हाँ बतावा हो।
1: देखा हो सावन का महीना में
0: हाँ हाँ
1: और कजरी नहीं सुनाया।
0: ए हो दिनेश भैया, हम तो कही देखा भैया अपन जौन इ टेम अपन बरसों भी भैया देखा झमाझम होत बा,
1: हाँ
0: और साथे साथ भैया देखा ई जौन महीना बा
1: हाँ
0: भैया देखा अपन ई सावन के महीना तो आवे बा, और
1: हाँ
0: देखा एमा जौन है अपन गाँव में भैया बहनी हरिन भैया देखा जौन तरह के झूला पड़त बा
1: जी जी
0: भैया अपन गीत गौनई होत है भैया कजरी जौन है, तो भैया ई महीना में तो सुने में बहुत ही आनंद आवत है। तो किसान भैया बहनी हरिन भैया देखा मन में सोचत हुई हैं का आज जौन है पंचायती में कजरी न सुनवावा जाए का हो, तो हम भैया देखा आज जौन है आज रागनी चंद्रा की जौन है गाई कजरी बा,
1: जी
0: तो
1: जी
0: किसान भैया बहनी हरिन इनका सुनवाए दिहल जाए हो, तो
1: सुना
0: आगे
1: दे
0: बात बात कही होए।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: हाँ हाँ तो सुने।

0: हाँ सुरमन
1: हाँ
0: भैया देखा, गौनाई तो हो ही गई हो,
1: हाँ
0: बहिनी रागिनी चंद्रा का
1: हाँ
0: कजरी बढ़िया सुनवाया हो, एक पात
1: वो
0: देखा मौस, हर चीज मौसम मौसम से अच्छा लागत
1: कह
0: हो।
1: गया मन देखा बाप प्रसन्न बा हरियर हो गया वो।
0: भाई देखा जैसे रंगना होली में, पड़ाका दिवाली में, वैसे कजरी सावन में। तो हम कही थे कि भाई देखा गीत गौनाई हो गई, एक पात पंचन से ही कहे के बाद
1: हाँ हो दिनेश
0: कि
1: भैया
0: भाई देखा वर्षा ऋतु में जहाँ पानी का बाढ़ और रास्ता बिरस्ता ये सब का दिक्कत रहा था,
1: हाँ
0: वहीं एक बात यह हो तो भैया कि आपन खान पान पर भी भैया हरंग का ध्यान दे के चाहिए।
1: कहिएगा।
0: और खान पान में ये भैया कि देखा सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है कि पानी पानी का शुद्ध हो,
1: हाँ
0: बरसात में पानी का प्रदूषित होए के संभावना ज़्यादा रहा था,
1: कहिएगा
0: क्योंकि
1: हो
0: बरसात का पानी कहाँ भाव फूटा, जहाँ हैंडपम्प बा वहाँ भी हो जाता है, जहाँ भाई देखा वो टंकी वाला पानी सब आवत है उहू में कहूँ टंकी में वो पाइप में लीक हो, भाई तो बरसात का पानी गए तो बहुत प्रदूषित हो ही सकत है। तो ऐसे में भैया अरे बरसात में ये के संभावना ज़्यादा होत है, तो चाहे ये भैया हरन के कि भाई देखा पानी के थोड़ा सा छान के और अगर संभव हो तो उबाल के धई दें, ठंडा हो जाए फिर पिए।
1: ये तो बहुत नेक
0: हाँ
1: बात बताया हो
0: और
1: दिनेश
0: बर्फ
1: भैया।
0: वरफ के पानी से तो पूरा परहेज करें, नहीं तो फिर समझा कि वो सर्दी जुकाम बुखार की संभावना बढ़ जाए।
1: कहिएगा
0: ई सावधानी अपनों वे बरतें और जो गोरु बछरू पाले हैं उन्हों वे बरतें, और
1: हाँ
0: जोन भाई नवजात शिशु हैं जो दूध दे वाले पशु हैं उनके लिए तो विशेष सावधानी बरतें कि भाई बरसात में उनका झूरे कहूँ बैठे के रहे के जगह बनावें,
1: कहिएगा।
0: कीचा काची में न खड़ा हो, नहीं तो खुरपका मुँहपका तरह तरह के बीमारी
1: रोग
0: होए के डर
1: बेरामी
0: रहा।
1: घेर ले हैं तो भैया देखा दिनेश ये तो अपन किसान भैया बहनी हन के बताया हो मुला देखा भैया हम कही हर एक काम जोन है अपने टेम टेम से निक लागत है। किसान भैया बहनी हरिन से विदा लिया जाए तो
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: पंचो राम
0: राम राम।
1: राम।

अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम पंचायत घर, प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम भी 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 14.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

श्रोताओं, आइए हम आपको बता दें आज के कुछ खास कार्यक्रमों के बारे में। शाम 7:31 पर आप सुनेंगे गुरदत्त पर आधारित कार्यक्रम किस्सा गोई। स्वर होंगे नेहा गुप्ता और वंदना राठौर के। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात्रि

5:30 पर हम आपको प्रियंका मलिक का ख्याल गायन सुनवाएंगे। चित्रपट संगीत रात 8 बजे और फिल्म संगीत रात 10 बजे। ये थे आज के कुछ खास कार्यक्रम।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में हमारा अगला प्रसारण होगा लखनऊ केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट में जापान के बिजनेस लीडर्स के साथ की बैठक, कहा साझा विकास प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है दोनों देशों की साझेदारी। जापान की कंपनियों के 3,195 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की हुई वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग, परियोजनाओं से 10,000 से अधिक रोजगार के अवसर होंगे सृजित। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रश्न पत्र लीक के मामले को रोकने के लिए परीक्षा सुधार पर राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से मांगा जवाब। और झांसी में बेतवा नदी पर बने पारीक्षा बांध को वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर्स के रूप में मिली मान्यता, 14 अक्टूबर को फ्रांस में मिलेगा अवार्ड। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नई दिल्ली में यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 में जापान की प्रमुख कंपनियों के सीईओ और बिजनेस लीडर्स के साथ राउंड टेबल मीटिंग की। कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने निवेशकों का आभार जताते हुए कहा कि भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, स्पष्ट नीति और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर सुधार करते हुए प्रदेश आज भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। श्री योगी ने कहा कि जापान के पास दशकों का औद्योगिक अनुभव है, वहीं उत्तर प्रदेश के पास उसे आत्मसात करने और आगे बढ़ाने वाली युवा पीढ़ी है।
1: जापान के पास दशकों का औद्योगिक अनुभव है, उत्तर प्रदेश के पास उसे आत्मसात करने और आगे बढ़ाने वाली युवा पीढ़ी है। हम चाहते हैं जापानी कंपनियां उत्तर प्रदेश को अपना सेकंड इंडस्ट्रियल होम माने। उत्तर प्रदेश सरकार आप सभी के साथ रिलायबल पार्टनर के रूप में खड़ी है।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्ष में सरकार ने सेफ्टी, स्टेबिलिटी और स्पीड के साथ प्रदेश के बजट को, जीएसडीपी को और प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की दिशा में राज्य मजबूती से आगे बढ़ रहा है।
1: बीते 9 वर्षों में हमने सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के बजट को, उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी को, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को

0: तीन गुना करने में सफलता प्राप्त की है। $1 trillion की इकोनॉमी बनने की दिशा में हम मजबूती के साथ आगे बढ़े हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल कॉस्ट एंड गुड गवर्नेंस का एडवांटेज आज उत्तर प्रदेश के पास है।
1: इस मौके पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। उन्होंने जापान के उद्योग जगत से भारत और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में निवेश करने का आह्वान किया। वहीं कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास कर रही है कि अनुसंधान और तकनीकी नवाचार सीधे किसानों तक पहुंचे। श्री चौहान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं और ये वैश्विक निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है।
2: जापान के साथ भारत की पार्टनरशिप केवल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप नहीं है, ये डेवलपमेंट की पार्टनरशिप है, ये डिप्लोमेसी की पार्टनरशिप है और ये डिग्निटी की पार्टनरशिप है। उत्तर प्रदेश आपको केवल इन्वेस्टर नहीं मानेगा, आपको डेवलपमेंट पार्टनर मानेगा, क्योंकि हम मानते हैं इन्वेस्टमेंट का सर्वोत्तम रूप है जो कैपिटल के साथ साथ कैपेबिलिटी भी लाती है, टेक्नोलॉजी के साथ टैलेंट लाता है और प्रॉफिट के साथ प्रॉस्पर्टी भी लाता है और रेवेन्यू से ज्यादा रिलेशन मजबूत करता है।
1: इस मौके पर जापान की दो कंपनियों के 3,195 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग की गई। यीडा क्षेत्र में लगने वाली इन परियोजनाओं से 10,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 का आयोजन 18 से 23 अगस्त तक उत्तर प्रदेश और दिल्ली में किया जा रहा है। इसमें 200 से अधिक जापानी उद्योगपति, सीईओ, कारोबारी प्रतिनिधि और नीति निर्माता हिस्सा ले रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में प्रश्न पत्र लीक जैसे मामले रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए एक स्थायी तंत्र शामिल हो। नीट यूजी 2026 पेपर लीक से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सचिव को राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को नंदन नीलेकणी समिति द्वारा संशोधित रूप में लागू करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का विवरण देते हुए एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज भारत दौरे पर आए नाइजीरियन प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने वहां के कृषि और खाद्य सुरक्षा राज्य मंत्री डॉ अलियु साबी अब्दुल्लाही से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना समेत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे सकारात्मक और जमीनी बदलावों पर विस्तार से चर्चा की। श्री मौर्य ने बताया कि कृषि खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में प्रदेश में सरकार अच्छा काम कर रही है, जिसके कारण दुनिया के अलग अलग देशों से दुनिया की सरकारें अपने प्रतिनिधिमंडल को भेज रही हैं।
3: प्रदेश की दृष्टि से हम लोग, चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो चाहे खाद्य प्रसंस्करण का क्षेत्र हो, हम लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और उसी का आकर्षण दुनिया के अलग अलग देशों से वहाँ की सरकारों के द्वारा अपना प्रतिनिधिमंडल भेजा जा रहा है। यह सब कुछ जो होता हुआ हम देख रहे हैं, ये देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो लगातार 9 वर्ष से अधिक समय से अच्छा काम उत्तर प्रदेश में किया गया, उसका सुपरिणाम।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहारनपुर और दिल्ली में 10 परिसरों पर छापेमारी की है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा आज 3 दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंचे। श्री मिश्रा कल से शुरू हो रही समिति की बैठक में शामिल होंगे। इससे पहले उन्होंने मंदिर परिसर में चल रहे निर्माण की जानकारी देते हुए बताया कि पूर्ण स्मृति स्तंभ के शीर्ष पर न्यास का लोगो लगाया जाना बाकी है, बाकी सारे कार्य पूरे हो गए हैं।
4: निर्माण अब मंदिर परिसर में पूर्ण हो गया है। पूर्ण स्मृति स्तंभ था, उसका अब आज कल में सबसे ऊपर जो लोगो लगता है वो अब लगना बाकी है। रामकथा संग्रहालय, उसमें अभी हम लोग समीक्षा करेंगे। सभी गैलरीज की जो स्क्रिप्ट होती है, स्टोरी लाइन होती है, स्टोरी लाइन पूरी हो चुकी है।

0: रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास की 529वीं जयंती आज चित्रकूट और उनकी जन्मस्थली राजापुर में श्रद्धा भक्ति और उल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर राजापुर सहित चित्रकूट जिले में धार्मिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रमों की धूम रही। राजापुर स्थित तुलसी स्मारक में श्रद्धालुओं ने रामचरितमानस का पाठ किया। वहीं तुलसीदास के जीवन, संघर्ष, भक्ति और आध्यात्मिक यात्रा पर आधारित विभिन्न लीलाओं का मंचन किया गया। जिले के विभिन्न विद्यालयों में भी तुलसी जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। विद्यार्थियों ने काव्य पाठ, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास के साहित्यिक योगदान को याद किया। झांसी में बेतवा नदी पर बना 140 वर्ष पुराना पारिक्षा बांध अब वैश्विक विरासत का हिस्सा बन गया है। प्रमुख सचिव सिंचाई और जल संसाधन अनिल गर्ग ने बताया कि पारिक्षा बांध को फ्रांस के मार्सेई में 14 अक्टूबर को होने वाली 26वीं आईसीआईडी इंटरनेशनल कांग्रेस और 77वीं इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग के दौरान WHIS अवार्ड 2026 दिया जाएगा। इस बांध को इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरीगेशन एंड ड्रेनेज ने वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर्स के रूप में मान्यता दे दी है। ये बांध करीब 140 साल से बुंदेलखंड की सिंचाई व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये बेतवा नहर प्रणाली का मुख्य हिस्सा है। बलिया बलिदान दिवस के अवसर पर आज जनपद बलिया में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने किया। कार्यक्रम में शहीदों के बलिदान और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान को नमन करते हुए नई पीढ़ी को उनके आदर्शों से प्रेरणा लेने का संदेश दिया गया। परिवहन मंत्री ने कहा कि 19 अगस्त का दिन पूरे देश के साथ साथ बलिया के लिए विशेष गौरव का दिन है। प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट में जापान के बिजनेस लीडर्स के साथ की बैठक। कहा साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है दोनों देशों की साझेदारी। जापान की कंपनियों के 3,195 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की हुई वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग। परियोजनाओं से 10,000 से अधिक रोजगार के अवसर होंगे सृजित। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रश्न पत्र लीक के मामले को रोकने के लिए परीक्षा सुधार पर राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से मांगा जवाब। और झांसी में बेतवा नदी पर बने पारिक्षा बांध को वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर्स के रूप में मिली मान्यता। 14 अक्टूबर को फ्रांस में मिलेगा अवार्ड। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 14.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए गुरदत्त पर आधारित कार्यक्रम खिस्सा गोई। स्वर नेहा गुप्ता और वंदना राठौर के हैं। प्रस्तुति आकाशवाणी प्रयागराज की।
2: किस्सा गोई।
3: दोस्तों
4: नमस्कार।
3: किताबों के पन्नों पर ख्वाब और हकीकत के धागों से बुने किस्से, कहानियों के दिलचस्प पैटर्न को समेटे मुखातिब हैं हम दोनों ही एक बार फिर से किस्सा गोई के एक और रोचक अंक के साथ।
4: लेकिन साथियों, इस बार आप तक जो बातें साझा होंगी, जो किस्से हम लेकर आए हैं, जिन्हें हमने चुना है, उनका वास्ता किताबों के पन्नों से नहीं बल्कि रुपहले पर्दे से है।
3: और वो रुपहला पर्दा जो शब्द, दृश्य और ध्वनि से उकेरता है ऐसी कहानी जो हमारे जीवन और समाज का ही प्रतिबिंब गढ़ती सी मालूम होती है, जिन्हें हम चित्रपट, फिल्म या फिर मूवी के नाम से जानते हैं।
4: फिल्में जिनमें इमोशन है, ड्रामा है और है ट्रेजेडी, और हमारी कल्पना की उड़ान के साथ साथ सुरीले गीतों की गुनगुनाहटें भी।
5: जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बातें कुछ बन

0: जाने क्या मैंने सुनी बात कुछ बन ही गई।
1: दिल चोर सा है, छुपा हुआ रहता है, और वो जो एक लाइन है इसमें कि एक नशा सा उतर रहा है, और कोई ऐसा आता है कि ख्वाब तो होते हैं हर किसी के जहन में, लेकिन किसी के आने से वो जगते हैं ना। तो दोस्तों, इस भावपूर्ण गीत को सुनने के दौरान ही आप सबने पहचान ही लिया होगा कि आज की किस्सा गोई का सिरा उस अजीम शख्सियत से जुड़ रहा है जो कहता था, मैं फिल्म नहीं बनाता, मैं अपनी जिंदगी को ही फिल्माता हूँ।
0: भारतीय फिल्म इतिहास का एक ऐसा फिल्मकार जिसने सिनेमा को कविता बना दिया, जिसकी फिल्मों का एक एक दृश्य यूं लगता मानो रजत पटल पर किसी चित्रकार की कोई अभूतपूर्व चित्रकला हो।

0: नज़र चेहरे पर जाती तो कुछ टुकड़े हंसी के, तो बेशुमार कतरे आंसू और दर्द के बिखरे मिलते।
1: तो वही बेहद हसास से भरा एक दिल जिसमें जज्बातों एहसास का पूरा समंदर डोलता दिखाई देता।
0: दोस्तों, इन सारी बयानियों से जो तस्वीर बन रही है ना, वो है वसंत कुमार शिव शंकर पादुकोण, जिन्हें सारी दुनिया गुरुदत्त के नाम से जानती है। हाँ।

0: साथियों, हम सब जानते हैं गुरुदत्त साहब भारतीय सिनेमा के एक महान अभिनेता, निर्देशक, निर्माता और कोरियोग्राफर रहे हैं, जिन्हें हिंदी सिनेमा के स्वर्ण युग यानी 1950 और 1960 के दशक का सबसे संवेदनशील और काव्यात्मक फिल्मकार माना जाता है, जिन्होंने प्यासा और कागज के फूल जैसी कालजयी मर्म स्पर्शी फिल्में बनाई।
1: दोस्तों, कि जब ये दोनों फिल्में शूट हो रही थी तो बहुत सारे किस्सों ने भी जन्म लिया था। देवानंद साहब, गुरुदत्त साहब, वीके मूर्ति जी, वहीदा रहमान जी, उनके सिस्टर और गीता दत्त जी, ये सारे किस्से बहुत ही सुंदर और गहरे अर्थों को लिए हुए हैं। तो चलिए सुनिए आज गुरुदत्त से जुड़ा हुआ कुछ दिल छू लेने वाला किस्सा।

0: साल 1957, बन रही थी फिल्म प्यासा।
1: प्यासा फिल्म के लिए गुरुदत्त साहब की पहली पसंद थे दिलीप साहब। गुरुदत्त साहब ने दिलीप कुमार से मुलाकात की, प्यासा की स्क्रिप्ट सुनाई, सारी बातें तय हो गई, पर मुहूर्त शॉट के लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। प्यासा की पूरी टीम अपने स्टार दिलीप कुमार का स्वागत करने के लिए तैयार थी। बहुत समय बीत गया, यूसुफ साहब यानी दिलीप साहब नहीं आए। तब गुरुदत्त साहब ने लंच के बाद दो मधुमक्खियां मंगवाई। दोपहर 3 बजे तक उन्होंने खुद ही मुख्य भूमिका निभाने का फैसला कर लिया और ये पहला शॉट लिया गया जहां पर एक मधुमक्खी का क्लोजअप शॉट जो अमृत के लिए तरस रही थी, लेकिन पास से गुजर रहे एक व्यक्ति ने उसे उस मासूम मधुमक्खी को अपने पैरों से कुचल दिया था। यहां से शुरू हुई गुरुदत्त साहब की इस फिल्म में नायक की भूमिका निभाने की ये कहानी जो आगे चलकर इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गई।
2: ये फूलों का रस पी के मचलते हुए भंवरे, ये फूलों का रस पी के

0: ले देख मेरे पास कुछ आंसू है कुछ आहें।
1: एक और सीन प्यासा फिल्म का जो बहुत ही महत्वपूर्ण था, खासतौर पर जब रेलवे स्टेशन पर शूट किया जा रहा था, उस दौरान भी बहुत सारे किस्से मशहूर हुए।
2: एक दिन शूटिंग के दौरान एक सीन था। गुरुदत्त साहब ने असिस्टेंट से कहा, सुनो मुझे लगभग 150-200 लोगों की भीड़ चाहिए ताकि स्टेशन के दृश्य ओरिजिनल लगे।
1: असिस्टेंट ने कहा, सर बजट नहीं। गुरुदत्त साहब कुछ समय चुप रहे, फिर अचानक बोल उठे, पैकअप यानी शूटिंग रद्द।
2: पूरी यूनिट घबरा गई। तभी गुरुदत्त उठे और खुद स्टेशन चले गए। वहां जो भी मजदूर कुली चाय वाला मिला सबको 2 रुपए दिए और बोले, बस 10 मिनट मेरे साथ खड़े हो जाओ, कैमरा आएगा।
1: और पता है दोस्तों, 10 मिनट के भीतर ही लगभग 200 लोग का जमावड़ा वहां इकट्ठा हो गया। किसी को कुछ पता नहीं है कि ये कैमरा क्या कुछ कर रहा है, खेल दिखा रहा है। और यहाँ पर वो शूटिंग शुरू की गई। और हाँ, एक बात और भी बीच में हुई थी, वो ये कि शूट के बाद एक बूढ़े कुली ने पूछा भी था गुरुदत्त साहब से कि साहब आप लोग कौन हैं। तो गुरुदत्त साहब ने क्या जवाब दिया था दोस्तों, पता है?
2: मैं भी एक प्यासा हूँ काका, इज्जत का प्यासा।
1: क्या बात है। लेकिन दोस्तों, सबसे मजेदार बात तो कुछ समय बाद हुई, जब फिल्म रिलीज हुई, सुपरहिट हुई। लगभग 6 महीने के बाद वही बूढ़े से जो कुली थे वो बॉम्बे आए और गुरुदत्त साहब के ऑफिस जा पहुंचे।
2: साहब मेरे वो 2 रुपए।
1: अब सोचिए दोस्तों कि गुरुदत्त साहब ने क्या कहा होगा और क्या कुछ किया होगा।
2: वो गुरुदत्त थे दोस्तों। उन्होंने बड़े प्यार से उस कुली को गले लगाया और कहा, काका 2 रुपए की बात करते हो, तुमने मुझे पूरे 2 करोड़ का सीन दे दिया है।
0: तंगा चुके हैं कशमकश जिंदगी से हम, तंगा चुके हैं कशमकश जिंदगी से हम, ठुकरा ना दे जहां को कहीं बेदिली।
3: जनाब खुशी के मौके पर क्या बेदिली का राग छेड़ा हुआ है, कोई खुशी का गीत सुनाइए।

0: आस का दृश्य बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ लिए हुए है, और जहाँ पर एक प्रसंग आता है जब नायक विजय अपना एक कोट एक गरीब और लाचार भिखारी को दे देता है, और कुछ क्षणों बाद भिखारी ट्रेन की चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठता है। रेलवे ट्रैक की दुर्घटना ही विजय के जीवन, उसकी पहचान और अंततः उसके द्वारा दुनिया को ठुकराने की पूरी कहानी की नींव रखती है।
1: आज भी प्यासा का सबसे असली सीन वही स्टेशन वाला माना जाता है। सच दोस्तों, ये वाक्या सुनकर एक बात जहन में आई कि सिनेमा झूठ नहीं, सच होता है।
0: और सच दिखाने के लिए बड़े सेट की जरूरत नहीं होती है, चाहिए एक बड़ा दिल।
1: कई बार हम लोगों को लगता है ना कि हमारे पास पैसे नहीं हैं और ये काम नहीं होगा, लेकिन अगर दिल गुरुदत्त जैसा हो तो बड़े से बड़ा काम पैसों के लिए नहीं रुकता, उसके लिए तो सिर्फ जिंदा दिली चाहिए।
0: सच कहिए, जज्बा चाहिए, जोश चाहिए, जुनून चाहिए। और नेहा जी, अब जोश जज्बे के धागों से बुनी हुई एक जो फिल्म बनी गुरुदत्त साहब के निर्देशन में, और क्या कुछ घटा इस बीच कि गुरुदत्त साहब को ये कहना पड़ा कि अब मैं निर्देशन नहीं करूँगा, उसको जानने के लिए अभी हमें चलना होगा कहाँ?
1: सेंट्रल मॉडर्न स्टूडियो।
0: स्टूडियो के बाहर लिखा दिखाई दे रहा है साल 1959, बन रही है जहां भारतीय फिल्म इतिहास की पहली सिनेमा स्कोप फिल्म कागज के फूल।

आज भी जब बॉलीवुड की गलियों में लोग जाते हैं काम तलाशने या काम को देखने, तो इन किस्सों से वाकिफ होते हैं, दो चार होते हैं। तो लाइट बंद कीजिए, पर्दा गिराइए और चलिए उसी सेट पर जहाँ लिखा है साल 1959।

0: वक्त ने किया क्या हंसी सितम। गीता दत्त की आवाज, उसकी जो पवित्रता है वो दिल को अंदर तक गहरे तक छू ले रही है।
1: कैफी आजमी साहब ने ये जो गीत लिखा है, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, ये जरा देखिए इसकी अगली लाइन जो ये है कि हम दो कदम साथ चलते हैं और फिर कैसे अगुम हो जाते हैं, एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। बहुत सुंदर ढंग से वो जो रोशनी आई है, वो रोशनी ही इसका परिचायक है कि चलते साथ में हैं, कुछ ऐसी बाधाएं भी आती हैं कि हम आगे पीछे हो जाते हैं, हमारे कदम आगे पीछे हो जाते हैं। बहुत बहुत सुंदर इसका पिक्चराइजेशन है और इसके पीछे भी बहुत सारे किस्से हैं।
0: कहते हैं कि इस गीत की शूटिंग के दौरान

0: मूर्तियों की छत से आती प्रकाश की किरण को विशेष तरीके से नियंत्रित किया गया। रोशनी की वही किरण आज भारतीय सिनेमेटोग्राफी की सबसे चर्चित छवियों में गिनी जाती है।
1: फिल्म के छायाकार वीके मूर्ति और गुरुदत्त की जोड़ी ने प्रकाश और छाया का ऐसा जादू रचा कि हर फ्रेम एक चित्र बन गया।

0: शूटिंग जारी थी। सेट पर धूल, टूटी कुर्सियां और अकेले गुरुदत्त। डायरेक्टर गुरुदत्त खुद ही हीरो भी थे, टेक पर टेक हुए जा रहे थे। बेहिसाब टेक के बाद जब अचानक गुरुदत्त साहब सच में रो पड़े, तब कैमरामैन वीके मूर्ति बोले, सर कट।
1: गुरुदत्त साहब बोले, नहीं कैमरा चलने दो, दर्द असली है।
2: मैं समझता हूँ तुम क्यों जा रही हो।
3: मुझे यकीन था आप जरूर समझ जाएंगे।
2: हमने हमेशा एक दूसरे को समझा है ना?
3: हमेशा।
2: कभी कभी लोग एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह क्यों समझने लगते हैं? क्यों? काश कि ऐसा ना होता, तब बात पड़ती, हमने आज तुम्हें सब कुछ छोड़ के यूं जाना पड़ता।
0: कुछ देर बाद गुरुदत्त साहब ने खुद ही कट कहा और बोले, ये मेरा आखिरी शॉट है। फिल्म रिलीज हुई और बुरी तरह फ्लॉप।
1: गुरुदत्त साहब बुरी तरह टूट गए। दोस्त देवानंद ने कहा, गुरु अगली फिल्म बनाओ।
0: लेकिन गुरुदत्त साहब के जहन में तो कुछ और ही चल रहा था। वो हंसकर बोले, देव अब कैमरा मुझे नहीं, मैं कैमरे को देखूंगा। और फिर गुरु ने कभी कोई फिल्म निर्देशित नहीं की।
1: कागज के फूल की शूटिंग का जब अंतिम दिन था और सेट तोड़ा जा रहा था, गुरुदत्त साहब चुपचाप एक कोने में बैठे थे, हाथ में फिल्म की एक रील। प्रोड्यूसर आए और बोले, सर नुकसान बहुत हुआ।
0: गुरुदत्त मुस्कुराए और बोले, हाँ नुकसान पैसों का हुआ है, कला का नहीं। ये कागज के फूल थे, मुरझाने के लिए ही बने थे।

0: दोस्तों, आज फिल्म कागज के फूल कल्ट क्लासिक है। दुनिया भर में ये फिल्म स्कूलों में पढ़ाई जाती है। ये फिल्म हमें यही सिखाती है कि कभी कभी सबसे खूबसूरत चीजों की कदर वक्त के बाद होती है,
1: क्योंकि शायद उसको समझने के लिए वो नजरिया, वो जहन धीरे धीरे लोगों के पास आता है, और जब आता है

0: तो वो ये सोचते हैं कि उस समय उसकी कितनी इज्जत की जानी चाहिए थी।
1: और नेहा जी
0: जी,
1: एक बात ये भी थी कि जब कागज के फूल बन रही थी ये जो कहानी थी, तो ये कहानी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इनकी खुद की ही कहानी थी जिसे वो पर्दे पर पेश कर रहे थे। खैर, गुरदत्त साहब ने इससे असहमति जताई थी, लेकिन जब हम उनके जीवन को देखते हैं तब हम ये पाते हैं कि ये कहानी बिल्कुल उन्हीं के जीवन को रिप्रेजेंट करती हुई सी प्रतीत हो रही है। गुरदत्त साहब, गीता दत्त।

0: कहते हैं ऐसा ये चर्चित है कि जो मैंगलोरियंस होते हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसा माना जाता है। और गुरुदत्त साहब का जन्म तो मैंगलोर में हुआ था और जहन तो उनका इतना जहीन था कि लोग शायद इसीलिए तो हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो या जापान में कोई फिल्म बन रही हो, फिल्म की पढ़ाई हो रही हो, तो गुरुदत्त साहब के टेक्निक की बात की जाती है।
1: सच कह रही है नेहा जी, वो तो एक अजीम फिल्मकार थे, उनका विजन कितना बड़ा था, जो लोगों को आज समझ में आया कि वो क्या कुछ चाह रहे थे, समय के आगे की कहानी उनके दिलो दिमाग में, 50वीं दशक की हम बात करें, उनके दिमाग में वो कथा चल रही थी जो आगे चलकर कहीं ना कहीं एक इतिहास बनने की ओर जो बात की जाती है वो इतिहास ही बना रहे थे जिन्हें उस समय दुनिया ने नहीं समझा।
0: और आज जब हम समझते हैं तो ऐसा लगता है कि काश कि वक्त ठहर सा जाता और मुलाकात कर लेते उनसे।

0: वंदना जी, दोस्तों एक और मजेदार खस्सा है
1: जी,
0: गुरुदत्त साहब और देवानंद साहब का। गुरुदत्त साहब की कमीज और देवानंद साहब की कमीज जो थी एक ही लॉन्ड्री में जाती थी धुलने के लिए
1: जी।
0: अब लॉन्ड्री वाले ने दोनों की कमीज पहुंचा दी। गुरुदत्त भी सोचे कि ये कमीज तो मेरी नहीं है। देवानंद साहब अपने घर में सोच रहे हैं कि ये कमीज भी मेरी नहीं है। अब वो लोग प्रभात स्टूडियो चल दिए। अब एक टक वो एक दूसरे को सिर्फ देख रहे थे। अब वो ये सोचते हैं कि इनके पास मेरी कमीज कैसे आ गई। तो उन्होंने पूछा, बरखुरदार, आप ये कमीज कहाँ से आपने खरीदी है? तो दत्त जी को ये बात समझ में आ गई कि कहीं कुछ ये मुझसे जो सवाल कर रहे हैं मैं इनसे करना चाहता था। और दोनों हंस पड़े और दोनों ने कहा, ओह, तो आज लॉन्ड्री वाले की वजह से हम दोनों मिल रहे हैं।
1: बिल्कुल, और ये जो दोस्ती थी वो जीवन पर्यंत चलती रही। और एक वादा दोनों दोस्तों के बीच हुआ था
0: जी,
1: कि जब कभी उनके बैनर तले कोई फिल्म बनी देवानंद साहब के, तो उसको निर्देशित करेंगे गुरुदत्त साहब।
0: और फिल्म बनी थी बाजी।

0: दोस्ती का वो अंतिम दृश्य कैसे भूल सकते हैं, जिसे अपनी किताब में भी देवानंद साहब ने उकेरा था।
1: 10 अक्टूबर 1964 की सुबह 10:30 बजे, शनिवार का दिन था। 39 वर्षीय गुरुदत्त वहां बेसुध पड़े थे। देवानंद साहब तक जब ये खबर पहुंची, उन्होंने अपनी फिल्म 3 देवियां की शूटिंग रद्द कर दी थी। और वो अपनी किताब में लिखते हैं कि मैं उनके कमरे में जाने वाला पहला व्यक्ति था। उनका शव पड़ा था, फर्श पर नीले रंग के तरल पदार्थ से भरा एक गिलास था। उनका चेहरा पीला पड़ गया था और वे मृत थे। गीता दत्त को सांत्वना देते हुए देवानंद फूट फूट कर रो पड़े। गुरुदत्त के बगल में घुटने टेक कर उन्होंने उनका ठंडा हाथ थाम लिया और रोते हुए बोले, गुरु उठ, कहाँ चला गया तू?
2: बिल्कुल। और कुछ समय बाद जब कैफी आजमी साहब वहाँ पहुँचते हैं, उनको इस हाल में देखते हैं तो उन्होंने एक नज्म भी लिखी।
3: रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। एक बार तो खुद मौत भी घबरा गई होगी, यूं मौत को सीने से लगाता नहीं कोई। डरता हूं कहीं खुश्क न हो जाए समंदर, राख अपनी कभी आप बहाता नहीं कोई। साखी से गिला था तुम्हें मैखाने से शिकवा, अब जहर से भी प्यास बुझाता नहीं कोई। माना के उजालों ने तुम्हें दाग दिए थे, बेराग ढले शमा बुझाता नहीं कोई।

0: जब आपके सीने में, हृदय में संवेदनाएं जगने लगी, तो ये जरूर लिखिएगा ये प्रोग्राम कैसा लगा हमारा।
1: आपको संदेश भेजना है इस व्हाट्सएप नंबर पर 8004926250।
0: हम इंतजार करेंगे आपके पत्र का और अगली बार फिर हाजिर होंगे
1: एक नए किस्से के साथ। हाँ। तो दीजिए हमें इजाजत।
0: नमस्कार।

0: बिछड़े सभी, बिछड़े सभी बारी बारी।
1: किस्सा कोई, अभी आप सुन रहे थे गुरुदत्त पर केंद्रित ये कार्यक्रम। स्वर थे नेहा गुप्ता और वंदना राठौर के, प्रस्तुति आकाशवाणी प्रयागराज की। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी प्रयागराज है।

ये है कार्यक्रम का पहला गाना, अलका याग्निक और सोनू निगम के युगल स्वरों में। गीतकार अनिल पांडे, संगीतकार संदेश शांडिल्य। फिल्म का नाम कभी खुशी कभी गम।

आप सुन रहे थे मोहम्मद अजीज़ और अनुराधा पौंडवाल को। गीत समीर का था, संगीत आनंद मिलिंद का और फिल्म का नाम आई मिलन की रात। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना, यतिन ललित के संगीत निर्देशन में। के पप्पू का लिखा गीत है, आवाज़ें बाबुल सुप्रियो और अनुराधा पौंडवाल की हैं। फिल्म का नाम ढाई अक्षर प्रेम के।

ये है कार्यक्रम की अगली पेशकश सुल्तान फिल्म से, आवाज सलमान खान की, गीत रचना इरशाद कामिल का और संगीत विशाल शेखर का। सलमान खान की आवाज के साथ साथ दिया है सुखविंदर सिंह और शादाब फरीदी ने।

आप सुनिए श्रेया घोषाल और गणेश चंदन को, गीतकार सिद्धार्थ गरिमा, संगीतकार शैलप्रीति, फिल्म का नाम बाजीराव मस्तानी।

अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सबरस कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं अनूप जलोटा का ये भजन।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं सबरस कार्यक्रम। कार्यक्रम के अंत में अब हम आपको सुनवा रहे हैं नुसरत फतेह अली खां की आवाज में सूफी रचना।

0: इसी सूफी रचना के साथ ही सबरस कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा।
2: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की 5 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी। 4 राज्यों में 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के चौड़ीकरण को स्वीकृति। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, उच्च गुणवत्ता और लागत प्रभावी अवसंरचना सर्वोच्च प्राथमिकता, केंद्र सरकार उप ठेकेदारी मानदंडों की समीक्षा करेगी। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के युग में सटीक, विश्वसनीय और नागरिक केंद्रित सरकारी संचार का आह्वान किया। ईरान ने खाड़ी देशों को अमरीका के सैन्य अभियानों में सहयोग न करने की चेतावनी दी। नीदरलैंड्स में पुरुष FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत ने गोल टेस्ट में मेजबान श्रीलंका को 165 रन से हराया। मानव सुथार ने पहली बार 10 विकेट झटके। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल हैं। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
3: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का थर्ड एंड फोर्थ लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
2: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की चौथी लाइन, भद्रक हरदासपुर की चौथी लाइन, गुमेड़ी पुंडी गुदुर की तीसरी और चौथी लाइन तथा कटक पारादीप की तीसरी तथा चौथी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है। श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोन बरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है।
3: बिहार में बहुत इम्पोर्टेंट आज हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर्स का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4 लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें हो। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
2: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली अवसर

0: संरचना उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना विकास की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित सुरंग और पुल सम्मेलन 2026 के चौथे संस्करण को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय राजमार्ग निर्माण कार्यों के उप ठेकेदारी संबंधी मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करेगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि संविदात्मक आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन किया जाए और गुणवत्ता तथा समय पर निष्पादन की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से मुख्य ठेकेदार की ही रहे। श्री गडकरी ने बेहतर अवसंरचना सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए विस्तृत और मजबूत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि खराब गुणवत्ता वाली डीपीआर और अपर्याप्त भूवैज्ञानिक डेटा अक्सर लागत में वृद्धि, देरी और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का कारण बनते हैं।
1: कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए उसके लिए प्लानिंग इन एडवांस, प्लानिंग इन डिटेल बनाकर वी नीड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर दैट। तो ये हमारे लिए अनप्रेडिक्टेबल जियोलॉजी एंड ग्राउंड कंडीशंस ये बहुत बड़ी समस्या है, इसका बहुत अध्ययन होना चाहिए। अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने इसके ऊपर कुछ किया तो उसका उपयोग ओवरऑल देश को होगा। बाद में एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस एंड नेचुरल हजार्ड्स, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, हेवी स्नोफॉल अभी बहुत कठिन है, ये जो जिला में काम कर रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि प्रौद्योगिकी, मीडिया, अर्थशास्त्र और लोकनीति की दुनिया तेजी से बदल रही है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भारतीय सूचना सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि सोशल मीडिया ने सूचना प्राप्त करने, साझा करने और उस पर प्रतिक्रिया देने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है।
2: Social media has fundamentally transformed the way citizens receive, share and respond to information. You should use social media platforms not only to inform the engaged, but also to listen, understand and respond to concerns of the people.
0: राष्ट्रपति ने कहा कि जब सूचना तेजी से फैलती है तो आधिकारिक संचार में सटीकता, विश्वसनीयता और जनहित का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में वन अधिकारियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वन, वन्यजीव, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ विकास को आगे बढ़ाना होगा। उपराष्ट्रपति ने आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में वर्ष 2025-27 बैच के भारतीय वन सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित किया। झारखंड में 26 दिन से चल रहा विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन, राज्य सरकार द्वारा कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने और कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश देने के बाद समाप्त कर दिया गया है। एक रिपोर्ट।
3: आंदोलनरत छात्रों ने राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। सरकार ने 22 परीक्षाएं रद्द करने और 45 परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच कराने का फैसला लिया है, जिसमें जेपीएससी सिविल सर्विस और जेएसएससी सीजीएल भी शामिल हैं। छात्रों ने सरकार को जाँच पूरी करने के लिए 60 दिनों का समय दिया है और चेतावनी दी है कि जाँच निष्पक्ष या संतोषजनक नहीं होने पर वे फिर आंदोलन शुरू करेंगे। छात्रों ने आज शाम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक आभार यात्रा निकाली, जिसमें प्रमुख छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो भी शामिल हुए। देवेंद्रनाथ महतो ने 16 दिनों तक आमरण अनशन किया था। वहीं सरकार के फैसले से 2628 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां प्रभावित हुई हैं। इसके विरोध में जेएसएससी सीजीएल से नियुक्त अभ्यर्थियों ने झारखंड सचिवालय और प्रोजेक्ट भवन के बाहर प्रदर्शन कर अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर चिंता जताई। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया के तहत परीक्षा पास कर नियुक्ति हासिल की है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल ने भी जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग दोहराई है। नविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। श्री जोशी ने इस बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने की प्रधानमंत्री की पहल के कार्यान्वयन की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में लापता और बचाए गए बच्चों की पहचान और उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए राष्ट्रीय डीएनए और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बनाने की मांग की गई है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से दो वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा

0: मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से दो वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कृष्णानगर अदालत ने निर्देश दिया है कि वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 28 अगस्त तक प्रस्तुत की जाए। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के अनुसार मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्था का कार्य अब 24 अगस्त तक किया जाएगा। वहीं मतदाता सूची का प्रारूप 31 अगस्त को प्रकाशित होगा। आयोग के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 31 अगस्त से 30 सितंबर तक होगी। दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 31 अगस्त से 29 अक्टूबर तक चलेगी। अंतिम मतदाता सूची अब 4 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली के मुनिरका इलाके में मणिपुर के दो लोगों पर कथित हमले की मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दो व्यक्तियों ने मणिपुर के इन दोनों लोगों पर हमला किया। हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
1: New Delhi, the Chief Minister here, the government here.
2: केंद्र और स्थानीय सरकार ने इस क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ये एक बहुत सुंदर क्षेत्र है। मेरा मानना है कि बहुत से अमरीकी पर्यटक यहाँ आकर इसकी सुंदरता को देखना पसंद करेंगे।
1: I think a lot of Americans would enjoy coming here and seeing the beauty and the opportunities that exist here.
0: श्री गोर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने देशों को अमरीका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमरीका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ कोई वार्ता नहीं चल रही है और न ही निर्धारित है। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 312 हो गई है। 4611 लोग घायल हैं और 290 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति अबिलाडो डे ला एस्प्रियला ने आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। भारत ने कोलंबिया को समर्थन देते हुए पिछले सप्ताह राहत सामग्री की पहली खेप के रूप में 20 मीट्रिक टन सामग्री भेजी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल के लिए तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। नीदरलैंड्स के एम्स्टरडैम में एफआईएच हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त को मजबूत किया। भारत ने गोल में दो मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। मानव सुथार ने इस मुकाबले में कुल 131 रन देकर 10 विकेट हासिल किए हैं। मानव ने पहली पारी में 76 रन देकर 4 विकेट झटके। दूसरी पारी में उन्होंने 55 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 326 अंक यानी 0.42% लुढ़क कर 76,910 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 77 अंक यानी 0.32%

0: tiene un color que flick ni de creer.
1: मल्टी ट्रैकिंग के चार प्रोजेक्टों को भी मंजूरी दी। बिहार में कौमी शाहराह 22 को वसत दिए जाने को भी मंजूरी दी गई है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि आला मयार और किफायती बुनियादी ढांचा अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि मरकज जैली ठेकेदारी से मुतालिक जब्तों का भी जायजा लेगा। अमरीकी सफीर सर्जियो गोर ने मरकज और जम्मू कश्मीर हुकूमतों की जानिब से मरकज के जेर इंतजाम इलाके में सिक्योरिटी को बेहतर करने से मुतालिक किए गए इकदाम की सताइश की है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के दौर में दुरुस्त काबिल भरोसा और शहरियों पर मरकूज हुकूमती राबते पर जोर दिया है। ईरान ने अमरीकी फौजी कार्रवाईयों में सहूलत के खिलाफ खलीजी ममालिक को खबरदार किया है। नीदरलैंड में मर्दों के FIH हॉकी आलमी कप में भारत पाकिस्तान को 3-5 से हराकर दूसरे राउंड में पहुंच गया है। और मर्दों के क्रिकेट में गोल में भारत ने पहले टेस्ट मैच में मेजबान श्रीलंका को 165 रन से शिकस्त दी। मानव सुथर ने पहली मर्तबा 10 विकेट हासिल किए। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने आज 13,000 करोड़ रुपए मालियत के 5 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी, जिनमें रेलवे के 4 और शाहराहों का 1 प्रोजेक्ट शामिल है। इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में काबीना मीटिंग के बाद मीडिया को प्रोजेक्टों से मुतालिक तफसीली मालूमात फराहम की। जनाब वैष्णव ने मुत्तला किया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जीर क्यादत काबीना ने रेलवे के मल्टी ट्रैकिंग के 4 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है, जिनमें 4 रियासतों मगरबी बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 अजला का इहाता किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन पर कुल 9,450 करोड़ रुपए की तखमीना लागत आएगी और ये प्रोजेक्ट 2030-31 तक मुकम्मल होंगे।
2: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: मुजविजा प्रोजेक्ट तकरीबन 60 लाख की आबादी वाले 6,448 गांवों में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे। अहम सियाहती मकामात तक रेल राबता बेहतर होगा और अहम अशिया की नकलो हमल मुस्तहकम होगी, जिनमें कोयला, सीमेंट, स्टील, कंटेनर, ऑटोमोबाइल और अनाज शामिल हैं। जनाब वैष्णो ने मुतला किया कि मरकजी काबीना ने बिहार में कौमी शाहराह 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा हिस्से को 4 लेन वाला करने को भी मंजूरी दी है, जिस पर तकरीबन 3,590 करोड़ रुपए की कुल सरमाया लागत आएगी।
2: बिहार में बहुत इम्पोर्टेंट आज हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4-लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीज का इन्वेस्ट

0: डेवलपमेंट इसमें हो, कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
1: सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि आला मेयार के बुनियादी ढांचे के साथ साथ कम लागत हुकूमत की अहम तरजीह है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे की तरक्की के मेयार से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। आज नई दिल्ली में टनल्स एंड ब्रिजेस कॉन्फ्रेंस 2026 के चौथे एडिशन से खिताब करते हुए जनाब गडकरी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि वजारत शाहराहों के कामों की सब कॉन्ट्रैक्टिंग के जरिए मौजूदा जाब्तों का जायजा लेगी ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कॉन्ट्रैक्ट से मुतालिक जरूरतों की सख्ती से तामील हो। उन्होंने कहा कि इसका मकसद इस बात को भी यकीनी बनाना है कि मयार और बरवक्त तकमील की जिम्मेदारी वाज़ह तौर पर असल कॉन्ट्रैक्टर से मंसूब रहे। जनाब गडकरी ने मजीद कहा कि वजारत पहले से ही कॉन्ट्रैक्टर्स का उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर जायजा ले रही है और ये अमल तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR तैयार करने वाले कंसल्टेंट्स पर नाफिज करने की शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा टेंडर की अहलियत को कारकर्दगी के जायजे से मुंसलिक करने की भी तजवीज़ है। हिमालयी खितों में तूदे खिसकने, शदीद मौसम, कुदरती आफात और लॉजिस्टिक दुश्वारियों समेत तामीरात को दरपेश चैलेंजों का जिक्र करते हुए जनाब गडकरी ने कहा कि हिमालय में जेरे जमीन सुरंगों और पुलों की तामीर का काम काली मिट्टी की चट्टानों वाले इलाकों के मुकाबले ज्यादा चैलेंजेस से भरा है। झारखंड में JPSC JSSC से मुतालिक तलबा का 26 रोजा एहतजाज खत्म हो गया। रियासती हुकूमत की जानिब से भर्ती के मुख्तलिफ इम्तहानात को मनसूख करने के फैसले और मुबैना बेजाब्तगियों में तहकीकात का हुक्म दिए जाने के बाद ऐसा हुआ है। ताहम इस फैसले से वो उम्मीदवार नाखुश हैं जिनकी मनसूख हुए इम्तहानात के जरिए पहले ही तकर्री की जा चुकी है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: एहतजाज कर रहे तलबा ने रियासती हुकूमत की जानिब से 22 इम्तहानात को मनसूख करने के सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी किए जाने और JPSC सिविल सर्विसेज और JSSC CGL समेत 45 इम्तहानात में बेसाब्तगियों की तहकीकात का हुक्म दिए जाने के बाद अपना एहतजाज खत्म कर दिया है। तलबा ने तहकीकात के लिए हुकूमत को यह वार्निंग देते हुए 60 दिन का वक्त दिया है कि अगर तहकीकात गैर मुनसिफाना या नाकाफी साबित हुई तो वह अपना एहतजाज फिर शुरू करेंगे। तलबा ने आज शाम रांची में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक एक आभार यात्रा भी निकाली। इस दौरान हुकूमत के इस फैसले से 2628 उम्मीदवारों की तकरीरियां मुतासिर हुई हैं और उन्होंने अपनी नौकरियों और मुस्तकबिल के सिलसिले में तशवीश का इजहार करते हुए झारखंड सेक्रेटेरिएट और प्रोजेक्ट भवन के बाहर एहतजाज किया। एहतजाज कर रहे मुलाजमीन ने कहा कि उन्होंने मुकर्रा अमल के जरिए इम्तिहान पास किया है और उन्होंने कहा कि अगर बेजाब्तगियां हुई हैं तो कसूरवार अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, न कि मुंतखब और मुकर्रर हुए उम्मीदवारों की तकरीरियां मनसूख की जाएं। रांची से महवेश रहमान की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: मगरबी बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने मुबैना नफरत आमीज तकरीर के मामले के सिलसिले में अदालत के सामने पेश न होने पर तृणमूल कांग्रेस की रुकने पार्लियामेंट महवा मोइत्रा के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने का हुक्म दिया है। कृष्णा नगर अदालत ने इस बात का भी हुक्म दिया है कि वारंट जारी करने के सिलसिले में एक रिपोर्ट 28 अगस्त तक दाखिल की जाए। मोइत्रा के खिलाफ मुबैना तौर पर खवातीन की तौहीन और नफरत आमीज तकरीर करने का मामला है। अदालत ने इससे पहले इस मामले में उन्हें समन जारी किया था। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत में अमरीकी सफीर सर्जियो गोर ने मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर को भारत का अहम हिस्सा करार देते हुए कहा है कि मरकज और खित्ते की हुकूमतों ने सलामती की सूरत हाल में बेहतरी लाने के लिए अहम इकदाम किए हैं। जनाब गोर जम्मू कश्मीर के अपने पहले दौरे पर हैं जहां उन्होंने श्रीनगर में वजीर आला उमर अब्दुल्ला से उनकी रिहायशगाह पर मुलाकात की। उन्होंने वजीर आला के साथ अपनी मुलाकात को मुस्बत करार दिया और कहा कि फरीकैन ने मुस्तकबिल से मुतालिक अहम इकदाम पर तबादला ख्याल किया। जनाब गोर ने कहा कि हालांकि आज कोई रस्मी ऐलान नहीं किया जा सकता, ताहम सफर से मुतालिक एडवाइजरी में कमी लानी चाहिए क्योंकि नई दिल्ली और मकामी हुकूमत की कोशिशों की बदौलत सलामती की सूरत हाल में बेहतरी आई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पब्लिक सर्वेंट्स को मशवरा दिया है कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल सिर्फ मालूमात फराहम करने और शहरियों के साथ जुड़ने के लिए न करें बल्कि इसे उनकी शिकायतों को सुनने, समझने और कार्रवाई करने के लिए भी इस्तेमाल करें। सदर जमहूरिया ने जोर देते हुए कहा कि जब मालूमात

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है सार्वजनिक बैंकों का आधुनिकीकरण, युवा ऋण और डिजिटल विस्तार पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान के जोनल प्रमुख और वरिष्ठ बैंकिंग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र कुमार भसीन और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पत्रकार सौरभ शुक्ला।
2: सरकारी बैंकों की तरफ से दो दिन पहले ही एक मंथन किया गया और उसमें तमाम मुद्दे निकलकर सामने आए और साथ ही वित्त मंत्रालय ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई और एक रूपरेखा तय हुई कि आने वाले दिनों में बैंकिंग सेक्टर को किस तरह से काम करना है। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नरेंद्र कुमार भसीन साहब मौजूद हैं, जो जोनल हेड हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के, और साथ ही साथ अश्विनी राणा जी भी मौजूद हैं जो पुराने बैंकर हैं। आप दोनों से चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले नरेंद्र जी, आपसे समझना चाहेंगे कि 2 अक्टूबर से जो युवाओं के लिए एक महीने का विशेष बैंकिंग अभियान शुरू होने जा रहा है, इस अभियान के जरिए युवाओं को बैंकिंग से जोड़ने की आखिर जरूरत क्यों महसूस हुई?
3: नमस्कार। सो बेसिकली जो दो दिन का जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें जो 7 थीम थे, उन थीम में से एक सेकंड थीम था जो बैंकिंग फॉर यूथ करके था। और जो अभी इवन फाइनेंस मिनिस्टर सीधर मैम ने भी अपने इनॉग्रल सेशन में बोला कि 29% जो पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन हमारी जो कंट्री की है एंड 15-29 ईयर्स ऑफ एज के, तो जो ये लोग UPI इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल बैंकिंग को समझते हैं। तो अभी जो हमारे जिस तरह के 7 मुद्दे भी हैं और जिस तरह हम बैंकिंग कंसोलिडेशन करके मेन पर्पस था कि 4 बड़े बैंक हो, और इवन प्रधानमंत्री ने भी इंडिपेंडेंस डे के उसमें कहा कि उसमें से एक ऐसा बैंक होना चाहिए जो टॉप 5 ग्लोबल में आए। तो उसी मुद्दों को लेते हुए देखा जाए तो ये कि यंग जो जनरेशन है जो बैंकिंग को समझती है और बैंकिंग प्रोडक्ट को लाती है, तो इसीलिए ये फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि 2 अक्टूबर से जो एक यूथ कैंपेन दैट इज अ बैंकिंग फॉर यूथ करके लाया जाए। और अभी पब्लिक सेक्टर बैंक को जरूरत है कि हम वापस कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और स्किल सेंटर में जाएं जहां पे वहां के लोगों को, बच्चों को, यंग जो आप कह रहे हैं कि जेन जी, इनको फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में लाया जाए। हालांकि प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑलरेडी कैंपस प्लेसमेंट में जाते हैं, अपना इंप्लॉयज हैं, तो उससे एक नया लाइफ साइकिल अप्रोच जो हम अभी देख रहे थे कस्टमर का, हम सोचते हैं कि जब से वो खाता खोलता है लाइफ साइकिल अप्रोच, बट अब लाइफ साइकिल की जगह हमें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स की जरूरत है कि ताकि ये कैंपेन का भी यही फोकस है कि जैसा ज्यादा लोग टैक्स सेवी हैं यंग पीपल, और 66% UPI ट्रांजैक्शन जो 18-29 साल के बच्चे, क्योंकि ये मोबाइल बैंकिंग और ये बैंक में कम विजिट करते हैं, तो थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, तो इसी को ये सोचते हुए कि UPI और इन बैंकिंग प्रोडक्ट्स को बढ़ाते हुए, और मेनली जो हमारा विकसित भारत 2047 का भी यही है कि स्ट्रांग बैंक बने, बड़े बैंक बने, और इसीलिए अगर देखा जाए तो इसके लिए हमें यंग जनरेशन जो आज खाता ही नहीं और अदर तरह के क्रेडिट ट्रांजैक्शन में यूज करें, तो ये पर्पस है जिससे मतलब एक नया वेव बैंकिंग इंडस्ट्री में आएगा।
2: बिल्कुल। अश्विनी राणा जी, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि आपने एक लंबा समय दिया है बैंकिंग व्यवस्था को, तो 16 साल से ऊपर के युवाओं को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए बैंक जमीनी स्तर पर क्या क्या कदम उठाएंगे, क्या चुनौतियां हैं, और क्या आप एक कमी देखते हैं जो बैंकों की तरफ से युवाओं को आकर्षित करने के लिए अभी है और उसे आने वाले दिनों में पूरा किया जाएगा?
4: देखिए, एक अच्छा है कि भाई सरकार युवाओं को बैंकिंग के साथ जोड़ने की बात कर रही है। जैसे नरेंद्र जी ने कहा कि भाई बैंकों के साथ युवाओं को आज जोड़ने की जरूरत नहीं है, उनको जोड़ना चाहिए था स्कूल टाइम से। स्कूल में जब बच्चा एंटर होता है उसी समय उसका अकाउंट खुले, उसकी जो फीस है उसी अकाउंट में से चली जाए, तो उसको एक फीलिंग आती है कि मैं, हाँ, मैं पर्सनल बैंकिंग कर रहा हूँ। और आज का जो युवा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। पहले बैंकिंग थी क्या, बैंकिंग

0: विद स्माइल आज, क्योंकि वो बैंक जाता ही नहीं है। बहुत ऐसे युवा हैं कि खाता खोलने से 10-10 साल हो गए, वो बैंक कभी नहीं गए, वो सिर्फ ऐप से ही। लेकिन सरकारी बैंकों को उस जो जनरेशन है उसको अट्रैक्ट करने के लिए वो जो ऐप्स हैं या टेक्नोलॉजी है उसको आज के युग में लाना पड़ेगा। प्राइवेट बैंक उसमें बहुत पहले से हैं, तो इसलिए बैंकों को उस टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्व करना होगा और उसके लिए वैसी ही आपको ह्यूमन कैपिटल HR जो है, ह्यूमन रिसोर्स जो है, वो वैसे ही चाहिए। मशीनें सिर्फ नहीं काम कर सकती, ह्यूमन कैपिटल का भी टच बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, तो मशीनें काम नहीं कर सकती और एक बैंकिंग व्यवस्था में ऐसे काम करने वाले लोग होने चाहिए जो Gen Z कहें या जो उनके कस्टमर हैं, उपभोक्ता हैं, उनकी बातों को समझें और उनकी उम्मीदों पर खरे भी उतरे। नरेंद्र जी, सरकार युवाओं के लिए एक कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की भी बात कर रही है, ये इसकी रूपरेखा किस तरह की हो सकती है और खासतौर पर युवाओं की अगर हम बात की जाए तो उन्हें किस तरह की सुविधाएं मिल सकती हैं इसके जरिए?
2: देखिए, अभी जैसे मैंने बताया कि अश्विनी जी ने सही बोला कि राइट फ्रॉम स्कूल डेज से अगर बच्चों को बैंकिंग, तो यही थीम इस जो अपना कैंपेन है कि कैंपस टू कैरियर, जो स्कूल से कैरियर और कैंपस टू कैरियर। और जो आज का जो यंग जनरेशन है वो जैसे हमारे फॉर्म्स हैं, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स हैं, लंबे लंबे फॉर्म है साइन करना, क्रेडिट, अब ये जो बच्चे आज के जो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में इनमें आइडियाज होंगे और ये यंग बच्चे एंटरप्रेन्योर और बिजनेस, अब उसमें ये प्रॉब्लम आएगी कि अगर यंग उसका कोई क्रेडिट तो हिस्ट्री होगी नहीं, ना सिविल होगी कि पहली बार लोन रहे, तो इसलिए हमें डॉक्यूमेंटेशन और क्रेडिट कोलेटरल से उनके आइडियाज, उनके कैश फ्लो, जो उनके उस चीजों को देखना पड़ेगा। और मेनली ये कि इस कॉन्फ्रेंस का जो यंग जनरेशन का एक नया इनिशिएटिव लिया जो है, और उसी से ये कि आगे नए नए आइडियाज आएंगे, तो जो अगर इंटरनेशनल लेवल पे हमें जाना है ग्लोबली, तो यंग, क्योंकि हमारे कस्टमर भी यंग जनरेशन है, तो यंग प्रोडक्ट है। और जैसे अश्विनी सर ने बोला कि अब कस्टमर आता नहीं है बैंक, तो कस्टमर आएगा नहीं, तो ह्यूमन टच, और पर ह्यूमन टच बहुत जरूरी भी है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आर्टिफिशियल ही रहेगी, क्योंकि आर्टिफिशियल ह्यूमन जहां बैंकिंग है या कस्टमर है, दोनों ही ह्यूमन बीइंग है। तो इसलिए यंग जनरेशन को कैसे अट्रैक्ट करना है थ्रू मोबाइल, थ्रू इवन सीधर मैम ने ये भी बोला कि उसमें अट्रैक्ट करने के लिए जैसे हम लाइफस्टाइल वाउचर्स देते हैं या रिवॉर्ड पॉइंट देते हैं, वेलनेस है, तो इन चीजों को सारे नए प्रोडक्ट्स लाने पड़ेंगे, अट्रैक्ट करना पड़ेगा, ताकि यंग जनरेशन जो कल का जो हमारा फ्यूचर है बैंकिंग का, वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके।
1: बिल्कुल, ताकि भविष्य सुदृढ़ रहे, उस दिशा में ये कोशिश की जाएगी। अश्विनी जी, एक बड़ी चुनौती ये है कि आज का यूथ इंटरनेट पे रहता है, तमाम सोशल मीडिया एप्स पर रहता है, और उसके जरिए कहा जाए तो फायदा होने के बजाय कई मौकों पे नुकसान भी हो जाता है, युवा गुमराह हो जाता है, और वो तमाम अलग अलग एप्स जिनके कोई क्रेडेंशियल्स नहीं होते हैं वहां से भी वो लोन ले लेता है। तो क्या ये कहना सही होगा कि फॉर्मल जो बैंकिंग व्यवस्था से उसे जोड़ दिया जाएगा, तो युवा चाहे पढ़ाई की बात हो, नौकरी की बात हो, बिजनेस की बात हो, या निवेश जैसे अलग अलग वित्तीय फैसले हो, उन जरूरतों को इन बैंकों के जरिए पूरा किया जा सकता है?
0: नहीं, बहुत अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है, और उनके पास लिक्विडिटी भी है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है कि भाई उनको फंड्स की प्रॉब्लम हो या कोई भी चीज की प्रॉब्लम हो, बस ये है कि भाई उसके अंदर उनकी समय के अनुसार अपने आप में बदलाव, ये जरूरी है। और जहां तक आप ऐप की बात कर रहे हैं, ऐप के लिए सरकार को एक बहुत सख्त कदम उठाना पड़ेगा, जैसे और चीजों के लिए उठाते हैं, मेटा है या दूसरी कोई भी एजेंसी जो भी प्लेटफॉर्म है, कि भाई इस तरह की ऐड आती ही क्यों है। अब मैं बता रहा हूं आपको, बैंक वाले कोई पेंशनर का कार्ड इशू नहीं करते, लेकिन आप देखेंगे फेसबुक पर हर बैंक की ऐड आ रही है कि आप जो है पेंशनर हैं, तो आप इस बैंक का अपने पेंशन कार्ड बनवा लीजिए, और लोन लेने की और इतने भ्रामक प्रचार हैं, उसके ऊपर सरकार को सख्त कानून बना के, ताकि लोग उसमें ट्रैप ना हो जाए। भाई पढ़ा लिखा युवक तो समझ जाएगा, लेकिन जो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसे भी बहुत युवक हैं, वो उस झांसे में ना आए, वो भी हमारी बैंकों की और सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।
1: बिल्कुल, तो हाल ही में सरकार ने तमाम ऐसे ऐप्स को बैन किया है और इस तरह के ऐड भी बैन किए हैं, उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में इन नियम कानूनों को और सख्त किया जाए। नरेंद्र जी, इस दो दिनों के मंथन की अगर हम कहें तो उससे निष्कर्ष क्या निकलेगा? क्या बैंक सिर्फ इस नई व्यवस्था के जरिए खाता खोलने पर ही उनका फोकस रहेगा, या युवाओं को लंबे समय तक अपने साथ जोड़ने की भी कोई फुल प्रूफ एक योजना, एक प्लानिंग की जा सकती है इसके जरिए?
2: नहीं, कॉन्फ्रेंस जैसे मैंने बताया कि 7 थीम थे, 7 मुद्दे थे इसमें, जिसमें डिपॉजिट मोबिलाइजेशन पहला मुद्दा था, जिसमें जो कि बैंक के लिए कासा और एफडी वगैरह जो होता है उसी के बेस पे क्रेडिट होता है। सेकंड जो बैंकिंग फॉर यूथ था, फिर इन्वेस्टमेंट साइकिल, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर जो कि इंटरनेशनल की तरफ जाना है तो हमें बड़े बड़े, एग्रीकल्चर पे फोकस तो है ही, और इवन क्रेडिट कार्ड बिजनेस को भी रिवैम्प करेंगे नए तरीके से, और फिर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो सभी जो

0: मुद्दों का यही था कि इसमें अब एक्शनेबल होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए और पीपल सेंट्रिक आउटकम, मतलब कि जो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेसिकली आपने देखा होगा बजट फरवरी में एक हाई पावर कमेटी बैंकिंग के लिए एक बनाने की जो हुई थी, तो बेसिकली उसी का अनाउंसमेंट इवन फाइनेंस मिनिस्टर इनॉग्रेशन बोला कि आजकल में अनाउंस हो जाएगा, और उसी के लिए ये जो कॉन्फ्रेंस है जिसमें 125 एमडी सीएमडी बड़े बड़े लोग आए, जो यहाँ पे जो डिस्कशन हुआ 2 दिन का, वो एक मटेरियल रेडी हो रहा है जो मटेरियल उस कमेटी को प्रेजेंट किया जाएगा। तो मेनली उसमें से यूथ का, जैसे आपने बताया कि यही था, एफएम का भी था कि यूथ को हमें जल्दी कैप्चर करना पड़ा, ये नहीं कि हम उनको वेट करना है कि जब उनकी जॉब लग जाए या फर्स्ट सैलरी अकाउंट खोले। और जैसे अश्विन ने बताया कि बैंकिंग के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, राइट फ्रॉम द एजुकेशन लोन से लेके स्किल डेवलपमेंट, आजकल अप्रेंटिसशिप भी आ रही है, इंटर्नशिप्स भी स्टूडेंट को दिया जाता है ताकि उनको यंग कस्टमर को एजुकेशन फाइनेंस से लेके फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट, पहला क्रेडिट, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्टमेंट, ताकि वो वेल्थ क्रिएशन की तरफ जा सके। और पब्लिक सेक्टर बैंक का जैसे ऑलरेडी हमारे पास नंबर ऑफ ब्रांचेस है, हमारे पास एजुकेशन लोन है, तो इसी तरह एक रिस्पॉन्सिबल क्रिएट करके जो यंग कस्टमर को अ कस्टमर फॉर लाइफ हमेशा के लिए, ताकि हम जैसे हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी कहते हैं, ताकि उनको एक्वायर करके और उनको एक जॉब्स मिलती हैं तो नया रोजगार बनता है, बिजनेस डेवलपमेंट होता है। तो इसलिए कैच दिस पीपल यंग जो है, वही हमारा मुद्दा इसमें, और इसी के ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि जितना जल्दी हम यूथ को एंगेज करेंगे उतना ही वो रिस्पॉन्सिबल भी रहेंगे, और जब उनको सेविंग के हैबिट्स पता चल जाए, एफडीज वगैरह या अदर देन ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड, तो उनको अलग अलग इन्वेस्टमेंट के पैटर्न पता चल जाएंगे। तो इसलिए कि स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल जर्नी उनको जितना जल्दी हम फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में ले आए, वो हमारे लिए भी फायदा, और बेसिकली ये जितने भी हमारे साथ जो 2 दिन डिस्कशन हुआ, बेसिकली वही है कि कोलैबोरेशन है और अपना कस्टमर वेलफेयर के ऊपर फोकस है और एक ट्रस्ट के ऊपर, क्योंकि टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी इनके ऊपर भी डिस्कशन था कि जितना जितना सेफ बैंकिंग हम इसको करेंगे, तो डाटा एनालिटिक्स की बातें भी थी। तो ये सारे जितने भी मुद्दे आइडियाज हैं, इनको अब फॉर्मली करके जो हाई कमेटी उसके आगे प्रेजेंट करके आगे ले जाया जाएगा।
1: दूसरे दिन के इस कॉन्फ्रेंस में जो चर्चा हुई थी, वो जो थीम थी उसमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, वैल्यू चेन, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने को लेकर बात हुई, और साथ ही प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात की गई। खासतौर पर ये वो कर्ज होते हैं जिसके तहत किसानों को, छोटे कारोबारियों को और कमजोर वर्ग को कर्ज दिया जाता है। तो आप आज के दौर में इस तरह के कर्ज में सबसे बड़ी दिक्कत क्या देखते हैं जो आने वाले दिनों में इस कॉन्फ्रेंस के बाद बैंक दूर कर सकते हैं?
0: प्राइवेटी सेक्टर लेंडिंग में वो ये कि जो हम लोन वगैरह देते हैं उसका, फिर अभी एनपीए तो काफी हमारा रिजॉल्व हो गया, जो 14.6 से 0.39 आ गया। अब प्राइवेटी सेक्टर लेंडिंग हो गया, एग्रीकल्चर फार्मिंग, उसमें बेसिकली रिकवरी और क्रेडिट मॉनिटरिंग का ज्यादा फोकस रहता है। तो इस कॉन्फ्रेंस में इसका भी फोकस भी गया कि एसेट क्वालिटी तो इम्प्रूव हुई है हमारी सब्सटेंशियली, और एसेट क्वालिटी को फर्दर अब ये हमारा कि फोकस ज्यादा कि नंबर और टारगेट भी नहीं होना चाहिए कितने लोन करने हैं हमें, क्वालिटी लोन होने चाहिए ताकि जिस पर्पज के लिए, और फिर फॉलो अप रिकवरी और मॉनिटरिंग जो सबसे जो मेन रीजन रहता है कि एनपीए हो जाता है कि हम लोन तो दे देते हैं पर उसके बाद मॉनिटरिंग नहीं हो पाती, रिकवरी नहीं हो पाती। तो इसी कॉन्फ्रेंस का ये कि इसको और लोगों को, और ये नहीं कि जब किसान या जो भी प्राइवेट सेक्टर अप्रोच करे तो बैंक को भी टाइम टू टाइम असेसमेंट करना पड़ेगा कि कितना कब कब उसको लोन चाहिए या आगे उसको फर्दर ग्रोथ करना है। तो रोल काफी चेंज होने वाला है बैंकिंग का, जो क्रेडिट मॉनिटरिंग है ताकि एनपीए को अब एक बार कम हो गया, ये नहीं कि दोबारा हो जाए, तो उसको मॉनिटरिंग करने के लिए फॉलो अप और थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच उसमें लानी पड़ेगी।
1: बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच लानी पड़ेगी, बैंकिंग काफी बदल गई है। तो अश्विनी जी, आपसे ये समझना चाहेंगे इसी सवाल का एक एक्सटेंशन कहें तो, सरकार ने बैंकों से कहा है कि कर्ज देने के अपने लक्ष्य में किसी भी तरह की कमी न रहने दे, तो इसे सुनिश्चित करने की अगर हम बात करें तो बैंक अपने अंदर क्या बदलाव करेंगे, क्योंकि ब्रांच पहले से है, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही मौजूद है, अब एक सिर्फ अप्रोच को बदलने की जरूरत है, तो वहाँ क्या बदलाव आप देखते हैं होगा आने वाले दिनों में?
2: आपने सिर्फ लोन ही नहीं देना, लोन देने के बाद उसकी फॉलो अप प्रॉपर यूज हो रहा है, उसकी इंस्टॉलमेंट आ रही है, रिकवरी है, वो चीजें भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए टारगेट ज्यादा ना फिक्स करके उसको इनिशिएट करके कि भी हाँ भाई ज्यादा तो लोगों तक वो पहुंचे, वो एक बहुत जरूरी है। और उसके लिए आपको कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेस, मुझे लगता है जैसे आपने एक हाउसिंग लोन के लिए, कार लोन के लिए कुछ अलग अलग ब्रांचेस स्पेसिफिक बना दी, वैसे इनके लिए आपको स्पेसिफिक ब्रांचे और उस तरह का जो स्टाफ है वो भी रखना पड़ेगा। अब आप एक देखिए, आज गोल्ड लोन कितना पॉपुलर है, गोल्ड लोन बैंक भी करना चाहते हैं, आप उसके लिए स्पेसिफिक ब्रांचें बना दीजिए, तो उससे क्या होगा, वो उस ब्रांच के अंदर उसका जो उसको स्कैन करने का कि गोल्ड ओरिजिनल है वो भी रहेगा, गोल्ड को सिक्योरिटी के तरीके से भी। तो यानी हर, अब एग्रीकल्चर जो लोन है वो हर ब्रांच में तो नहीं हो सकता,

0: तो उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर आपको उस तरह की वर्कफोर्स भी एडिशनल डालनी पड़ेगी अगर वहाँ आप कोई चीज़ को अचीव करना चाहते, वो एक बहुत जरूरी है। और दूसरा, आप जैसे डिपॉजिट की बात मोबिलाइजेशन की गई, हम यंगस्टर को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन आज यंगस्टर की आदत क्या है, बाई टूडे पे टूमारो, तो वो डिपॉजिट की बात ही नहीं सोचता। तो आपको डिपॉजिट का कोई ऐसा अट्रैक्टिव प्लान लाना पड़ेगा ताकि वो अट्रैक्ट हो, पुराने एफडी और सेविंग से वो आपके पास, और डिपॉजिट के बिना बैंकिंग नहीं हो सकती भाई। आपके पास अगर फंड्स नहीं है तो आप फाइनेंस कहाँ से करो? तो आपको जो डिपॉजिट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी उन जनजी के अकॉर्डिंगली आपको बनाने पड़ेंगे, तभी आप वो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन भी कर सकते
1: हैं जी। और एक जो क्रेडिट कार्ड को लेकर के और एक क्रेडिट व्यवस्था को लेकर के भी खास अहम चर्चा हुई, एक थीम थी, उसको लेकर आपका अश्विनी जी क्या कहना है कि वो कितना जरूरी रहेगा आज के माहौल में, खासतौर पर युवाओं की बात करें तो?
0: उनकी एक भी सोच है बाय टुडे पे टुमारो, तो वो उनके लिए क्रेडिट कार्ड एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, मतलब बैंकों के लिए भी, क्योंकि वो एक टारगेट है उनके लिए। लेकिन उसके अंदर भी आपको देखना पड़ेगा कि वो उसको प्रॉपरली यूज कर रहे हैं और उसकी रिपेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आज भी आप देखोगे तो बहुत सारे बैंकों का जो एनपीए है या वो क्रेडिट के कार्ड के कारण ही है, क्योंकि वो उस तरह उसकी आप सर्विस नहीं कर पाते उसको देने से पहले, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हैं, अब नए भी फिर आप ले आएंगे। तो क्रेडिट कार्ड क्योंकि वो विदाउट एनी सिक्योर लोन नहीं है, वो तो उसको आप किसको दे रहे हैं? अब आप देखें कि मेट्रो स्टेशन पर भी क्रेडिट कार्ड बांट रहे होते हैं, अरे भाई उसकी क्रेडिबिलिटी तो हो कि भाई वो पे कर सके, जितनी उसकी लिमिट बना रहे हो उसकी सैलरी तो इतनी हो, तो उसको भी आपको सारी चीजों को फोकस करके उसको जो है प्रमोट और करने की जरूरत है।
1: यानी कस्टमर स्पेसिफिक लिमिट और इन सारी चीजों पर ध्यान रखते हुए उसको दिया जाएगा, तो एक तरह से एनपीए पे कहें काम।
0: हाँ भाई, सिर्फ ये नहीं कि हाँ भाई नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड हमने इतने दे दिए, आप किन को दे रहे हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट।
1: बिल्कुल, आंकड़े बढ़ाने से बात नहीं बनेगी। नरेंद्र जी, जिस तरह से डिजिटल व्यवस्था तेजी से बढ़ रही है बैंकिंग सेक्टर में, उसके साथ ही साथ साइबर फ्रॉड भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है, तो ग्राहकों को और उनके पैसे को सुरक्षित रखने के लिए आपको क्या लगता है बैंकों की तरफ से किन नए प्रयासों की जरूरत है?
2: नहीं, ऑलरेडी इसमें काफी बैंकों ने भी, इवन गवर्नमेंट में भी, और काफी अवेयरनेस है, और साइबर सिक्योरिटी के अवेयरनेस, इवन आरबीआई का भी आपने देखा, आरबीआई कहता है उनके वेबसाइट में, और इवन डिजिटली, तो क्योंकि आपकी बात सही है कि एक तरह हम कह रहे हैं कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, यूपीआई बढ़ रहा है, पर उधर से साइबर फ्रॉड भी बढ़ रहे हैं और तरह तरह के फ्रॉड आ रहे हैं, लाइक हमने फिशिंग है, विशिंग, ईमेल से भी ओटीपी आ गया, तो अवेयरनेस का काफी बैंक्स भी, हर बैंक अपने देखा गया है। अभी हमने अभी रिसेंटली एक बैंक का ट्रेनिंग किया, तो उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग से पहले 15 मिनट एक साइबर के ऊपर की टाइप्स साइबर डूज एंड डोंट की कैसे, तो कस्टमर अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट, डिजिटल रिस्क जैसे आपने देखा कि आजकल काफी, तो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, प्लस अपना गवर्नमेंट की हेल्पलाइन है I4C इंटरनेशनल, अपना कोऑर्डिनेशन सेंटर है 1930 पे कॉल करके, बट वो ये कि जितना अवेयरनेस लाएंगे जितना लोगों को, अब ओटीपी के ऊपर काफी हुआ तो अब लोगों को ओटीपी समझेंगे कि नहीं करना, बट कई बार फिशिंग ईमेल आ जाता है या कहीं मिक्स करके कोई मैसेज आ गया, तो टाइम टू टाइम हर फॉरम में इवन बैंक्स अपनी मीटिंग्स में कस्टमर अवेयरनेस, इवन फ्रंटलाइन स्टाफ को भी बोलेगी हर तरह का अवेयरनेस लाए, बिकॉज जब तक हम साइबर फ्रॉड को कंट्रोल नहीं करेंगे तो डिजिटल का जो हमारा बेनिफिट हो रहा है वो नुकसान में, तो इसलिए काफी बैंक्स, गवर्नमेंट, इवन साइबर, हर पुलिस स्टेशन भी, साइबर पुलिस स्टेशन भी जहाँ पे हेल्प है कॉल कर सकते हैं आप इमीडिएटली, आप जो वेबसाइट है हेल्पलाइन साइबर सिक्योरिटी 1930 और ये www.cyber, तो साइबर सुरक्षा कवर में वहां जाके अपना आधार कार्ड और नंबर नोट कीजिए, और जो भी आपका कोई स्कैम या फेसबुक या जो भी इंस्टाग्राम हैक हुआ है तो इसमें आजकल काफी फास्टली, और ये कि आपको जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे उतना जल्दी उसका समाधान मिलेगा।
1: तो अश्विनी जी, आम ग्राहकों को इसने किस तरह से भागीदारी देनी चाहिए कि वो एक अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए साइबर ट्रैप में ना आए?
0: ग्राहकों को तो निश्चित रूप से क्या है कि जो जो गाइडलाइंस बैंक जो है इशू करते हैं टाइम टू टाइम, भाई किस तरह के, अब जैसे SMS है तो SMS मतलब किसी बैंक के नाम का आया है अगर, और उसके आगे S लगाए तो ही वो जेन्युइन बैंक का मैसेज है, अदरवाइज अगर उसमें लास्ट एक S अल्फाबेट नहीं है तो वो नहीं है। दूसरा, उसकी जो वेबसाइट है उस पे भी आप जाते हो या मेल है bank.in, बैंकों की आज एक ऑथेंटिकेटेड मेल है, उसके अलावा किसी को नहीं। कहीं से भी फोन आता है तो आप उसको रिस्पॉन्ड मत कीजिए, कोई मैसेज आता है विदाउट एस आप उसको रिस्पॉन्ड मत कीजिए, तो ही बच सकते हैं। उसके साथ साथ बैंकों को भी डाटा सिक्योरिटी के लिए अभी बहुत सारी चीजें आरबीआई कर रहा है, म्यूल हंटर उन्होंने एक ऐप बना दिया, लेकिन वो म्यूल हंटर ऐप तब काम करता है जब

0: फ्रॉड हो चुका होता है, उससे पहले वो अकाउंट, क्योंकि अकाउंट तो एक ऑर्डिनरी अकाउंट है, वो कब म्यूल अकाउंट बनता है जब फ्रॉड और उसमें पैसा आ जाता है, तो उसको भी जो बैंकों का जो टेक्नोलॉजी है उसको भी और जो है अपग्रेड करने की जरूरत है कि भाई कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो फ्रीक्वेंटली हो रही है, क्योंकि ब्रांच में बैठा, कई बार लोग कहते हैं कि ब्रांच मैनेजर जिम्मेवार है, ब्रांच मैनेजर को पता ही नहीं, क्योंकि सारा कुछ सेंट्रल सर्वर से जो ट्रांजेक्शन है वो मूव होती है, तो वहां पर इतनी ज्यादा उसको आपको अवेयरनेस चाहिए कि वो आपके पास वो टेक्नोलॉजी चाहिए, वैसे स्टाफ चाहिए। अब बैंक में क्या है कि बैंक में जो टेक्नोलॉजी के लोग हैं उनको भी आप जनरल इम्प्लाई की तरह ट्रांसफर कर देते हो, जो एक ट्रेंड होता है, तो कम से कम जो टेक्नोलॉजी और के साथ लोग हैं वो रेगुलर उस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में रहें, ताकि उनका जो एक्सपीरियंस है वो काम आ सके। उनको जनरल बैंकर इम्प्लाई मत समझिए, तभी जाके आप कर सकते हैं, नहीं तो नए नए लोगों को लाते रहेंगे, क्योंकि आप उसको आउटसोर्स भी नहीं कर सकते। तो वो बहुत सारी चीजें हैं जो, और दूसरा ये जो सारी चीजें आई हैं, जो बात वहां पर हुई है बहुत अच्छी है, और जब ये हाई पावर कमेटी बनेगी तो मेरा ये सुझाव है हाई पावर कमेटी को अलग अलग ग्राउंड रियलिटी के लोगों से बात करके उसके अंदर बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटी भी जानना उस कमेटी के लिए बहुत जरूरी है।
1: नरेंद्र जी, 2 दिन की बैठक में 7 अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, तो अब इन चर्चाओं को जमीन पर लागू करने के लिए अगला कदम बैंकों की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या होगा?
2: सरकार का यही मैंने बताया कि जो जितने भी डिस्कशन हुए, तो जैसे FM ने बोला कि जितना भी मटेरियल यहाँ पे इकट्ठा होगा उसी सारे मुद्दों को एक कंसोलिडेट करके जो अब नेक्स्ट जो मीटिंग होगी, जो हमारा बेसिकली इन 7 दिनों का जो अब निचोड़ देखें तो बेसिकली वही है कि टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट के ऊपर बात हुई, कस्टमर सेंट्रिसिटी क्या रहेगा कि अल्टीमेटली देखो डिजिटल हो या साइबर सिक्योरिटी से बचाना, तो मेनली कस्टमर सेंट्रिसिटी और कस्टमर इम्प्रूवमेंट के ऊपर ही है। तो कोलैबोरेशन मैसेज है यहाँ पे, कॉमन मैसेज की IT और डिजिटल ये सबको एक, और मेनली डिपॉजिट मोबिलाइजेशन तो जैसे अश्विन सर ने बोला कि बैंक के लिए इम्पोर्टेंट है उसी के बेस पे, और यूथ बैंकिंग को जो हम ऐड करेंगे तो उससे हमारा जो एक नया वेव उसमें आ जाएगा। और बट अल्टीमेटली देखा जाए तो क्वेश्चन ये उठेगा कि पब्लिक सेक्टर नंबर ऑफ ब्रांचेज है, उनका स्केल काफी बड़ा है, टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशनल की बात करें तो ये कि अब हम लार्जर बैलेंस शीट्स के ऊपर तो फोकस धीरे धीरे हमारा मूव हो रहा है, तो और बैंक्स को थोड़ा एजाइल होना पड़ेगा, थोड़ा डिजिटल के साथ सेफ एंड सिक्योर, और नेक्स्ट जो इंडिया का नेक्स्ट फेस ऑफ ग्रोथ इसी के ऊपर है, क्योंकि अगर हम विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं, तो अगर हमें बड़े बैंक बनाने हैं विद बेस्ट कस्टमर सर्विस, बेस्ट डिजिटल प्रोडक्ट, तो आई थिंक ये नेक्स्ट स्टेप यही होगी जो भी यहाँ पे 2 दिन के डिस्कशन हुए, पावर कमेटी के लिए ऐसा मटेरियल बनेगा, और जैसे श्री सर ने कहा कि डाउन द लाइन रियलिटी से जरूर जुड़ी है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि जो आम कस्टमर होता है वहां तक उसको बेनिफिट नहीं पहुंच पाता, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। और जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो बैंकर कस्टमर के पास पहुंचता है, मतलब डोरस्टेप बैंकिंग है, तो वहां पब्लिक सेक्टर बैंक में थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि ये नहीं कि वेट करना कि कस्टमर ब्रांच में आए, तो हम एज अ बैंकर ऑल्सो वी कैन कस्टमर को वहां पे अवेयरनेस है और ऑन द स्पॉट डेमोन्स्ट्रेट करके चीजें बतानी ज्यादा जरूरी होंगी।
1: लेकिन क्या ये कहना सही होगा कि हालांकि निजी बैंक की तरफ से भी अच्छा काम हो रहा है और सरकारी बैंक की तरफ से, लेकिन सरकारी बैंक का जब दायरा बढ़ेगा तो लोगों का बैंकिंग व्यवस्था की तरफ भरोसा भी और ज्यादा मजबूत होगा, ये भी इस पहल के जरिए देखने को मिलेगा?
2: हाँ देखिए, दोनों ही, क्योंकि पब्लिक सेक्टर सरकारी बैंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इसमें, और प्राइवेट सेक्टर ने जो एक नया यंग जनरेशन और इनके प्रोडक्ट्स, और क्योंकि वहां पे है कि स्टाफ भी यंग है, कस्टमर भी यंग है, तो एक माइंडसेट और वो बात होती है, बट आई थिंक दोनों को मिलकर ही प्राइवेट सेक्टर बैंक तो रहे ही है, क्योंकि जितने भी हमारे सरकारी बैंक है 100 साल, 118 साल, कोई 120, तो वो तो हमारा रहेगा, बट जब दोनों साथ में काम करेंगे तो नेचुरली ग्रोथ तो उसमें आएगा बैंकिंग में।
1: एक अहम बदलाव अगर हम बात करें इस कॉन्फ्रेंस के बाद में, तो क्या बैंकिंग सेवा में किस तरह का बदलाव हमें दिखेगा आने वाले दिनों में?
2: बदलाव देखिए, अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के काफी मुद्दा इसमें रहा, क्योंकि डिजिटली जितना अब हम डाटा एनालिटिक्स की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, तो अभी ये है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अब रुकेगा नहीं ये, क्योंकि अभी अगर 30 साल पहले देखा जाए तो मैनुअल बैंकिंग से हम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो डिजिटल है तो फिर यंग जनरेशन है, तो अगर उस दोनों को देखा जाए तो डिजिटल बैंकिंग अब धीरे धीरे बढ़ेगी, और उसको कैसे हम सिक्योर कर सकते, इसलिए साइबर सिक्योरिटी जो डिफरेंट 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, ईमेल क्वेश्चनर है, अवेयरनेस है, तो डिजिटल तो हमारा फ्यूचर है, इवन फॉर्मल RBI गवर्नर शक्ति का

0: दास ने भी एक लास्ट कॉन्फ्रेंस में बोला था कि भाई फ्यूचर इज मनी इज नाउ डिजिटल ही है, उसके बैक नहीं जा सकते हम, तो सीबीडीटी है या डिजिटल करेंसी या आरटीजीएस, यही हमारे ऐसे है जो अब डायरेक्टली धीरे धीरे बैंकिंग का बेस बनेंगे।
1: अश्विन जी, 2047 तक सरकार भारत को एक विकसित देश बनाने की बात कर रही है, तो इस लक्ष्य में आप सरकारी बैंकों की सबसे बड़ी भूमिका क्या देखते हैं?
2: देखिए, सरकारी बैंकों की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है, क्योंकि सरकारी बैंक जो है उनका एक जो कस्टमर बेस है वो भी एक वाइड है, और वहीं प्राइवेट सेक्टर जो है वो एक पर्टिकुलर क्लास को जो है सर्व कर

0: के लिए वैसा ही माइंड सेट चाहिए। अगर आप उस माइंड सेट के साथ जाएंगे, उस प्रोडक्ट के साथ जाएंगे, उस जील के साथ जाएंगे जो उनसे बात कर सकता है, तभी आप उनको अट्रैक्ट कर सकते हो। उसके लिए वैसा आपका माइंड सेट चाहिए और वैसे ही आपके पास वर्क फोर्स भी चाहिए।
1: नंदा जी, जो एक नए तरह के वर्क फोर्स और नए स्वरूप की बात की जा रही है, तो आपको क्या लगता है क्या नए प्रोडक्ट्स बैंक लेकर के आ सकते हैं? क्योंकि आप लोगों ने एक लंबा दौर देखा है बैंकिंग व्यवस्था में बदलाव का। पहले बैंक सिर्फ कैश जमा करने और देने का काम करते थे, फिर वहां पे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की भी एंट्री होती है और अब उसका स्वरूप लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है क्या नए तरह के प्रोडक्ट, किस तरह के प्रोडक्ट्स दिखाई दे सकते हैं जो लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो?
2: देखिए, बैंकिंग प्रोडक्ट्स अगर इस पर RBI देखे तो हमारे वो ट्रेडिशनल वही है, सेविंग है, करंट है या फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट। बट अभी जो यूथ जो अगेन उसमें इंटरेस्टेड नहीं है यंग जनरेशन, क्योंकि डिपॉजिट में अगर हम 3-4% की बात करें या 6-7% की, तो वो फिर यंग जनरेशन रिस्क थोड़ा ज्यादा ले सकते, तो इसलिए मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्ट में जाते हैं। तो वहां पे इनको अपना म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं, और बैंक्स के कई बैंक्स ने टाइप भी किया हुआ है कि म्यूचुअल फंड हो गए आपके, यूलिप प्रोडक्ट या यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस, जहाँ की थोड़ा सा रिस्क है, बट उसके साथ जो यंग जनरेशन है या जो नया कस्टमर हमारा जो बैंकिंग में आएगा, उनको थोड़ा सा मार्केट के ऊपर थोड़ा सा स्टडी करने का, थोड़ा सा स्टॉक मार्केट, तो बेसिकली न्यू प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, जैसे यूनिट लिंक इंश्योरेंस या FD के साथ है, या आप जैसे रेकरिंग डिपॉजिट की जगह अब सिप्स सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, हर महीने आप 1000 करते हैं, वो मार्केट के उतार चढ़ाव देखते रहे अल्टीमेटली। तो ये कि अब जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, बैंकिंग कस्टमर भी यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि डिपॉजिट पे अब कस्टमर कम होते जा रहे हैं, बिकॉज लोग म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट या यूनिट लिंक इंश्योरेंस या इन चीजों के ऊपर। तो यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन हमें बनाने पड़ेंगे, कॉम्बो प्रोडक्ट जिसे कह सकते हैं, जैसे अब जनरल इंश्योरेंस है, मेडिक्लेम है, PPF वगैरह, तो अब हर तरह का उसमें एक फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बनाना पड़ेगा। अब जो आज का जो बैंकर है वो खाली बैंकर नहीं है, अब कस्टमर के साथ वेल्थ क्रिएशन है कि अगर 1 लाख रुपया देता है तो उसको कैसे डिवाइड करेगा, तो अब थोड़ा सा फाइनेंशियल प्लानर के रूप में बैंकर को बनाना पड़ेगा यंग जन पीपल को, क्योंकि जब जैसे जैसे एज यंग होते हैं तो लोग रिस्क है, उसके बाद फिर हमारे पास पेंशन प्लान है, तो एक बार जो कस्टमर अकाउंट खोलता है, यंग जनरेशन एजुकेशन लोन से लेकर सैलरी अकाउंट से धीरे धीरे फिर इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, तो इन्हीं कॉम्बो प्रोडक्ट्स को ऐसा बनाना पड़ेगा जो अट्रैक्टिव हो या जिनको उनको लगे कि यस उसके बैंक के साथ जुड़े रहेगा तो आगे उसको। और बेसिकली अगेन पब्लिक सेक्टर बैंक नंबर ऑफ ब्रांचेस हमारे पास काफी हैं, हमारा रीच काफी है, तो इन्हीं को देखते हुए अगर ट्रस्ट है बैंक के ऊपर है और हमारा रीच है, तो मॉडर्न बैंकिंग का एक ग्लोबल कॉम्पिटेटिव इंस्टीट्यूशन बन सकता है, और यही हमारा 2017 का मुद्दा भी है कि हमें टॉप ग्लोबल इंस्टीट्यूट बैंक बनाने।
1: और एक आखिरी सवाल का जवाब आपसे ये भी चाहेंगे कि एक तरह से फाइनेंशियल हिस्ट्री भी एक यंग एज से देश के लोगों की तैयार होने जा रही है, तो उससे किस तरह के फायदे लोगों को मिले?
2: फायदे तो देखिए, जितना जल्दी अगर हम बैंकिंग से जुड़ते हैं, जितना जल्दी हम अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उतना ही फायदा होता है। तो इसीलिए मैम ने बोला कि सीधा मैम ने कि हम कॉलेजेस में जाएंगे, वहां पे बच्चों के हैबिट्स बनाएंगे, सेविंग्स वगैरह हुआ, तो धीरे धीरे उनको बैंकिंग इंपॉर्टेंस पता चलेगी। तो इसी ये नए प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, प्लस डिजिटल है और थ्रू डाटा एनालिटिक्स हम जो क्रॉस सेलिंग अप सेलिंग करते हैं, तो इन सबको अगर इकट्ठा लेके चलेंगे तो आई थिंक हमारा डिपॉजिट भी बढ़ेंगे और एक जो हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन और सभी के जितने सभी का खाता हो, जितने लोग बैंकिंग में आएंगे और उतने ही प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे।
1: श्री जी, आपसे भी एक सवाल का जल्दी से जवाब चाहेंगे कि अगर इस कॉन्फ्लुएंस का सबसे महत्वपूर्ण नतीजा बताना हो जो आम लोगों, युवाओं और किसानों के लिए सीधे फायदेमंद हो, तो वो क्या होगा?
0: वो ये है कि बैंकिंग को 2047 में किस रूप में हम देखना चाहते हैं, मतलब वो सभी जितने भी स्टेक होल्डर हैं, चाहे यूथ है, चाहे एग्रीकल्चर है, ट्रेडर है, MSME है, सबकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए और सबको सर्व करने वाला बैंक चाहिए। तो वो दोनों तरफ से है, मतलब वैसा ही आपको कस्टमर बेस चाहिए और वैसा ही ये चाहिए।
1: बिल्कुल, तो अब देखना होगा सरकारी बैंक या तमाम बैंकिंग व्यवस्था इन चीजों को किस तरह से अमलीजामा पहनाती है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
3: नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे सार्वजनिक बैंकों का आधुनिकीकरण, युवा ऋण और डिजिटल विस्तार पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान के जोनल प्रमुख और वरिष्ठ बैंकिंग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र कुमार भसीन और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।

चर्चा का विषय है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। रात के 10 बज चुके हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार। श्रोताओं, दिन भर की भागदौड़ को समेट कर जब वक्त कुछ खूबसूरत नगमों के नाम हम देते हैं तो कुछ मीठी यादों के नाम और उन एहसासों के नाम भी देते हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ संगीत ही शब्द दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा खास फिल्म संगीत का कार्यक्रम, जहाँ हर गीत अपने साथ एक कहानी, एक मौसम और दिल का कोई ना कोई एहसास लेकर आता है। और आज की इस सुहानी महफिल का आगाज करते हैं सावन की रिमझिम फुहारों और झूले की मस्त पैंगों के साथ। सावन आए और मन में किसी अपने के आने की आस ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है।

कुछ रिश्ते जिंदगी से दूर होकर भी दिल से कभी दूर नहीं होते, बस एक खामोश सी याद बनकर हमारे साथ चलते रहते हैं और फिर कभी सामना हो ना हो लेकिन कोई मौसम, कोई खुशबू, कोई याद, कोई धुन या तन्हाई का एक पल अचानक उसी शख्स को हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है। यादों की भी अपनी एक अजीब दुनिया होती है जहाँ कोई पास नहीं होता, फिर भी उसकी मौजूदगी हर वक्त महसूस होती है। आंखें बंद करें तो चेहरा सामने आ जाता है और दिल चुपचाप कह उठता है, काश उन पलों में जिंदगी फिर लौट जाए। तो आइए आज संगीत की इस महफिल में ऐसी ही यादों को फिर से ताज़ा करते हैं।

कभी कभी दुनिया की भीड़ में तमाम अपनों के होने के बाद भी दिल बिल्कुल अकेला हो जाता है, और तब किसी ऐसे हमसफर को तलाश करता है जिसके साथ खामोशी भी खूबसूरत लगे। रात की तन्हाई में जब यादें दस्तक देती हैं तो लगता है जैसे कोई दूर होकर भी बहुत करीब हो। मोहब्बत में इंतजार का अपना ही रंग होता है। आंखें किसी की आहट को ढूंढती हैं, दिल किसी की आवाज का इंतजार करता है, और होंठ अनकहे सवाल पूछते रहते हैं, आखिर वो शख्स कहाँ है जिसकी कमी हर वक्त महसूस होती रहती है। तो आइए इस रात की खामोशियों में थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा इंतज़ार और थोड़ी सी तन्हाई और घोलते हैं और सुनते हैं एक ऐसा नगमा जो अकेले दिल की उसी तलाश को आवाज़ देता है।

मोहब्बत सिर्फ खुशियों में साथ चलने का नाम नहीं है। सच्ची मोहब्बत तो शायद वही है जहां इंसान अपने प्रिय की मुस्कान के पीछे छुपे दर्द को भी महसूस कर ले, जहां सामने वाला कुछ कहे बिना ही अपने हम सफर की आंखों की नमी को पढ़ ले और उसके हिस्से की तकलीफ को अपने दिल में जगह देने का हौसला रखे। कभी कभी जिंदगी किसी अपने को ऐसे मूड पर लाकर खड़ा करती है कि जहां शब्द बहुत छोटे पड़ जाते हैं, तब प्रेम किसी वादे की तरह नहीं बल्कि एक एहसास की तरह सामने आता है। जैसे तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है और तुम्हारा दर्द मेरा दर्द। तुम्हारे जीवन में अगर कोई मुश्किल है तो काश मैं उसे थोड़ा कम कर सकूं।

काश तुम्हारे चेहरे की उदासी अपने हिस्से में ले सकूं। शायद इसी एहसास का नाम है बेपनाह मोहब्बत, जहां पाने से ज्यादा मायने रखता है किसी के लिए अपना सब कुछ लुटा देना। जहां दिल कहता है तुम्हें अकेले नहीं सहना है, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर सुख में भी हर दर्द में भी। तो आइए आज की इस सुरीली रात में सुनते हैं प्रेम की इसी गहरी संवेदना से सजा एक खूबसूरत नगमा, जो रिश्तों में साथ निभाने की उस खूबसूरत भावना को आवाज देता है, जहां मोहब्बत सिर्फ महसूस नहीं की जाती बल्कि निभाई भी जाती है।

रात जब अपने शबाब पर होती है, आसमान में घने बादल छाए होते हैं और चारों तरफ खामोशी उतर जाती है, तब दिल की आवाज कुछ और साफ सुनाई देने लगती है। बारिश की आहट, हवा की नमी और दूर कहीं बहते हुए पानी की आवाज, ये सब मिलकर जैसे किसी अधूरी कहानी के पन्ने खोल देते हैं।

ऐसे मौसम में अगर कोई अपना पास ना हो तो हर छोटी सी चीज़ उसकी याद दिलाने लगती है। कभी बादल उसकी तस्वीर बन जाता है तो कभी हवा उसका संदेश लेकर आती हुई लगती है, और कभी बहती हुई नदी भी जैसे उस प्रीतम के बीच की दूरी का एहसास करा जाती है। प्रेम में विरह शायद सबसे खामोश एहसास है, जिसे कहने के लिए शब्द नहीं चाहिए, बस धड़कता हुआ दिल ही काफ़ी है। इंतज़ार की घड़ियां लंबी होती जाती हैं, रात गुजरती नहीं है, मन बार बार उसी एक आहट की तरफ देखता है। तो आइए इस भीगी भीगी रात में उस एहसास को महसूस करें, जहां बादलों की छांव है, प्रकृति की उदासी है और किसी अपने के लौट आने की आस है।

दोस्तों, इसी के साथ आज की इस सुरीली महफिल से विदा लेने का वक्त आ गया है। कुछ गीत यादें दे गए हैं, कुछ एहसास जगा गए हैं और कुछ धुनें शायद देर रात तक आपके दिल में गुनगुनाती रहेंगी। इसी उम्मीद के साथ आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर बताइएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8004926250। इसी के साथ दीजिए एकता शुक्ला को इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज कलाकार हैं प्रियंका मलिक। आइए सुनते हैं इनका राग मारू बिहाग में ख्याल गायन। तबले पर संगत कर रहे हैं विनोद कुमार मिश्रा, हारमोनियम पर अनिल कुमार।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे प्रियंका मलिक का राग मारू बिहाग में ख्याल। तबले पर संगत कर रहे थे विनोद कुमार मिश्र और हारमोनियम पर अनिल कुमार। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में। समाचार हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि।

0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिसमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबर्ट साइड तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुमिडी पुंडी गुदूर की 3री और 4थी लाइन, कटक पारादेव की 3री और 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना विकास की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित सुरंग और पुल सम्मेलन 2026 के 4थे संस्करण को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय राजमार्ग निर्माण कार्यों की उप ठेकेदारी संबंधी मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संविदात्मक आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन किया जाए और गुणवत्ता तथा समय पर निष्पादन की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से मुख्य ठेकेदार की ही रहे। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कृष्णानगर अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 28 अगस्त तक प्रस्तुत की जाए। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गौर जम्मू कश्मीर में अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमरीका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। नीदरलैंड्स के अम्स्टेल्फेन में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त मजबूत की। भारत ने गोल में 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रनों से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की पूरी टीम आज 206 रन पर आउट हो गई। मानव सुथार ने इस मुकाबले में कुल 131 रन देकर 10 विकेट हासिल किए। मानव ने पहली पारी में 76 रन देकर 4 विकेट छटके थे। वहीं दूसरी पारी में उन्होंने 55 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी।

स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हुए हैं। ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।